0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ाने के लिए भी काम कर रही है।
1: भारत ने बीते कुछ वर्षों में करीब 40 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किए हैं। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स FTA हमारे युवाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार बना रहे हैं। इस तरह के ट्रेड एग्रीमेंट्स से हमारे एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई पार्टनरशिप्स के रास्ते खुलते हैं और हमारे युवाओं के लिए करियर में नई पॉसिबिलिटीज बनती है।
0: सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने चेन्नई में केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए चयनित 285 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र बांटे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए युवा 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएंगे। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा, क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग में हर स्तर पर व्यापक प्रयास की जरूरत है। उन्होंने कहा कि उद्योग जगत, केंद्र सरकार और राज्यों को मिलकर काम करना होगा। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चला है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा 100 हफ्ते नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवाओं को बड़े पैमाने पर एकजुट किया जाएगा। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 1067 जगहों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह आयोजित किया जा रहा है। समारोह में नशा मुक्ति की शपथ, हस्ताक्षर अभियान, खास विषयों पर आधारित नुक्कड़ नाटक, रचनात्मक लेखन और युवाओं की अगुवाई में चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। जापान में 20वें एशियाई खेल 2026 में आज कई भारतीय खिलाड़ी अलग अलग स्पर्धाओं में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। टेकबॉल खिलाड़ी क्विंसी डिसूजा आज सुबह 6:30 बजे कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोटो से मुकाबला करेंगी। इसके बाद भारतीय निशानेबाज एलाविनिल वेलारिविन, सोनम वक्सकर और विदर्शा विनोद महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पदक जीतने की कोशिश करेंगे। ये तीनों खिलाड़ी व्यक्तिगत और टीम स्पर्धा में पदक के लिए मुकाबला करेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम भी अपने अभियान की शुरुआत करेगी और ग्रुप स्टेज के पहले मैच में उज्बेकिस्तान का सामना करेगी। एशियाई खेलों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। सेमीफाइनल में आज भारत का सामना बांग्लादेश से होगा। इससे पहले अन्य सेमीफाइनल में पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरलम, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तटीय क्षेत्रों में आज मूसला

0: भर वर्षा का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु में कल तक गरज चमक के साथ तेज हवा चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani.

वंदन करूया श्री चरणाला। चला प्रार्थुया गणरायाला, वंदन करूया श्री चरणाला। तुझा रूपाने करात माझा, तुझा रूप

0: प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। तहत के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। अब समाचार विस्तार से। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर केवल पात्र परिवारों को मिले। एक रिपोर्ट।
1: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं, उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले

0: दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में युवा एकजुट हो रहे हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार राष्ट्रीय संकल्प समारोह 1067 स्थानों पर होगा। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुँचाया जाएगा। इस अभियान में आध्यात्मिक समूह, प्रमुख व्यापारिक समूह, कॉलेज और स्थानीय संगठन शामिल है। ये आयोजन एक महत्वपूर्ण क्षण होगा जो स्वस्थ विकल्पों और नशा मुक्त भविष्य के प्रति साझा प्रतिबद्धता के लिए युवाओं को एकजुट करेगा। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की नशा मुक्त पंजाब यात्रा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने इसकी शुरुआत 18 सितंबर को पठानकोट से की थी। ये अभियान 4 चरणों का है। एक रिपोर्ट।
2: यह 13 दिन की नशा मुक्त पंजाब यात्रा पंजाब के सामने मौजूदा 3 बड़ी चुनौतियों पर केंद्रित है। ये चुनौतियां हैं नशों का बढ़ता खतरा, बिगड़ती कानून व्यवस्था और प्रशासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार। यह यात्रा राज्य में 4000 किलोमीटर का सफर तय करके सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को नशों के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट करेगी। तीसरी यात्रा आज केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल फाजिल्का के सादिकी बॉर्डर से शुरू करेंगे और कल चौथे फेज को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बठिंडा के तलवंडी साबो से हरी झंडी दिखाएंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया है। श्री मोदी ने कल 20वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार पिछले कुछ वर्षों से युवाओं को भविष्य की चुनौतियों के लिए आवश्यक कौशल और अवसर उपलब्ध कराने पर लगातार ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। इस दौरान जनसेवा से देश सेवा मंत्र के साथ सेवा और सुशासन उनका ध्येय रहा है और इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए संकल्पित है। ये प्रतिबद्धता समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है जिससे लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इस विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे किस तरह वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को लागू कर इस सोच को अमल में लाया गया।
3: वस्तु एवं सेवा कर यानी GST को 2017 में कई केंद्रीय और राज्य करों और सीमा जांच चौकियों के कारण बटे हुए घरेलू बाजार को एकीकृत करने के उद्देश्य से लागू किया गया था। 17 करों और 13 उपकरों को एक साझा व्यवस्था के तहत लाया गया जिससे एक देश एक कर एक बाजार की अवधारणा व्यवहारिक रूप से साकार हुई। GST दरों में हाल के सुधारों का उद्योग और आम लोगों दोनों ने स्वागत किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में MVIRDC वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कलंत्री ने कहा,
4: जो हाल ही में GST का जो रिडक्शन किया है गवर्नमेंट ने, वो जो कमी की है उससे रेशनलाइज किया है टैक्स स्ट्रक्चर। कई चीजों पे बहुत ज्यादा था, कई चीजों पे पड़ नहीं था, तो रेशनलाइज करने से गवर्नमेंट की इनकम बढ़ी है, कम नहीं हुई है। और ऐसे जहां जहां गवर्नमेंट को उचित है कि यहाँ ज्यादा है या जरूरी है कम करना, और यहाँ उम्मीद है कि यहाँ बढ़ाए तो फर्क नहीं पड़ेगा लग्जरी और गुड्स में या लग्जरी आइटम्स में, तो वो बहुत अच्छी सुविधा रहेगी कॉमन मैन के लिए और एक बिजनेस कम्युनिटी के लिए।
3: मुंबई की नेहा कुलकर्णी ने कहा कि आवश्यक वस्तुओं पर GST कम होने से उनके परिवार का मासिक खर्च घटा है और बचत भी काफी बढ़ी है।
5: हमारे घर का महीने का बजट जो है वो बनाते समय रोजमर्रा की चीजों पर काफी खर्च हो जाता था, जैसे शैम्पू, टूथपेस्ट और दूसरी हाउस होल्ड आइटम्स। इन चीजों पर GST घटाकर 5% कर दिया गया है। दूध और कई डेयरी प्रोडक्ट्स पर भी GST कम हुआ है, तो डेफिनेटली थोड़ी राहत मिल रही है।
3: पिछले 9 वर्षों में GST सुधारों के कर व्यवस्था को सरल बनाया है, अनुपालन का बोझ कम किया है और उपभोक्ताओं तथा कारोबारियों को अधिक राहत दी है। प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABBP ने दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में 3 प्रमुख पद जीत लिए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृहमंत्री अमित शाह ने विश्वविद्यालय चुनाव में ABBP की सफलता पर बधाई दी है। श्री सिंह ने कहा कि ये जीत राष्ट्र प्रथम नीति में युवाओं के अटूट विश्वास का प्रतीक है। उधर श्री शाह ने कहा कि ये जीत छात्र कल्याण के लिए ABBP की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। ये समाचार हमारी न्यूज़ ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov

0: www.tv.in पर भी उपलब्ध हैं।
1: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए, expert@airnewshindi को फॉलो करें और पीबी शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित करेगा। इस दौरान मतदाता सूची में नए नाम जोड़े जा सकेंगे। किसी नाम को जोड़ने के प्रस्ताव या हटाए जाने पर आपत्ति दर्ज की जा सकेगी और मतदाता सूची के विवरण को ठीक कराया जा सकेगा। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अशोक कुमार ने विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के संबंध में कहा कि सुनवाई के दौरान गैर सूचीबद्ध दस्तावेज पर भी विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि अलग अलग मामलों में नाम, जन्मतिथि या अन्य जानकारी से जुड़े दस्तावेज पर विचार किया जाएगा।
2: अगर किसी के नाम में मिसमैच है या किसी को DOB में मिसमैच है तो उसके सामने भी ग्राउंड लिखा हुआ है कि उसको नोटिस क्यों आएगा, और नोटिस लिस्ट में है। अब ये भी ना सोचे कि मुझे मेरा नाम तो लिस्ट में लेकिन अभी तक मुझे नोटिस नहीं आया, तो नोटिस स्टेगर्ड मैनर में जाएगी क्योंकि वो हियरिंग होनी है, तो हियरिंग ERO के यहाँ पे होनी है। उसमें प्लेस लिखा होता है, एक दिन में एक लिमिट होती है कि कितने विजिटर्स को वो हैंडल कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से स्टेगर्ड मैनर में नोटिस दे रहे हैं और जैसे जैसे नोटिस जो ऑलरेडी जनरेटेड है वो डिस्पोज होते जाएंगे, उसी हिसाब से सक्सेसिव नोटिसेस इश्यू होते जाएंगे।
0: दिल्ली पुलिस ने द्वारका जिले में अवैध रूप से और वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए विशेष अभियान चलाया है। इसका उद्देश्य ऐसे विदेशी नागरिकों की पहचान करना, उनके दस्तावेज का सत्यापन करना, आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों का पता लगाना और नियमानुसार कार्रवाई करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। एक मीडिया संस्थान से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत को संभावित भू राजनीतिक जोखिमों को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अब वे चिप डिजाइन और निर्माण करने वाले सक्षम देश के रूप में उभर रहा है। इसे कई कंपनियां और देश अपने लिए खतरा मान सकते हैं।
3: We have to continuously be watchful of the
4: भारत चिप्स डिजाइन और निर्माण करने वाले देश के तौर पर उभर रहा है, इसलिए हमें संभावित भौगोलिक राजनीतिक जोखिमों पर लगातार नजर रखनी होगी। कई दूसरे स्थापित प्रतिभागी इसे एक चुनौती के तौर पर देखेंगे, हमें दूसरे प्रतिभागियों को लेकर भी सावधान रहना होगा। इसलिए मैंने उद्योग जगत से साफ साफ कहा है, साइबर हमलों और किसी भी तरह के व्यवधान के लिए तैयार रहे।
0: मौसम विभाग ने आंध्र प्रदेश के तटवर्ती क्षेत्रों कर्नाटक, केरला, माहे, तमिलनाडु, तेलंगाना और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आज तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में कल तक गरज चमक और तेज हवा चलने की संभावना है। वहीं मछुआरों को कल तक अंडमान सागर तथा अगले दो दिन तक पूर्वी मध्य और उससे लगे उत्तर पूर्वी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है। दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाये रहने का अनुमान है। तापमान 23 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान सहित 11 टन सामग्री शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का ये 9वां विमान था। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत नेपाल के पुनर्वास और राहत कार्यों में लगातार सहयोग कर रहा है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है वीरेंद्र कौशिक।
4: चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डी गोकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। वहीं आर प्रणानंद का डेविड एंटोन गुइजारो के साथ और निहाल सरीन का जेमे सैंटोस लाटासा के साथ मुकाबला ड्रॉ रहा। महिला वर्ग में भारत ने मंगोलिया को 3-1 से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज 46वें फिडे चेस ओलंपियाड का 5वां राउंड खेला जाएगा। मुकाबला भारतीय समय के अनुसार दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। 20वें एशियाई खेलों में आज भारत की टैकबॉल खिलाड़ी क्यूमसी डिसूजा कांस्य पदक के लिए जापान की युइना साकामोतो से खेलेंगी। भारतीय महिला हॉकी टीम का ग्रुप चरण के पहले मैच में आज उज्बेकिस्तान से सामना होगा। उधर पुरुष हॉकी टीम अपने पहले मैच में इंडोनेशिया से भिड़ेगी। प्रतियोगिता का महिला क्रिकेट सेमीफाइनल आज भारत और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा। ये नॉकआउट मैच भारतीय समय के अनुसार सुबह 10:30 बजे से होगा। समाचार कक्ष से मैं वीरेंद्र कौशिक।
0: अमेरिका ने अपने नागरिकों को आगाह किया है कि वे पश्चिम एशिया की यात्रा बहुत सोच समझ कर ही करें। अमेरिकी प्रशासन ने ये चेतावनी क्षेत्र में बढ़ते तनाव, तेजी से स्थिति बिगड़ने की संभावना, उड़ानों में रुकावट और अमेरिकी ठिकानों पर हमले की आशंका को देखते हुए जारी किया है। यमन के हुती लड़ाकू

0: सऊदी अरब की तरफ मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। अमेरिकी विदेश विभाग की चेतावनी में पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिकी नागरिकों को ज्यादा सतर्क रहने को कहा गया है, क्योंकि उड़ानें रद्द हो सकती हैं, हवाई मार्ग बंद हो सकते हैं और यात्रा संबंधी अन्य परेशानियां भी हो सकती हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: अपडेट रहे, आगे रहे, एक्सपर्ट @AIRNewsHindi और इंस्टाग्राम पर AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
0: और अब आज की समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है वैष्णवी।
2: धन्यवाद फरहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने दिया है। लोकसत्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द प्रकाशित किए हैं, विकसित देशों में कार्बन उत्सर्जन भारत से 6 गुना अधिक, राष्ट्र ने COP21 के सभी जलवायु लक्ष्य समय से पहले पूरे किए। हिंदुस्तान लिखता है, दुनिया को जलवायु चुनौतियों का समाधान दे रहा भारत। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ डूसू चुनाव में 17 साल बाद किसी निर्दलीय उम्मीदवार के जीतने का समाचार सभी अखबारों ने सचित्र दिया है। जनसत्ता लिखता है, करीब 1.5 दशक से डूसू के चारों पदों पर एबीवीपी और एनएसयूआई का रहा है कब्जा। अमर उजाला की सुर्खी है, डूसू में फिर भगवा, एबीवीपी ने 3 सीटें जीती। जापान के नागोया शहर में 20वें एशियन गेम्स के भव्य उद्घाटन समारोह की तस्वीरें सभी समाचार पत्रों ने सचित्र दी है। पंजाब केसरी लिखता है, नागोया में एशियाड का आगाज, मनु भाकर और पवन सहरावत ने फहराया तिरंगा। मयूर विहार से सरायका लिखा, 5 मिनट में 3.5 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनकर तैयार, 29 सितंबर को होगा शुरू, दैनिक भास्कर की खबर है। राजस्थान पत्रिका ने ईरान में हिजाब कानून को लेकर सख्ती के बीच राजधानी तेहरान में महिलाओं के रनिंग इवेंट के ध्यान खींचने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, बिना हिजाब के तेहरान की सड़कों पर 10 किलोमीटर दौड़ी सैकड़ों महिलाएं। ग्रीनलैंड पर कब्जे के बजाय अमेरिका करेगा इसकी चौकीदारी, ग्रीनलैंड और अमेरिका में हुआ करार, आर्कटिक में थमा तनाव, दैनिक जागरण की सुर्खी है। पत्र लिखता है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हस्ताक्षर की संभावना।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने सब्सिडी वाली रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी किया। 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आज देश भर में 1067 स्थानों पर राष्ट्रीय संकल्प समारोह। मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और हटाने में सहायता के लिए आज दिल्ली में सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर का आयोजन। मौसम विभाग ने आज तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरलम, कर्नाटक और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया। और उज्बेकिस्तान में शतरंज ओलंपियाड में भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से और महिला टीम ने मंगोलिया को 3-1 से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Saira Mujtaba. The headlines. Government makes Aadhaar biometric authentication mandatory for subsidized refills of LPG cylinders from 1st of next month. Rashtriya Sankalp Samaroh being organized at 1067 locations across the country today as part of 100 weeks Nasha Mukt Yuva Abhiyan. Election Commission to hold special camps in all polling stations in Delhi today to assist citizens regarding inclusion and deletion of names in electoral rolls. IMD forecasts heavy rainfall in coastal Andhra Pradesh, Telangana, Tamil Nadu, Keralam, Karnataka and Andaman and Nicobar Islands today. And Indian men score resounding 3-1 victory over Spain at Chess Olympiad in Samarkand. Women's team beat Mongolia 3-1. And now the news in detail. Government has said that biometric Aadhaar authentication is mandatory for subsidized domestic LPG refills from 1st October this year. Domestic LPG consumers will need to have completed biometric Aadhaar authentication to book refills at the regulated retail selling price with applicable subsidy. More from our correspondent.
4: Biometric Aadhaar authentication ensures that subsidized LPG reaches only genuine and deserving households, linking each country.

0: Akashwani FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: जहां नदी अचानक झरना बन जाती है, जरा सोचिए, हम घने जंगलों के बीच खड़े हैं, सामने एक नदी बह रही है और अचानक वही नदी एक विशाल घोड़े की नाल जैसी आकृति में लगभग 90 फीट नीचे गिरने लगती है। आवाज इतनी कि कुछ पल के लिए अपनी आवाज भी सुनाई न दे और नजारा ऐसा कि बस देखते रह जाए। तो भाई, आज आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर मस्त मुंबई आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे सफर पर जो है छत्तीसगढ़ के चित्रकोट जलप्रपात का। तो चलिए, माला ले जाएगी आज आपको मुंबई से निकाल कर बस्तर की हरी भरी वादियों की ओर।

0: गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है, शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे

तो भाई बहता हुआ जो पानी होता है वो जीवन की राह दिखाता है कि जीवन सिर्फ जीने का नहीं चलने का भी नाम है। और आज आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1044 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी DRM पर भी, न्यूज़ ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं 24/7। कार्यक्रम चल रहा है आपका अपना पसंदीदा मस्त मुंबई रविवार का आज चल के तुझे लेके चलूं एडिशन, और साथ बनी हुई लगातार आपके आपकी दोस्त माला। तो भाई दीपा पालकर ने हमें मैसेज किया कि जिस जगह की आप बात कर रहे हैं उसे अक्सर भारत का नियाग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। तो बिल्कुल सही कहा दीपा जी आपने, इसके घोड़े की नाल जैसे आकार की वजह से, जो 90 फीट नीचे है, इस आकार की वजह से इसे नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है। और ये जलप्रपात इंद्रावती नदी पर है और जगदलपुर से करीब 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और ये जानना चाहते थे हमसे प्रमोद चिंचोलकर उमरी अकोला से। और छत्तीसगढ़ पर्यटन के अनुसार इसकी ऊंचाई जो है वो करीब 95 फीट है यानी 95 फीट है, और इसे भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात यानी वाटरफॉल बताया गया है। और जुलाई से अक्टूबर के बीच खासकर बारिश के बाद इसका रूप बेहद प्रभावशाली दिखाई देता है। यानी आज की हमारी यात्रा सिर्फ खूबसूरत नहीं है, ये खूबसूरती के साथ साथ भूगोल की एक शानदार कहानी भी खुद में समेटे हुए है।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है, शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: Attention, national recognition for your hard work. For those making outstanding contributions to the animal husbandry and dairy sector and embracing innovative practices, the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India, invites nominations for the prestigious National Gopal Ratna Awards 2026. The awards recognize excellence in three categories: Best Dairy Farmer, Best Dairy Cooperative Society, Best Artificial Insemination Technician. And there is more. Special provisions have been made for the Northeastern region and Himalayan states. Nomination period, 10th August to September 30th, 2026. So, what are you waiting for? Apply today at www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026. Issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India.
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर कार्यक्रम मस्त मुंबई आ चल के तुझे। हम लेके जा रहे हैं आज छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात की ओर, और हमने आपको बताया कि लगभग 90 फीट नीचे जो है घोड़े की नाल जैसी जो आकृति है, इसी वजह से इसे नियाग्रा फॉल्स की तरह कंपेयर किया जाता है, और ये भारत का सबसे चौड़ा जल

पात है और जुलाई से अक्टूबर के बीच खासकर बारिश के बाद ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। अब चित्रकूट का एक ऐसा फैक्ट आपको सुनाते हैं जो शायद आपको चौंका दे। बारिश के दिनों में यहाँ गिरते पानी का रंग लालिमा लिए हुए दिखाई दे सकता है। नारंगी रंग सूरज की पहली किरणों का रंग दिखाई देता है, जबकि गर्मियों की चांदनी रात में यही पानी बिल्कुल सफेद चमकता हुआ सा नजर आता है। सोचिए, दिन मौसम और रोशनी बदलती है और उसी तरह जलप्रपात का रूप भी बदल जाता है। शायद इसलिए प्रकृति को देखने के लिए सिर्फ आंखें नहीं, थोड़ा ठहरने वाला दिल भी चाहिए।

और आप सभी ने हमें अपने रंग में रंग लिया है, क्योंकि आपके इतने सारे मैसेजेस हम तक पहुंच चुके हैं ऑलरेडी आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर। प्रणव शिंदे और प्रकाश शिंदे का एक प्यारा सा मैसेज आया है, इंद्रावती की लहरों में बहता हुआ शबाब है, बस्तर की वादियों का ये सजता हुआ ख्वाब है, झरझर गिरता पानी जैसे कोई राग सुनाता हो, चित्रकूट का ये नजारा सचमुच लाजवाब है, ऊंचाई से गिरती धार और साथ ही साथ इसके दिल हमारे दिलों को छू जाती है, प्रकृति की ये अद्भुत छटा हर गम को मिटाती है, गूंजती है जब इसकी गर्जना चारों दिशाओं में, बस्तर की ये जमी मानो जन्नत नजर आती है। और ऐसा फील कर रहे हैं कि भाई वो सीधे मुंबई से छत्तीसगढ़ के चित्रकूट जलप्रपात पहुंच गए हैं। वहीं पंकज मोहट का मैसेज हमारे पास पहुंचा है, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के चित्रकूट इंद्रावती नदी के कार्यक्रम की जानकारी उन्हें पसंद आ रही है। और ये मैसेज है श्री मिलेश राउत, मिलेश गजानन राउत, आर्य मिलेश राउत का टिगरेपाड़ा से, योगेश गजानन पाटिल, कुणाल महेश राउत टिगरेपाड़ा से ये भी सुन रहे हैं हमें लगातार। और ये मैसेज हमारे पास पहुंचा है बुलडाना महाराष्ट्र से, सहदेव दामोदर, शशिकला, सुमित कुमार, साधना, पवन पाटिल, अमून मानकर, शोभाताई मानकर, श्लोक और दीपाली का, और दीपा स्मिता पालकर हमारे साथ जुड़ी हुई है और कह रही है कि भाई उन्होंने अमेरिका में नियाग्रा फॉल्स देखा है और एक ही वाटर कैनाल में हम अमेरिका के सामने के बाजू से बिल्कुल कनाडा के टूरिस्ट थे, बोट में खड़े रहकर नियाग्रा फॉल्स हम जब देख रहे थे तो एक लाइफ टाइम अनुभव था। और स्मिता जी ऐसा लगता है कि आपने डेफिनेटली चित्रकूट का ये जो वाटरफॉल है जिसके बारे में हम आज आपसे बात कर रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो पर, उसको भी डेफिनेटली देखा ही होगा। प्रमोद चिंचुलकर जुड़ गए हैं हमारे साथ उमरिया कोला से, यशवंत आडमुठे सुन रहे हैं धारा शिववाशी से, विजेंद्र घटोल अकोला से, शुभलक्ष्मी मस्तकार भी जुड़ गई हैं, प्रमोद कारखाने पुणे से सुन रहे हैं, चेतन कुमार मानपुर बाजार गया बिहार से, और राकेश माथुर पुणे से, अंजू अंधेरी ईस्ट से, हितेंद्र दास भी सुन रहे हैं आसाम से। आप सभी का जुड़ने के लिए मस्त मुंबई आचल के तुझे लेके चले में बहुत बहुत शुक्रिया। और बात बढ़ाते हैं आगे और आपको बताते हैं कि भाई चित्रकूट जो झरना है उसके आगे भी एक दुनिया है। चित्रकूट सिर्फ एक वाटरफॉल देखने की जगह नहीं है, इसके आसपास घने जंगल, पहाड़ियाँ और बस्तर की प्राकृतिक दुनिया है। बस्तर क्षेत्र अपने झरनों, गुफाओं, जंगलों और आदिवासी संस्कृति के लिए जाना जाता है। और पास ही कांगेर घाटी की तरफ आप जाएंगे तो तीरथगढ़ जलप्रपात भी आपको देखने को मिलेगा, जहाँ चट्टानों की भूगर्भीय कहानी करोड़ों साल पुरानी है। तो कहीं अगर आपसे पूछे कि भारत घूमना है तो कहाँ जाइए, तो कहिए कभी कभी मशहूर शहरों से हटकर बस्तर की तरफ भी चलना चाहिए।

0: amore mio, dove sai tu? Hey, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के

तो भाई आज हम चल रहे हैं बस्तर में बसे चित्रकोट वाटरफॉल की तरफ, आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, जिसका प्रसारण आप सुन पा रहे हैं आकाशवाणी मुंबई के मीडियम वेव 1000 किलोहर्ट्ज़ के डिजिटल रिसीवर यानी डीआरएम पर भी, न्यूज ऑन एयर ऐप पर आप हमें लगातार सुन सकते हैं। राकेश माथुर जो कह रहे हैं चित्रकोट वाटरफॉल की जानकारी सुनने के बाद वो भी यहां जाना चाहते हैं। वही फिरोज सिगिनपुरिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रमोद चिंचोलकर ने एक खूबसूरत गुलाबों का गुलदस्ता हम तक पहुंचाया है। विजेंद्र घटोल को गाने पसंद आ रहे हैं अकोला से। वहीं रजनीकांत रघुनाथ पाटिल वाड़वन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र विठल चावन भी सांता क्रूज से हमें सुन रहे हैं। प्रणव शिंदे प्रकाश शिंदे सुन ही रहे हैं और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आज महेश भट्ट साहब का जन्मदिन है तो उनके लिए गाना वो सुनना चाहते हैं, तो ज़रूर सुनाएंगे। 10 बजे के कार्यक्रम में आपको हम उनकी फिल्म से जुड़ा एक गाना ज़रूर सुनाएंगे। और 9:18 हो चले हैं और आज हम आपसे बात कर रहे हैं चित्रकोट की, जो बसा हुआ है छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में। और मुंबई से निकलकर आज हम आपको ले आए हैं बस्तर की हरी भरी वादियों में। और हमने आपको बताया कि भाई छत्तीसगढ़ पर्यटन के अनुसार इसकी ऊंचाई 95 फिट है और ये भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात बताया जाता है। और जुलाई से अक्टूबर के बीच यहाँ जाना चाहिए, खूबसूरत दिखाई देता है, पानी का रंग बदलता हुआ आपको दिखाई देगा यहाँ पर हर समय, दिन मौसम और रोशनी में पानी का रंग आपको बदलता हुआ दिखाई देगा। और झरने से आगे भी एक दुनिया है, इस झरने के अलावा गुफाएं, जंगल और आदिवासी संस्कृति के लिए भी इस जगह को जाना जाता है। और साथ ही कांगेर घाटी की तरफ जब आप जाएंगे तो तीरथगढ़ जलप्रपात भी आपको देखने को मिलेगा, जहां चट्टानों की भूगर्भीय कहानी करोड़ों साल पुरानी है। वहीं जो है भारत में अगर घूमने जाना है तो कई बार हम बड़ी बड़ी जगहें खोजते हैं, लेकिन कभी कभी इन बस्तियों की तरह, इन वाटरफॉल्स की तरफ भी जाने की कोशिश हमें करनी चाहिए। तो भाई आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 एफएम और अगला गाना कुछ इसी तरह आपको रंग देने के लिए है इन खूबसूरत वादियों में।

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो, और हम आपके बिना कहाँ जा पाएंगे। बस मुंबई आजकल के तुझे, आज हम आपको लेकर गए थे भाई बस्तर के चित्रकोट जलप्रपात की ओर। और ये सिर्फ पानी को ऊंचाई से गिरते हुए देखना नहीं है, हमने देखा कि एक नदी कैसे प्रकृति की गोद में अपना रूप बदल लेती है, कैसे मौसम उसके रंग बदल देते हैं, और कैसे एक जगह अपने आसपास के जंगल, संस्कृति और भूगोल की कितनी सारी कहानियां खुद में समेटे रहती है। यही तो हमारे भारत की खूबसूरती है। हर सफर में कोई नया फैक्ट, कोई नया तथ्य आपके सामने आ जाता है, कोई नया दृश्य, दिल में रह जाने वाली कोई नई कहानी मिल जाती है। मैं हूं आपकी अपनी माला, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, क्योंकि आज चल के तुझे लेके चलूं मैं, हम हमेशा आपको ले जाते हैं कुछ ऐसी जगहों पर जहां जाकर आप कुछ अपनापन महसूस करते हैं। तो फिर आज का जो ये सफर है वो यहीं तक, क्योंकि 9:30 पर आप जो है सुनेंगे एशियन गेम्स के अपडेट, और 9:35 पर होगा कार्यक्रम वतन का राग, और 10 समाचारों के बाद एक बार फिर आपके साथ जुड़ जाएगी आपकी दोस्त माला लेकर कार्यक्रम नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें। तो कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिएगा हमारे साथ आकाशवाणी मुंबई के एफएम।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है शहीद बूटा सिंह। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, सेक्टर 9 रोहिणी दिल्ली से राजकुमार और छिंदवाड़ा से मोहन साहू। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

वतन का राग कार्यक्रम में आज चर्चा एक ऐसे कलम के सिपाही की, जिनकी जीवन यात्रा एक दीपक की तरह थी, जिसने आंधियों से रोशनी का अर्थ सीखा, जिनके लिए पत्रकारिता केवल घटनाओं की खबर पहुंचाना भर नहीं था, बल्कि उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ था समय की आंखों में आंखें डालकर सच कहने का साहस। वो महान और प्रखर पत्रकार थे तुषार कांति घोष, जिनकी कलम ने गुलामी की रात में भी स्वतंत्रता का स्वप्न देखा और आजादी के बाद लोकतंत्र की चौकसी को अपना जीवन धर्म बनाया। तुषार कांति घोष का जन्म 21 सितंबर सन 1898 को अविभाजित बंगाल

के कलकत्ता में हुआ था। उनका परिवार बंगाल का एक सम्मानित परिवार था। भारतीय पत्रकारिता और स्वाधीनता संग्राम से इसका गहरा संबंध था। उनके पिता शिशिर कुमार घोष भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के उन पुरोधाओं में से थे जिन्होंने अपने भाइयों मोतीलाल घोष और वसंत कुमार घोष के साथ मिलकर अंग्रेजी दैनिक अमृत बाजार की शुरुआत की थी। अमृत बाजार केवल एक समाचार पत्र भर नहीं था, बल्कि ये ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विचारों का एक सशक्त और निर्भीक मंच बन चुका था। इस तरह बचपन से ही तुषार कांति घोष ने देश, समाज और स्वाधीनता की बातें सुनी, अन्याय के विरुद्ध उठती आवाजें सुनी। इसीलिए पत्रकारिता उनके लिए केवल पेशा नहीं, पारिवारिक संस्कार और राष्ट्रीय दायित्व था। उनकी आरंभिक शिक्षा कोलकाता के प्रतिष्ठित हिंदू स्कूल में हुई, जो उस समय राष्ट्रवादी मेधा का प्रमुख केंद्र माना जाता था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबद्ध बंगवासी कॉलेज में प्रवेश लिया। यहाँ से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। अध्ययन के साथ साथ अंग्रेजी और बांग्ला साहित्य ने उनके भीतर भाषा की शक्ति जगाई तथा देश की राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों ने उनके भीतर प्रश्न करने की बेचैनी पैदा की।

शिक्षा पूर्ण करने के बाद तुषार कांति घोष के समक्ष कई विकल्प थे, लेकिन उन्होंने अपने पारिवारिक मूल्यों और राष्ट्रीय दायित्व को सर्वोपरि मानते हुए पत्रकारिता के कठिन और जोखिम भरे मार्ग को चुना। सन 1930 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका के संपादक का दायित्व संभाला। उस दौर में किसी पत्र का संपादन करना केवल सुंदर और प्रभावकारी लेख लिखना भर नहीं था, ब्रिटिश सरकार की कड़ी निगरानी, क्षेत्रीय सेंसरशिप और वित्तीय अनिश्चितताओं के बीच समाचार पत्र निकालना एक युद्ध की तरह था। प्रेस चलाने के लिए कागज चाहिए, मशीन चाहिए, श्रम चाहिए और वितरण का जाल चाहिए। तुषार कांति घोष ने पत्रकारिता को केवल संपादकीय कक्ष में बैठकर नहीं समझा, वो मुद्रण कक्षों में जाते, तकनीक समझते और संकट के समय स्वयं समाधान ढूंढ निकालते। जब जेसोर क्षेत्र में कागज की कमी हुई तो कागज निर्माण और प्रसंस्करण की तकनीक समझने के लिए वो पांडुआ तक गए। तुषार कांति घोष ने भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता को सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इसी कड़ी में सन 1937 में अमृत बाजार पत्रिका समूह ने बंगाली दैनिक समाचार पत्र जुगांतर का प्रकाशन शुरू किया। कुछ ही समय में जुगांतर बंगाल और पूर्वी भारत का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली बंगाली समाचार पत्र बन गया। ये अरविंद घोष के साप्ताहिक पत्र जुगांतर से अलग पत्र था। इसके माध्यम से क्षेत्रीय भाषाओं में निर्भीक पत्रकारिता और राष्ट्रवादी चेतना की एक नई लहर पैदा हुई। तुषार कांति घोष के भीतर ब्रिटिश सत्ता के समक्ष न झुकने का अटूट संकल्प था। यही कारण है कि उनके संपादन काल में अमृत बाजार पत्रिका अंग्रेज अधिकारियों और औपनिवेशिक न्यायपालिका की आंखों की किरकिरी बनी रही। तुषार कांति घोष के जीवन की सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक था सन 1935 का वो प्रसिद्ध अवमानना का मुकदमा, जिसने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया। दरअसल 21 मार्च सन 1935 को बंगाल विधान परिषद में एनके बसु ने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की आलोचना की थी। इसके बाद अमृत बाजार पत्रिका में कलकत्ता हाई कोर्ट शीर्षक से संपादकीय प्रकाशित हुई। इसमें अदालत के न्यायाधीशों पर कार्यपालिका के साथ निकटता के कारण न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित होने जैसी गंभीर टिप्पणी की गई थी। इसे अदालत की अवमानना मानते हुए तुषार कांति घोष और तारिक कांति बिस्वास के विरुद्ध कार्रवाई की गई। अदालत में तुषार कांति घोष ने बताया कि उनकी अनुपस्थिति के दौरान ये लेख छपा था, लेकिन वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। साथ ही उन्होंने अपने पक्ष में तर्क भी रखा। अदालत ने उन्हें माफी मांगने का अवसर दिया, लेकिन वो झुकने को तैयार नहीं हुए। परिणाम स्वरूप उन्हें 3 माह कारावास की सजा सुनाई गई। लेकिन वो जिंदगी भर न कभी झुके न रुके, वो निर्भीक निडर बस चलते रहे।

जाने जाते थे। अंग्रेजों के साथ उनकी संवाद शैली अत्यंत रोचक रहा करती थी। इसी तरह का एक किस्सा पत्रकारिता जगत में प्रचलित है। बताया जाता है कि एक बार बंगाल प्रांत के तत्कालीन गवर्नर ने चुटकी लेते हुए कहा, श्रीमान घोष, मैं आपकी अमृत बाजार पत्रिका नियमित रूप से पढ़ता हूँ। अखबार तो अच्छा है, लेकिन इसमें कई बार अंग्रेजी व्याकरण सही नहीं होता है और आपकी पत्रिका अंग्रेजी भाषा के साथ काफी हिंसा करती है। इस पर बिना एक क्षण गंवाए तुषार कांति घोष ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महोदय, अंग्रेजी भाषा के साथ हिंसा करना ही तो भारत के स्वाधीनता संग्राम में मेरा और मेरी पत्रिका का सबसे छोटा सा योगदान है। जवाब सुनकर गवर्नर महोदय चुप रह गए। इस तरह तुषार कांति घोष ने कलम के सहारे ऐसा युद्ध घोष किया कि ब्रिटिश सत्ता कभी चैन से नहीं बैठ सकी। अमृत बाजार पत्रिका और जुगांतर, मानो उनकी कलम ने दो भाषाओं में एक ही संदेश लिखा, जनता को जागना होगा। तुषार कांति घोष ने कभी शब्दों से तो कभी अपने मौन से भी जागरण का ये मंत्र फूंका। 16 अगस्त सन 1946 को अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग को लेकर मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया और कलकत्ता की सड़कों पर भयानक नरसंहार, सांप्रदायिक दंगे और आगजनी के दृश्य थे। पूरा शहर हिंसा की आग में जल रहा था। अनेक समाचार पत्र भड़काऊ खबरें छाप रहे थे, एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे थे। ऐसे समय में अमृत बाजार पत्रिका का संपादकीय कॉलम खाली छोड़ दिया गया। ऐसा 3 दिनों तक किया गया। 3 दिनों का ये मौन संपादकीय ब्रिटिश हुकूमत की विफलता और राजनीतिक उन्माद के विरुद्ध तुषार कांति घोष का तीखा और मौन प्रतिरोध था। स्वाधीनता के बाद भारत में कई बार ऐसी स्थितियां आईं जब केंद्र या राज्य सरकार ने मीडिया पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नियंत्रण का प्रयास किया। तुषार कांति घोष ने सदा इसका कड़ा विरोध किया। वो इस बात के पक्षधर थे कि समाचार पत्रों को किसी भी राजनीतिक दल, विचारधारा या कॉरपोरेट घराने का मोहरा नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका को एक ऐसा मंच बनाया जहां प्रशासनिक भ्रष्टाचार, नीतिगत कमियों और सत्ता के अहंकार पर बिना किसी डर के कड़ा प्रहार किया जाता था। तुषार कांति घोष प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया और द इंडियन न्यूज सोसाइटी के सर्वोच्च पदों पर रहे। उन्होंने प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के गठन का पुरजोर समर्थन किया ताकि पत्रकारिता सरकारी हस्तक्षेप से मुक्त रहे। इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट और कॉमनवेल्थ प्रेस यूनियन में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पत्रकार होने के साथ साथ उन्होंने बच्चों के लिए कई मनोरंजक, प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद पुस्तकें भी लिखीं। उन्होंने अमृत बाजार पत्रिका में भी बच्चों के लिए विशेष कॉलम शुरू किए थे ताकि बच्चों में पढ़ने की आदत और नैतिक मूल्यों का विकास हो। राष्ट्र निर्माण, साहित्य, शिक्षा और स्वतंत्र पत्रकारिता में उनके योगदान को देखते हुए सन 1964 में उन्हें पद्म भूषण सम्मान से अलंकृत किया गया। एक समृद्ध और प्रेरणादायक जीवन जीते हुए 29 अगस्त सन 1994 को उन्होंने अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि तुषार कांति घोष का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन लें, तुषार कांति घोष का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataNkaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। वक्त हो चला है 10:18। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी दे दें। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से जुड़ा बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। बायोमेट्रिक आधार प्रमाणन सिलेंडर की डिलीवरी के समय वितरक के शोरूम पर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के तहत आज देशभर में युवा एकजुट हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जाएगा। महाराष्ट्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को जम्मू में विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम लोक कलेतील श्री गणेश के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम विभाग के निदेशालय की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र की पारंपरिक लोक कलाओं, शास्त्रीय नृत्य और संगीत की प्रस्तुतियां दी गईं। चेस ओलंपियाड में कल भारतीय पुरुष टीम ने स्पेन को 3-1 से हरा दिया। उज्बेकिस्तान के समरकंद में हुए मुकाबले में विश्व चैंपियन डी गुकेश ने पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप चैलेंजर एलेक्सी शिरोव को हराकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़ म्यूजिकली योर्स।
1: जी हाँ, यह है आपका अपना आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM। वक्त हो चला है 10:02 और ये वक्त होता है रविवार की सुबह नमस्ते भारत का। लेकिन नमस्ते भारत में बात करते हैं मेरा दिल मेरी बातों की। तो आज रविवार की सुबह में मेरा दिल आपसे एक थोड़ा सा अजीब सा सवाल पूछ रहा है, क्या एक इंसान अकेले किसी नदी की तस्वीर बदल सकता है? मैं हूं माला और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो। और आज 20 सितंबर है और आज दुनिया वर्ल्ड क्लीन अप डे मना रही है। इस साल की थीम है ये। लेकिन आज मैं आपको किसी बड़े अभियान की नहीं, मध्य प्रदेश के एक 21 साल के छोटे से BSc में पढ़ने वाले छात्र की कहानी सुनाऊंगी, जिनका नाम है सुरेंद्र सिंह चौधरी और सोशल मीडिया पर उन्हें लोग बुलाते हैं बिट्टू के नाम से। कहानी करेंगे शुरू, लेकिन उससे पहले हमारे पास आपकी फरमाइशें पहुंच चुकी हैं। तो पहला गाना जो है हम ले लेते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे आपकी कहानी का।

कभी हम बात कर रहे हैं मेरा दिल मेरी बातें नमस्ते भारत में मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में रहने बहने वाली अजनार नदी की और इस नदी का कचरा प्लास्टिक और जलीय खरपतवार से बहुत ये नदी परेशान हो चुकी थी और सुरेंद्र अक्सर नदी के पास बने मंदिर जाते और वहां की हालात देखते। लोग बदबू और गंदगी से किनारा कर लेते। फिर आया 26 जनवरी 2026 और उन्होंने सोचना छोड़कर नदी में उतरना शुरू कर दिया। ना कोई बड़ी टीम ना भारी मशीनरी, शुरुआत में दोस्तों ने साथ तो दिया लेकिन धीरे धीरे वो भी हार मान गए और पीछे हट गए। पर सुरेंद्र का काम लगभग चलता रहा, अकेले ही चलता रहा। प्लास्टिक की बोतलें, खरपतवार और ठोस कचरा वो हाथों से निकालते रहे और यहीं से शुरू हो गया एक ऐसा सफर जिसकी बिफोर और आफ्टर तस्वीरें जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और अगर आपने भी देखी है तो बताइए हमें कि क्या आपने सुना है इस अजनार की नदी के बारे में। और अब जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसकी फरमाइश दीपा पालकर ने हम तक पहुँचाई है। आशिकी फिल्म का ये गाना है, अनुराधा पौडवाल और उदित नारायण की आवाज में। महेश भट्ट साहब का जन्मदिन जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसलिए ये खूबसूरत सा नगमा एंजॉय कीजिए हमारे साथ।

0: गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

0: गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर। कृष्ण कन्हैया फिल्म के गाने की फरमाइश बुलडाना महाराष्ट्र से हमारे पास आई थी। सहदेव दामोदर, शशिकला सुमेध, साधना पाटिल, अमोल मानकर और शोभा ताई, श्लोक और दीपाली, साथ ही साथ ये सभी लोग जो हैं इसी फिल्म का गाना सुनना चाह रहे थे। 10:20 और ठीक 59 सेकेंड यानी कि 10:21 हो चले हैं। कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें, साथ बनी हुई लगातार आपके आपकी दोस्त माला। और आज जो है हम वर्ल्ड क्लीन अप डे की बात आपसे कर रहे हैं, और हमने आपको बताया कि भाई एक छोटा सा अभियान कब वो बड़े में तब्दील हो जाए ये पता नहीं है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में रहने बहने वाली जो नदी है अजनार नदी, आज वो बिल्कुल साफ सुथरी हो गई है। एक छोटा सा प्रयास, पूरी नदी को साफ कर दिया गया। कचरा, प्लास्टिक और जलीय खरपतवार जो है वो पूरी तरह से भरी हुई थी इस नदी में, और सुरेंद्र ने उस नदी को पूरी तरह साफ कर दिया। जरा सोचिए मुंबई, किस जिस काम को शुरू करते समय शायद आसपास के बहुत से लोगों ने उतनी गंभीरता से नहीं देखा, वहीं काम जो है कुछ महीनों बाद पूरे देश की नजर में आ गया। आपको भी पता होगा सुरेंद्र की मेहनत पर उद्योगपति जो है महिंद्रा साहब ने कई प्रतिक्रिया दी, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी से भी उनकी मुलाकात हुई। अब स्थानीय नगर पालिका ने भी मशीनरी से नदी की सफाई शुरू कर दी है, और अजनार नदी के लिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भी का भी प्रस्ताव सामने आ गया है। कहानी यहाँ भी नहीं रुकी। द ओशियन क्लीनअप के CEO ने कहा कि उनकी मुहिम जो है वो बहुत ही खूबसूरत है, और उन्हें संगठन के साथ काम करने का यानी कि ओशन क्लीनअप के साथ काम करने का निमंत्रण भी मिला। यानी एक नदी, एक युवक जिसमें उतरा, और देखते देखते उसकी कहानी नदी के किनारे से निकलकर दुनिया तक पहुंच गई, और आज हम सभी बात कर रहे हैं। अजय साखरे इंदौर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं दीपा पालकर भी जो है ये जो कहानी हम आपके लिए बता रहे हैं आपको वो उन्हें पसंद आ रही है। मोहम्मद फरमान जिला मुरादाबाद दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से, वहीं सलमान, इरफान, इसरार और नरगिस खातून भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रकाश शिंदे कह रहे हैं कि धरती को हरा भरा और स्वच्छ बनाना है, सिर्फ एक दिन नहीं हर दिन ये फर्ज निभाना है। कूड़े को कचरा पात्र में डालकर देखो यारों, इस खूबसूरत कायनात को बीमारी से बचाना है। कदम से कदम मिलाकर एक नया सवेरा लाएंगे, गंदगी को मिटाकर इस जहां को चमकाएंगे। और विश्व स्वच्छता दिवस पर आओ मिलकर ये कसम खाएं, अपनी प्यारी धरती को हम

प्लास्टिक मुक्त बनाए, तो पूरी कोशिश करनी चाहिए। और प्रमोद चिंचोलकर जो है वो कह रहे हैं कार्यक्रम उन्हें पसंद आ रहा है। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आ रहा होगा, और अगर पसंद आ रहा है तो जल्दी से हमें मैसेज कीजिए 8657661071 पर, 8657661071 पर। आपकी दोस्त माला बनी हुई है लगातार नमस्ते भारत मेरा दिल मेरी बातें पर। और अब दो गाने बैक टू बैक आपके लिए, प्रकाश शिंदे की फरमाइश दिल जले फिल्म और गुनहा फिल्म, पंकज मोहड़ ने हम तक पहुंचाया है ये गाना अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो की आवाज़ में। तो एंजॉय कीजिए ये दो गाने बैक टू बैक ओनली ऑन FM रेनबो। नमस्ते भारत मेरा दिल मेरी बातें।

अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे पीरियोडिक एफएम अपडेट्स ऑफ 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 और उसके बाद एक बार फिर आपकी दोस्त माला आपके साथ जुड़ जाएगी नमस्ते भारत कार्यक्रम में।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: नमस्कार, जापान के नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं कविता।
2: एंड आई एम दर्पण।
1: अब तक के भारत के प्रदर्शन की बात करें तो भारतीय परफॉर्मेंस में 2 मेडल कंफर्म हो चुके हैं। पहली अपडेट में हमने आपको बताया था सुचिका तारियाल MMA सेमीफाइनल के मुकाबले में पहुंच गई हैं, जहां कम से कम उन्होंने अपने लिए एक कांस्य पदक सुनिश्चित कर लिया है और दूसरा पदक ऑफिशियल तौर पर आया है शूटिंग रेंज से।
2: Yes, so that becomes the first official medal that has been confirmed. Of course, Suchika could go on to get into the final, could wield a silver or a bronze. But the first official medal has come from the shooting range, 10-meter air rifle women's team event, where the trio of Elavanil Valarivan, Sonam Maskar and Vidarsa Vinod have confirmed a silver medal, and India are off the mark on the medals tally. Let us also tell you that out of these three, two shooters have even made it to the final of the individual event, which means Elavanil Valarivan and Sonam Maskar will be in action in the final of the 10-meter air rifle women's individual event final at 11 a.m. which means we could have a couple more medals in the store.
1: और अभी मेडल की उम्मीद खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके बाद स्विमिंग में भी हमारे पास एक मौका है मेडल अर्जित करने का। स्विमिंग में ऋषभ दास फाइनल में एंट्री कर चुके हैं, जहां 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ आज अपना फाइनल मुकाबला खेलेंगे और इसी के साथ इनके साथ रहेंगे रिजर्व में उत्कर्ष पाटिल, जिनका मुकाबला होगा दोपहर को 2:40 पर। उम्मीद है कि यहां ऋषभ का मेडल आ जाए।
2: Then talking about a medal, where we are thinking that a medal is assured, is cricket. Women's cricket is currently underway. The semi-final match has begun. India are facing off against Bangladesh. India have won the toss, decided to have a bat first, and currently as we speak at the Korogi Sports Park, the duo of Smriti Mandhana and Shefali Verma is on the park, and Smriti Mandhana is just 7 runs away from becoming the highest ever run getter in women's T20 internationals. Will she be able to break that record? We will know soon. Earlier in the day, Sri Lanka defeated Pakistan and made it to the final. So if India wins this, they will be facing off against Sri Lanka in the finale.
1: बात करते हैं टेबल टेनिस की, जहां हमारी महिला जो टीम है उन्होंने एक शानदार आगाज दिया है। दर्पण ने बताया क्रिकेट के बारे में और यहां पर हम टीटी की बात कर रहे हैं, जहां पर विमेंस टीम इवेंट में ग्रुप एफ के मुकाबले में इन तीनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने मुकाबले जीत लिए हैं। श्रीजा अकुला, दिया चिताले, यशस्वनी घोरपड़े ने यहां पर शानदार तरीके से एक तरफा अंदाज में जो आगाज दिया है टेबल टेनिस में, देखना होगा कि आगे का रास्ता कैसा रहता है।
2: Right, and the men's team is also in action in table tennis. India is facing off the same opponent, Indonesia, in the men's team event. Satyan Nanasekaran got us off to a great start by winning the first match, and then in a seesaw battle, Manav Thakkar was pushed to the limit, but he came out on the top as well. He won his match as well, and currently Manush Shah is

0: playing in the third match, 5 matches in total in one fixture, and if you win 3 of them, you win the entire fixture. The women won 3 straight, the men have won 2. If they win this one, they will be winning this fixture as well.
1: बिल्कुल, अब बात होगी हॉकी की, क्योंकि हॉकी में एक अच्छी खबर तो हमारे पास सुबह आ चुकी है, जहां पर भारतीय महिला टीम ने एक शानदार तरीके से आगाज दिया, लेकिन दूसरा मुकाबला भी होना बाकी है, जहां बात होगी पुरुषों की, और पुरुषों के मुकाबले में ये पूल ए का मुकाबला है, जहां आज ये दोनों टीमें इंडोनेशिया के साथ मुकाबला है, 11:30 बजे आज मैदान पर होंगी।
0: राइट, रिमेम्बर इन द हॉकी इवेंट अ क्वालिफिकेशन फॉर द 2028 LA ओलंपिक्स इज एट स्टेक, सो वी वांट बोथ आवर मेंस टीम एंड द वुमेन्स टीम टू विन गोल्ड। द वुमेन्स टीम डिफीटेड उज्बेकिस्तान अर्लियर टुडे बाय 19-0, वेयर दीपिका हरसेल्फ स्कोर्ड 8 गोल्स एंड सविता पुनिया आवर गोलकीपर हैड नॉट मच टू डू। She was playing her 320th international match, and with that she has now become along with Vandana Kataria the joint most capped player for India in women's hockey. Anyhow, talking about India's badminton campaign now, that gets underway at 11:30 today, where India are going to face off against Kazakhstan, and the women's team event is what we are talking about. So that would be in action, plenty in store, and we will be giving you updates at regular intervals.
1: तो हमारे साथ इन अपडेट के लिए बने रहिए, और अगले अपडेट के साथ मैं और दर्पण आपके साथ फिर से जुड़ेंगे ठीक 12:30 बजे।
2: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
3: खास गणेशोत्सवानिमित्त जय गणेश नवीन डिपॉझिट स्कीम।
4: व्याजदर सर्वसाधारण ठेवीदार 7.25%, ज्येष्ठ नागरिक 7.40%, ठेव कालावधी 444 दिवस, मासिक आणि त्रैमासिक व्याजांच्या पर्यायांसह।
3: ही योजना फक्त 25 सप्टेंबर 2026 पर्यंतच, अटी लागू।
4: कॉस्मॉस कोऑपरेटिव्ह बँक, जीवन करा समृद्ध।
5: एक बार फिर आप जुड़ गए आकाशवाणी मुंबई के FM रेडियो 107.1 FM, नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें, साथ बनी हुई लगातार आपके आपकी दोस्त माला।

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर, और पूछना बहुत जरूरी है तभी तो पता चल पाएगा कि आप किसके साथ जुड़े हुए हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आकाशवाणी मुंबई के एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। कार्यक्रम चल रहा है नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें, और साथ में है आपके आपकी दोस्त माला। वैसे मुंबई की अगर बात करें तो जरा सोचिए, जिस काम को शुरू करते समय शायद आसपास के बहुत से लोगों ने उतनी गंभीरता से नहीं देखा होगा, वही कुछ महीनों बाद पूरे देश की नज़र में कैसे आया। और मुंबई में हम रोज देखते हैं कि समुद्र का किनारा, सड़क, स्टेशन, पार्क, सोसाइटीज, और कभी कभी वही सवाल, आखिर सफाई करेगा कौन, सफाई रखेगा कौन। वर्ल्ड क्लीनअप डे हमें याद दिलाता है कि सफाई सिर्फ कूड़ा उठाने का नाम नहीं है। इस साल संयुक्त राष्ट्र ने फूड वेस्ट को भी इस मुहिम के सेंटर में रखा है, केंद्र में रखा है, क्योंकि हर दिन दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा मील्स जो हैं, भोजन जो है, वो बर्बाद हो रहा है। तो आज अपने घर की प्लेट से शुरुआत कीजिए, जितनी ज़रूरत हो उतना ही लीजिए, खाने को व्यर्थ जाने से बचाइए और कचरे को सही जगह पहुंचाइए, क्योंकि नदी तक पहुंचने वाला कचरा अक्सर कहीं ना कहीं हमारी अपनी आदतों से ही निकलता है। और बहुत सारे जो मैसेजेस आए हैं उनमें से पंकज महोट की पसंद का गाना तो हमने भाई शामिल कर लिया, अब बारी है मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान इसरार और नरगिस खातून की, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। वहीं यशवंत आडमुठे ने भी साजन फिल्म के गाने की फरमाइश हम तक पहुंचाई है। रामदास तांबे डोंबिवली से हमें सुन रहे हैं, और ये मैसेज जो है ये आया है पंडार कवड़ा से, अनिल बुरांडे, उषा, अनुश्री, धनश्री और बलहार शाह से, सूरज लोढ़े, प्राची और एकलव्य का, और ये भी सुनना चाहते हैं यही गाना जो हम आपके लिए प्ले करने जा रहे हैं, क्योंकि आज महेश भट्ट साहब का जन्मदिन है, तो जख्म फिल्म का ये गाना क्यों ना प्ले किया जाए।

आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम आप सुन रहे हैं। और भाई दीपा पालकर कह रही हैं कि अभी कुछ दिनों के बाद गणपति विसर्जन जो है समुद्र में होगा और नदी में तालाब में होगा। उस दिन जितना भक्तिभाव होता है दूसरे दिन, लेकिन जब हम किनारे पर जाते हैं समुद्र के तो भाई गणपति छिन्न विछिन्न दिखाई देते हैं। किनारे पर देख कर बहुत सारे आंसू आँखों में आ जाते हैं। तो दीपा जी आपकी बात बिल्कुल सही है। वहीं प्रमोद चिंचोलकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रमोद जी आपकी पसंद का गाना जो है वो हम ज़रूर बजाएंगे और जन्मदिन की शुभकामनाएं तो हम लगातार महेश भट्ट साहब को पहुंचा ही रहे हैं। वहीं फिरोज सिकनपुरिया भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का इंदौर तो स्वच्छता के बारे में नंबर एक है, वहीं अजनार की स्वच्छता भी वाह। हमारी मुंबई की भी सफाई कुछ ऐसी ही हो जाए तो मज़ा ही आ जाए। उसके लिए हम सभी को मिलकर हाथ बटाना होगा प्रकाश जी। और स्मिता पालकर को कार्यक्रम जो है बहुत अच्छा लग रहा है, परिपूर्ण कार्यक्रम उन्हें लग रहा है।

0: थैंक यू सो मच स्मिता जी. इसी तरह अपनी राय हम तक पहुंचाते रहिए. हमारा नंबर आपके पास होगा ही 8657661071. और राम प्रजापति वसई से जुड़ गए हैं, चाय का प्याला भी उन्होंने हम तक पहुंचाया है. वहीं विजेंद्र घटोल अकोला से हमारे साथ जुड़े हुए हैं. रजनीकांत पाटिल वाड़वन, रघुनाथ पाटिल हैं ये, वाड़वन से जुड़े हुए हैं. श्रेय राउत, मिलेश राउत और आर्य मिलेश राउत टिगरेपाड़ा से हमें सुन रहे हैं. सुमित प्रकाश मोदले भी हमारे साथ जुड़े हैं चिंचनी से. और पंकज महोड़ तो सुन ही रहे हैं लगातार. अजय साखरे इंदौर से, मोहम्मद फरमान, यशवंत आडमुठे. यशवंत जी, आपकी पसंद का गाना हम बस अभी प्ले ही करने वाले हैं. एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक और उसके पार कमर्शियल ब्रेक के पार आपकी पसंद का गाना साजन फिल्म से.
1: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम.
2: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ.
1: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है. शर्तें लागू. कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध.

तो भाई हम वाकई में आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए तो जुड़े रहते हैं आपके साथ आकाशवाणी मुंबई के FM रेनबो 107.1 FM पर. और आज नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें में सुरेंद्र की कहानी की सबसे खूबसूरत बात यही लगती है कि उन्होंने किसी घोषणा का इंतजार नहीं किया. जिस जगह की हालात उन्हें परेशान करती थी, वहीं से अपना काम उन्होंने शुरू कर दिया. और आज जब उनकी तस्वीरें वायरल हैं, तो सवाल ये नहीं कि वायरल कैसे हुआ, सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से हुई. शायद बदलाव हमेशा बड़ी भीड़ में शुरू नहीं होता, कभी कभी एक इंसान, एक फावड़ा और एक साफ इरादा भी शुरुआत बन सकता है. तो इस वर्ल्ड क्लीनअप डे पर मेरी बस आपसे एक छोटी सी बात, अपने आसपास की किसी एक जगह को देखिए और सोचिए कि मैं इसे थोड़ा बेहतर कैसे छोड़ सकता हूँ या बना सकता हूँ. मैं हूँ माला और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो 107.1 FM पर नमस्ते भारत, मेरा दिल मेरी बातें. फिलहाल आखिरी गाना आज का, आज की इस मुलाकात का आपसे आकाशवाणी पर, लेकिन इस वादे के साथ कि जल्द ही होगी आपसे मुलाकात ऑन FM रेनबो 107.1 FM पर. और प्रमोद चिंचोलकर आपकी पसंद का ये गाना चलते चलते किशोर कुमार साहब की आवाज़ में, क्योंकि पल पल आप हमारे दिल के पास रहते हैं.

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। वक्त हो चला है 10:58 और ठीक 5 सेकंड। आइए आपको इस घंटे की ताजा तरीन खबरों की जानकारी देते हैं। भारत ने नेपाल को राहत सामग्री की एक और खेप भेजी है। इसमें दवाइयां, फॉरेंसिक सामग्री, टेंट, स्वच्छता किट, स्लीपिंग बैग और अन्य आवश्यक सामान शामिल है। राहत सामग्री लेकर पहुंचने वाला भारतीय वायुसेना का यह 9वां विमान है। मुंबई में कोस्टल रोड पर आज तड़के एक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 व्यक्ति घायल हो गया। जानकारी के अनुसार मरीन ड्राइव से हाजी अली की ओर जाते हुए एक बीएमडब्ल्यू कार तेज रफ्तार के कारण दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मुंबई के काला चौकी इलाके में गणेश उत्सव मंडल के पास बिजली का करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 4 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना दत्ताराम लाड मार्ग पर महागणपति उत्सव मंडल के प्रवेश द्वार के पास बनाए गए अस्थायी पेयजल स्टॉल में हुई। मुंबई में आज सुबह से आसमान में बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार अगले 3 से 4 घंटों के दौरान मुंबई और उपनगरों में मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसी के साथ आकाशवाणी के प्रादेशिक समाचार अनुभाग द्वारा प्रसारित समाचार यहीं समाप्त होते हैं। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो 107.1 एफएम पर। अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे हमारा

0: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि हमारा ये कार्यक्रम मन की बात का विस्तार है, और इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया एक बेहद रोचक वेबसाइट का। साथ ही जो वेबसाइट के संस्थापक हैं उनसे बात भी की। आपको याद आया, वेबसाइट थी www.bharatrajya.com और इसके संस्थापक श्री कृष्णा शेषाद्री जी, इनसे प्रधानमंत्री जी ने बात भी की थी। तो आज हम भी कृष्णा शेषाद्री जी से अपनी एक बातचीत के माध्यम से आपको इस वेबसाइट के बारे में बेहद रोचक जानकारी दे रहे हैं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। लेकिन आइए सबसे पहले हम आपको सुनवाते हैं मन की बात का वो अंश जिसमें प्रधानमंत्री जी ने कृष्णा शेषाद्री जी से बात की थी।
1: साथियों, कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा था, आषाढ़ी एकादशी के पावन अवसर पर मुझे यह बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि इतिहास को रोचक बनाने के अपने प्रयास का शुभारंभ कर रहा हूं। उन्होंने आगे बताया, यह आइडिया बहुत ही सिंपल है। आप इस वेबसाइट पर जाएं और कोई भी एक वर्ष चुन लें। यहां आपको आसानी से पता चलेगा कि उस समय भारत के किस हिस्से पर किसका शासन था। मुझे भी यह काफी दिलचस्प लगा। मैंने सोचा कि इसके बारे में और अधिक जानकारी ली जाए। मुझे पता चला कि यह काम मुंबई में रहने वाले श्रीमान कृष्णा शेषाद्री जी ने किया है। मजे की बात यह है कि कृष्णा जी ने वेबसाइट का नाम भी बहुत सिंपल रखा है, www.bharatrajya.com। उन्होंने जो प्रयास किया है उसकी जानकारी आप लोगों तक भी जरूर पहुंचनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों न सीधे श्री कृष्णा जी से ही बात की जाए। साथियों, कृष्णा जी हमारे साथ फोन पर जुड़ रहे हैं। कृष्णा जी नमस्ते।
2: नमस्ते सर, नमस्ते।
1: भाई, मुझे पता चला है न आप टेक की दुनिया से हो, न आप हिस्ट्री टीचर हो, फिर भी आपने टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हिस्ट्री की साइट बना डाली, तो मुझे बहुत उत्सुकता है ये सब कैसे हुआ।
2: धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। तो सर, मेरे बारे में अगर मैं थोड़ा बताऊं तो सर, मैं एक इंजीनियर था, फिर मैंने MBA किया, फिर मैं मार्केटिंग फील्ड में चला गया। लेकिन ये सब जब भी करता था तब भी मेरे को बचपन से इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट था। तो आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू समथिंग ऑन हिस्ट्री, हाउ टू मेक इट इंटरेस्टिंग। एंड मेरे को ये भी लगता था कि हम जैसे हिस्ट्री सिखाते हैं उसमें हम बहुत इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, उसमें हम बहुत बदलाव लेके आ सकते हैं, हिस्ट्री को एक कहानी बना के लोगों तक पहुंचा सकते हैं।
1: कृष्णा जी, भारतीय इतिहास का ऐसा कौन सा पहलू है जिसके बारे में आपको लगा इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों को होनी चाहिए?
2: सर, अगर आप भारतीय इतिहास जैसे हमारे स्कूलों या कॉलेजों में सिखाया जाता है, जैसे आप देखते हो, तो वो एक कोई एक एम्पायर या कोई एक किंगडम, उसके दृष्टिकोण से, उसके नजरिए से सिखाया जाता है, और वो एम्पायर्स को डिस्प्रोपोर्शनेट अटेंशन भी मिलता है। इस चक्कर में बाकी के बहुत सारे जो हमारे साम्राज्य थे, जो महान साम्राज्य थे, जैसे चोलास थे, पल्लवास थे, करकोटा डायनेस्टी था कश्मीर में, अहोम्स थे, जिन्होंने कम से कम 600 साल आसाम में अपनी संस्कृति और अपने वैल्यू सिस्टम को बरकरार रखा, ये सब के बारे में हम नहीं जानते। तो मैंने सोचा कि ऐसा कोई एक साइट बनाए जो ऐसे महान साम्राज्य को भी लोगों से इनको इंट्रोड्यूस किया जाए।
1: कृष्णा जी, आप इतनी मेहनत करते हैं, मैं ऐसे ही आपको

0: हाइपोथेटिकल सवाल पूछता हूँ, अगर आपको इंडियन हिस्ट्री के किसी भी तीन लोगों से बातचीत का अवसर मिले तो आप किन से बात करना चाहेंगे और क्यों?
1: हाँ सर, तो पहले मैं बात करूंगा राजराज चोला या राजेंद्र चोला सर से, जो चोला साम्राज्य के सबसे मोस्ट पावरफुल या सबसे इम्पोर्टेंट राजाओं में से थे। तो मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि पहले उनको ये विजन कैसे आया, जैसे उन्होंने बृहदीश्वर टेम्पल या गंगाईकोंड चोलापुरम के जो बड़े बड़े मंदिर हैं, शिव जी के मंदिर हैं, वो एग्जीक्यूट करने के लिए उनको वो विजन कहाँ से आया, वो प्लानिंग कैसे की, उनको वो थॉट कैसे आया कि हम ऐसा कुछ बना के जाए जो अगले 1000 या 2000 साल तक दूसरे लोगों को प्रेरित कर सके, तो वो मुझे उनसे जानना है। और दूसरी जो पर्सनैलिटी है, ये एक्चुअली मेरे हिसाब से इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत अंडररेटेड पर्सनैलिटी है सर, उनका नाम है हेमू। तो हम उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा इंडियन इतिहास में 2 या 3 लाइन पढ़ते हैं, तो हमको ये नहीं पता है कि वो जो हेमू जो थे सर, वो एक कॉमन मैन थे, साधारण इंसान थे, वो एक व्यापारी थे। उधर से उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, और वो नॉट ओनली वो एक एम्पायर बिल्डर थे, वो एक मिलिट्री थिंकर भी थे, मिलिट्री जीनियस थे, जिन्होंने अपने करियर में 23 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से उन्होंने 22 लड़ाइयां जीती। तो उनका थॉट प्रोसेस कैसा था और कैसे वो एक आम आदमी से एक इतने बड़े राजा बने, वो उनका वो जर्नी मैं जानने की बहुत दिलचस्पी रखता हूँ सर। और तीसरी जो है, ये दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटी, शी इज अ वुमन सर, त्रिभुवना महादेवी। तो ये जो है एक उड़ीसा में एक किंगडम है जिसका नाम था भौमाकारा डायनेस्टी। तो इनकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है। इन्होंने जब 850 के आसपास जो साल में उनके जो नेबर पाला एम्पायर ने इनके एम्पायर पे धावा बोल दिया था सर, और इनके राजा जो इनके हस्बैंड थे वो उस लड़ाई में शहीद हो गए, और इसके वजह से वो एम्पायर बहुत छोटा हो गया, और उसके जो सरदार थे, उसके जो लीडर्स थे, वो एम्पायर छोड़ के जाने लग गए थे। तो ये जो त्रिभुवन महादेवी जो लेडी थी, इन्होंने वो सरकार संभाली, एंड शी बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और उन्होंने सरकार को नॉट ओनली स्टेबिलाईज किया, बट इतना उसको पावरफुल बना दिया कि वो अगले 100 साल तक कलिंगा और वो एरिया में राज करते रहे। तो दीज आर 3 इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज व्हिच हुम आई वुड लाइक टू मीट इन हिस्ट्री सर।
2: हम जानते हैं कि ये बातचीत आपको बेहद रोचक लग रही है, लेकिन आपको हम ज्यादा तो ऑडियो क्लिप नहीं सुनवा पाएंगे। हाँ, कृष्णा शेषाद्री जी से हम बहुत सारे सवाल जरूर करेंगे, ताकि इस वेबसाइट के बारे में, उनके इस प्रयास के बारे में हम और ज्यादा जान सके। तो सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत करते हैं कृष्णा शेषाद्री जी का। कृष्णा जी, हमारे इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद धन्यवाद।
2: आप ये बताएं कि प्रधानमंत्री जी ने आपकी वेबसाइट का उल्लेख मन की बात में किया और आपसे संवाद भी हुआ उनका, कैसा लगा आपको, आपका अनुभव कैसा रहा?
3: फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, एंड ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आपने मुझे आपके स्टूडियो पे बुलाया। और जैसे बात आती है मन की बात की, तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं अपने देश के प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो वेबसाइट मैंने बनाया था, एकदम मैंने एक हॉबी की तरह से बनाया था, मेरे को इससे कोई अपेक्षा नहीं थी, मुझे पसंद था तो मैंने बनाया। तो जब मुझे पता चला कि इस वेबसाइट को प्रधानमंत्री जी ने ना ही देखा है बट उसे यूज भी किया है, उसके एक्सपीरियंस किया है, उसके बहुत सारे फीचरों के साथ खेला है, तो इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी, नॉट ओनली फॉर मी बट फॉर माई फैमिली एज वेल। द मोस्ट इमोशनल मोमेंट फॉर मी वॉज वेन माई मदर क्राइड आफ्टर सीइंग द ब्रॉडकास्ट, इट वॉज टीयर्स ऑफ जॉय दैट शी हैड। मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ गई थी कि हमारे सबका एक लक्ष्य होता है, पूरी दुनिया चाहे ना चाहे, हमें अपने माँ पिताजी, वी हैव टू मेक देम प्राउड, और वो मैंने इसके थ्रू किया, दैट वॉज माई बिगेस्ट सेटिस्फैक्शन। और मेरी जो वाइफ है, शी इज अ नेशनल लेवल राइफल शूटर, सो शी नोज हाउ हार्ड इट इज टू अचीव समथिंग एट दैट लेवल, एंड सो शी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी हैप्पी। और रही बात बाकी दोस्तों या प्रतिक्रियाओं की, मेरे बहुत सारे जो ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप थे जिसमें कोई मैसेज नहीं भेजता था, वो जाग उठे थे मन की बात के बाद। बहुत सारे लोगों ने उसमें कॉन्ग्रेचुलेट किया, बहुत सारे लोगों ने अपनी पॉजिटिव ओपिनियन या प्रतिक्रिया दी, वेबसाइट के बारे में तारीफ की, विच आई फेल्ट वेरी हैप्पी। एंड द बेस्ट पार्ट वॉज अ लॉट ऑफ पीपल इन माई पेरेंट्स, जो हमारे मम्मी डैडी अपार्टमेंट में रहते हैं, बहुत सारे लोगों ने मेरे मम्मी डैडी को, अच्छा वो आपका बेटा है, वो आपका बेटा है, जो वो एक फीलिंग मेरे मम्मी डैडी के, आज भी मेरी मम्मी डैडी के आंखों में वो जो प्राइड है, मैं आपको सच बताऊं तो अभी भी, आज भी मैं थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा है कि, मेरे हिसाब से आई थिंक 2 हफ्ता हो गया है, लेकिन अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक्चुअली ये मेरे वेबसाइट का जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया।
2: अच्छा, ये बताएं कि वेबसाइट शुरू करने का विचार आपको कैसे आया, कब सोचा आपने कि इस तरह की एक वेबसाइट मुझे शुरू करनी है?
3: एक्चुअली

0: मन की बात में भी सुना होगा, तो मैं हिस्टोरियन नहीं हूँ, तो मैं एक इंजीनियर हूँ, फिर मैं एक MBA हूँ, मैं अभी मार्केटिंग में काम करता हूँ, अभी जो मैं काम कर रहा हूँ जो मेरे प्रोफेशनल लाइफ है और इतिहास में उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन बचपन से मुझे इतिहास में एक विशेष तरह की दिलचस्पी है। आई हैड अ वेरी गुड इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, तो एक्चुअली उसका इंस्पिरेशन जाता है मेरी माँ को। वी आर ऑल तमिलियंस। मेरी माँ एक तमिल में एक मैगजीन आती थी उस टाइम पे, वीकली मैगजीन होती थी, उसका नाम कल्की था। तो उन्होंने एक जो साउथ इंडियन चोलास के ऊपर एक एपिक लिखी थी, उसका नाम था पोन्नियिन सेल्वन। एक दो साल पहले उसकी पिक्चर भी बनी थी। तो उस मैगजीन में हर हफ्ते वीकली स्निपेट्स के हिसाब से छपती थी, और मेरी माँ हर हफ्ते वो मैगजीन लेके आती थी और मुझे पढ़ के सुनाती थी। और उन्होंने इतने अच्छे से उस टाइम का, उन चोलास का, उन मंदिरों का और उस लैंडस्केप का इतने अच्छे तरह से वर्णन किया था कि मेरे तभी से मेरी हिस्ट्री में इंटरेस्ट शुरू हो गया था कि ये हम और किस तरह से देखें और किस तरह से जानें। और इस तरह से मैंने इतिहास के और सारे कई सारे किताबें पढ़ना शुरू की और वहीं से मेरा इंटरेस्ट हिस्ट्री में था। और रही बात भारत राज्य के इंस्पिरेशन की, तो मेरे जब भी मैं हिस्ट्री क्लास में स्कूल में पढ़ता था या कोई मुझे हिस्ट्री सिखाता था, हमारे देश में जिस तरह से हिस्ट्री सिखाई जाती है उससे आई वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ इट। क्योंकि हम क्या करते हैं, एक इतिहास जैसे एक सब्जेक्ट को या एक डेट या कोई किंगडम या कोई किंग उस लेवल पे लेके आ जाते हैं, तो उसके वजह से क्या होता है कि इतिहास जो है एकदम ड्राई और बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। जैसे आपने बहुत लोगों से सुना हुआ कि जहांगीर ने क्या किया, उससे मेरा क्या लेना देना, तो मतलब हिस्ट्री एकदम बोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। और हम कभी भी हिस्ट्री को पूरे भारत के दृष्टिकोण से नहीं देखते। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं बताऊं कि हमको ये नहीं पता कि जब मुगल नॉर्थ में थे, जब बाबर आए थे देश में 1526 में, तब साउथ में क्या हो रहा था। जब वास्को डगामा आए थे 1400s के एंड में, तब नॉर्थ ईस्ट में क्या हो रहा था। तो हमें एक पूरा इंडिया का व्यू हिस्ट्री में कभी नहीं मिलता। तो ये जो था, ये आइडिया मेरे मन में 15 साल से इट वॉज ट्रबलिंग मी, मेरे को चुभ रहा था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब वो आइडिया आया तो मेरे पास वो ना टेक्निकल एक्सपर्टीज थी ना नॉलेज थी उस आइडिया को एक वर्किंग वेबसाइट बनाने में। लेकिन जब ये AI रेवोल्यूशन आया 3 साल, जब AI ने हमें कोडिंग और प्रोग्राम बनाने की शक्ति दी, तो मैंने सोचा क्यों ना उसे इस्तेमाल करके मेरे 15 साल के ख्वाब को सच बनाया जाए।
1: तो कृष्णा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ऐतिहासिक लेखों, दुर्लभ तस्वीरों और नक्शों को जब हम आर्काइव करते हैं, फिर उन्हें जब सर्च करना चाहते हैं, तो उसके लिए डेटाबेस को कैसे आपने डिजाइन किया?
0: अगर आप भारत राज्य के वेबसाइट देखेंगे तो इसका स्ट्रेंथ ही इसकी सिंप्लिसिटी है। हम ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस या ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें हम यूज करते हैं। हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पहलू, जो वेबसाइट का जो हीरो है, वो मैप है। आप देखोगे तो बहुत सारे इंटरनेट में ऐसे ओपन सोर्स मैप मिलते हैं जहां पे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आपको बराबर मैपिंग मिल जाती है। तो हमने क्या किया कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल का जो मैप है, उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल के मैप को लिया और हमने एक सब कॉन्टिनेंट व्यू लिया था। भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, इस 5 कंट्री के मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल मैप्स मिले। और फिर हम मैंने क्या किया कि AI के थ्रू मैंने ऐसे सोर्सेस या ऐसे बुक्स चूज किए जो इतिहास में एक स्टैंडर्ड माना जाता है, जैसे जादूनाथ सरकार जी हैं और ऐसे बहुत सारे किताबें हैं जो हमने मैसूर किंगडम के एक हयवर्धन राव करके एक हैं, शायद मैं नाम में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक कर सकता हूँ, मुझसे माफी चाहता हूँ। तो ऐसे मैंने कम से कम एटलीस्ट 25-30 बुक्स को सोर्सेस के नाम पे डिसाइड किया। और फिर मैंने क्या किया कि AI को ये सारे बुक्स में सर्च करने बोला कि एक ईयर में उस डिस्ट्रिक्ट में कौन राज कर रहा था। और इस तरह से मैंने एक पूरी मैपिंग बनाई। अभी जो आप लेते जाओगे तो 300 CE से आपके पास डेटा है, तो 300 CE टू 2026 में हर एक साल में हर एक डिस्ट्रिक्ट में किसने राज किया का मैंने मैपिंग बनाया, और वो मैपिंग से आपको भारत राज्य आज दिखता है।
1: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी। यहाँ इसी मोड़ पर मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
0: हाँ, ये जो गीत है ये मेरी वाइफ और मेरे पिताजी और मेरी मम्मी, ये तीनों का वन ऑफ मोर मोस्ट फेवरेट सॉन्ग्स। डेफिनेटली ये गाना सुनिए। ये गाना है अमर प्रेम से कुछ तो लोग कहेंगे।
1: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि जो पुरानी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें होती हैं या दस्तावेज होते हैं, जब हम वो चेक करते हैं तो वेबसाइट की जो स्पीड है बहुत धीमी हो जाती है उनकी वजह से। तो आपने ऑप्टिमाइजेशन की तकनीक इस्तेमाल की है ताकि ठीक से ये वेबसाइट चल सके?
1: तो हमारे वेबसाइट में मैंने ऐसे कोई हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें या ये कोई नहीं डाला है, क्योंकि मेरा ये मैप बेस्ड वेबसाइट है, तो इसमें हम तस्वीरें नहीं डाल रहे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि अगर हम तस्वीरें डालते हैं तो हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, कि भारत राज्य का मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में किस किस भाग में कौन राज कर रहा था। तो मेरे को उस ऑब्जेक्टिव से डाइवर्ट नहीं होना था, तो इसके लिए पिक्चर्स हो या ऐसे हाई रेजोल्यूशन फोटो हो जिससे यूजर का ध्यान या यूजर का क्या बोलते हैं उसका एक्सपीरियंस हर्ट हो सकता है या डिमिनिश हो सकता है, वो कोई भी फीचर मैंने नहीं डाले हैं। और रही बात उससे डेटा निकालने में, हाँ बहुत सारे किताबें ऐसी थी जो एक फोटो के हिसाब से थी, तो हमने जब एरिया के लिए वो डेटा सेट लोड करने से पहले मैंने उसको OCR कराया, उसको एक टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और उस कन्वर्जन से मैंने डेटा निकाला। लेकिन अगर आप देखने जाओगे वेबसाइट में कोई ऐसा कोई फोटो नहीं है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर हम वो फोटो डालते हैं तो यूजर का ध्यान बट जाता है और हमारे वेबसाइट का कोर ऑब्जेक्टिव है वो शायद कहीं मीट नहीं हो पाता।
0: आपकी वेबसाइट में लोग सामग्री जोड़ सकते हैं और इस तरह से आपके प्रयास में वो भी जुड़ते हैं। मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि आपने सिक्योरिटी के लिए भी क्या कुछ फीचर्स ऐड किए हैं कि जो हमारे सही तथ्य हैं उनसे छेड़छाड़ ना हो।
1: हमने किसी को भी एडिट राइट नहीं दिए हैं, तो एडिट राइट्स अभी फिलहाल सिर्फ मेरे पास ही हैं। तो कोई भी सुझाव आते हैं, कोई भी हमको करेक्शंस आते हैं, कोई भी रिकमेंडेशंस आते हैं, तो मैं अपने सोर्सेज, जो हमने बुक्स की जो सोर्सेज गैदर की हैं, जो आपको हमारे वेबसाइट के सोर्सेज के टैब में भी मिल जाएंगी, उसके अगेंस्ट मैं मेजर करता हूं। अगर वो सोर्स में होता है तो ही मैं उसको इनकॉर्पोरेट करता हूँ। पूरा वेबसाइट का कंटेंट है, मैं अकेले अपने कंप्यूटर से उसको अपलोड करता हूँ। ये कहीं इंटरनेट में या कहीं ऐसे जगह नहीं है जहां पे आके लोग उसे हैक कर सके। तो इसके लिए जितना मैंने ये वेबसाइट को सिंपल बनाया है। और रही बात सिक्योरिटी या चोरी करने की डेटा की, तो मैंने ये जो वेबसाइट है ये ओपन सोर्स कर दिया है, फ्री कर दिया है, तो अगर कोई भी जाके मेरे वेबसाइट से वो मेरा जो भी सारा डेटा है वो डाउनलोड करके अपना खुद का वेबसाइट भी बना सकता है। क्योंकि मैंने जब ये वेबसाइट बनाया तो मुझे ये लगा था कि हमको कभी अपना जो नॉलेज है, अपनी जो भारत की इतनी वास्ट नॉलेज का जो हमारी रिपोजिटरी है, वो हमेशा सबको ओपन होनी चाहिए। इट हैज टू बी एक्सेसिबल फॉर एवरीवन। और हम वो नहीं कर सकते अगर हमने उसमें कुछ या पे वॉल लगा दिया या उसको पैसे लेके उसको एक्सेस दिया, तो ये जो वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव है टू मेक हिस्ट्री फन टू एवरीवन, वो फेल हो जाएगा। इसके लिए मुझे सिक्योरिटी की कोई डर नहीं। अगर कोई तोड़ के डेटा ले भी जाए तो वो अच्छा ही है, क्योंकि मैं उसे बस विश करूंगा कि इससे भी अच्छा और वो वेबसाइट बना दे। तो अगर आप जब भारत राज्य के वेबसाइट में जाएंगे तो वहां पे एक करेक्शंस करके एक टैब होगा, तो अगर वो आप करेक्शंस के टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको दो टाइप के सजेशंस आप हमें दे सकते हो। एक है कि अगर हमें कुछ फीचर्स चाहिए, जैसे हम बहुत लोग ने आज मन की बात प्रोग्राम के बाद बहुत लोगों ने ऐसा सुझाव दिया कि ये वेबसाइट को आप रीजनल लैंग्वेज में अवेलेबल करो, तो वो टाइप के फीडबैक भी हम आप दे सकते हो। और अगर दूसरी टाइप का फीडबैक है, अगर आपको लगता है कि इस प्रदेश में जो हमने मार्क किया है ये जो रूलर है वो गलत है, तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल तक के करेक्शंस भी आप हमें पहुंचा सकते हो। इट इज अ वेरी इजी टू यूज, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड टैब, और आप उसमें जैसे ही करेक्शन सबमिट करोगे वो हमको मेल में आता है, हम उसे रीड करते हैं। अगर वो सोर्सेस के साथ वेरीफाई होता है तो हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि करेक्शंस की इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमने 1000 डिस्ट्रिक्ट को कम से कम 1500 साल पे मैप किया है। इसका मतलब है हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको 1000x1000 टाइम्स एंट्री आपको मिलेगी, तो और हमें पता है कि कहीं ना कहीं हम गलतियां करेंगे और इस गलती को हमको सबको मिलकर सुधारना है। क्योंकि इंडियन हिस्ट्री ऐसी चीज है जो एक आदमी या एक वेबसाइट की बस की बात नहीं है, ये हम सबका एक वेबसाइट है और हम सबको मिला के सामूहिक योगदान से ही हम इसकी एंट्री को और एक्यूरेट बना सकते हैं और बेटर बना सकते हैं, ताकि अगले कुछ सालों तक ये हिस्ट्री लर्निंग को मजेदार बने।
0: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी। यहाँ इसी मोड़ पर मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
1: सो दिस इज ऑल्सो डेडिकेटेड टू माई वाइफ। ये हमारी दोनों की फेवरेट मूवी तारी जमीन पर से है और वो जो गाना है खोलो खोलो, तो ये हमें बहुत दोनों को बहुत पसंद है एंड ये एकदम मोटिवेशनल सॉन्ग है।
0: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। कृष्णा जी, ये बताइए कि इस प्रोजेक्ट के दौरान आपकी जो सबसे बड़ी सीख थी वो क्या रही और शुरुआती दौर में कैसी चुनौतियां थी?
1: बिगेस्ट लेसन दैट आई हैव लर्न्ड इन दिस एक्सपीरियंस इज बिल्डिंग थिंग्स। कि अगर आप कुछ चीज बिल्ड करते हो और अगर एक चीज क्रिएट करते हो, उसमें जो आपको मजा आता है वो और किसी चीज में नहीं आता। तो जब आप एक चीज आप

0: देखते हो एक वेबसाइट जो नहीं है, देन इट स्लोली कम्स टुगेदर एंड देन फाइनली एक विजुअली वो आपको दिखता है, जो आपको जॉय और वो एंजॉयमेंट आता है, इट आई डोंट थिंक देर आर वेरी फ्यू एक्सपीरियंसेस इन द वर्ल्ड विच आई थिंक प्रोबेबली मैच इट।
1: मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हमारे जो दृष्टि बाधित साथी होते हैं, हम देखते हैं अक्सर कि वो पठन पाठन में बेहद रुचि लेते हैं और साथ ही बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, ऐसे में वो नए नए माध्यमों का इस्तेमाल करते हैं अपने ज्ञानवर्धन के लिए, नई तकनीक इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी वेबसाइट पर क्या स्क्रीन रीडर जैसी सुविधा है ताकि दृष्टि बाधित साथी जो हैं वो भी आपकी वेबसाइट से जुड़ सके?
0: ये एक्चुअली आपने मुझे बहुत दुविधा में डाल दिया है, क्योंकि ये जो है भारत राज्य जो है एक विजुअल मीडियम का वेबसाइट है, इसमें हम विजुअली इंडिया के मैप को दिखाते हैं, इसको हम टेक्स्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कन्वर्ट इनटू टेक्स्ट, और अगर हम टेक्स्ट में कन्वर्ट कर भी दें तो एज अ स्क्रीन रीडर हो या जो तकनीक है वो वेबसाइट उनके लिए ऑप्टिमम एक्सपीरियंस नहीं बनेगा। लेकिन हमने थोड़े कुछ फीचर्स डाले हैं, तो अगर किसी को कलर ब्लाइंडनेस है या किसी को और कुछ है तो वो हमने कलर ब्लाइंड मोड इम्प्लीमेंट किया है ताकि वो भी ये वेबसाइट को एंजॉय कर सके।
1: जब आपने वेबसाइट डेवलप की तो उस दौरान बहुत सारे इतिहासकारों, शोधकर्ताओं या फिर कंटेंट राइटर्स के साथ आपका मिलना जुलना हुआ होगा, बातचीत हुई होगी, तो ये बताएं कि आपने अपनी रिक्वायरमेंट्स कैसे उन्हें समझाई और कहीं इसमें तकनीक तो कोई बाधा नहीं बनी?
0: एक बात मैं अभी सच्चाई में बताता हूँ कि मैंने ये कंटेंट रिसर्च है, ये जो कंपाइलेशन है, ये मैंने अकेले में किया है, लेकिन मैं कभी जिंदगी में ये नहीं बोलूंगा कि मैंने अकेले में किया है, क्योंकि आई एम स्टैंडिंग ऑन द शोल्डर्स ऑफ जायंट्स। द एंटायर कंटेंट, द एंटायर मैपिंग, जो भी आप देख रहे हो भारत राज्य में डिस्ट्रिक्ट में किसने काम किया, ये मेरे से बहुत ही बड़े हस्तियों ने, बहुत ही बड़े हिस्टोरियंस ने इसके ऊपर अपनी पूरी जिंदगियां डेडिकेट की हैं, और उसमें से ऐसे किताबें लिखी हैं जिसमें सब कुछ क्लियर है। जैसे हमारे जो सोर्सेस हैं, सबसे बड़े सोर्स जो है वो आरसी मजुमदार जी हैं, जिनके ऑलमोस्ट 10 से 11 वॉल्यूम हैं, जो इंडिया के वैदिक एज से लेके इंडिपेंडेंस स्ट्रगल तक सारी चीजें कवर करती हैं। फिर हमने नीलकंठ शास्त्री, जिन्होंने साउथ इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। जादूनाथ सरकार जी, जिसने फॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया जैसे इतने अच्छी किताबें लिखी हैं इंडियन हिस्ट्री के ऊपर कि इट इज अमेजिंग द डिटेलिंग दैट दे हैव गॉन थ्रू। और बहुत सारे और भी ऑथर्स हैं, जैसे एक ऑथर थे जिसने सिर्फ राजपूतों पे, राजस्थान पे 5 वॉल्यूम लिखे हैं, एक एक छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट तक उन्होंने कवर किया है कि कब क्या हुआ, कौन सा युद्ध हुआ, युद्ध में कौन सी टेरिटरी इधर से उधर गई। तो मैंने कभी मैंने ऐसा नहीं समझा है कि मैंने अकेले में काम किया है। आई हैव ओनली रेफरेंस्ड एंड आई हैव ओनली यूज्ड द वर्क्स ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज लाइक मजुमदार, जादूनाथ सरकार जी, नीलकंठ शास्त्री एंड ऐसा और एंड सो मेनी मोर ऑथर्स, और बिकॉज ऑफ हुम दिस वेबसाइट इज अलाइव टूडे। मैंने ऐसा तो नहीं कि मेरे पास कोई टीम ऑफ हिस्टोरियंस है, बट मेरे पास इन जैसे महान दिग्गज हिस्टोरियंस का आशीर्वाद था, जिसके वजह से आज ये भारत राज्य जो वेबसाइट है वो लाइव है।
1: जब प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हो रही थी उस वक्त आपने उनसे कहा था कि हम इतिहास को रोचक तरीके से पढ़ा सकते हैं, तो इस बारे में आपके और क्या विचार हैं? एक प्रयास तो आप कर चुके हैं, आपको क्या लगता है हमें अपने बच्चों को अपना इतिहास, अपना गर्व कैसे बताना चाहिए?
0: जो आज हम इतिहास स्कूलों में पढ़ाते हैं, या बहुत सारे जो नौजवान हैं जो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारियां कर रहे हैं, तो उनको ये एक सोर्स ऑफ विजुअल हिस्ट्री है, और अगर ये देखेंगे तो और हिस्ट्री या इतिहास को और अच्छे से वो याद रख सकते हैं। हम वो ही एंगल से इस वेबसाइट को नियर फ्यूचर में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा हमारे वेबसाइट में एक फीचर है ट्रम्प कार्ड का, तो हम सब जब बच्चे थे तब हमने WWE के या क्रिकेटर्स के ट्रम्प कार्ड के साथ बहुत एंजॉय किया है, और आज भी हमको बहुत सारे जो डेटा है वो ट्रम्प कार्ड के वजह से याद है, और हमने ये वेबसाइट में इतिहास के ट्रम्प कार्ड्स बनाए हैं, हर एक एम्पायर के, हर एक किंगडम के हमने ट्रम्प कार्ड्स बनाए हैं। तो अगर वो ट्रम्प कार्ड बच्चे रेफर करें या बच्चे यूज करें, तो उनको इतिहास मजेदार ही नहीं रहेगा, याद भी रहेगा। मेरा उद्देश्य ये है कि हम हिस्ट्री को एक स्टोरी बनाएं, और अगर हम स्टोरी की तरह सब बच्चों को ये इतिहास पढ़ाएं तो वो इतिहास उन्हें याद तो रहेगा ही बट वो उसे वैल्यू भी करेंगे।
1: हो सकता है कि हमारे न्यू डेवलपर्स इस समय आपको सुन रहे हो, हमारे ऐसे साथी, हमारे ऐसे श्रोता जो अपनी कोई वेबसाइट शुरू करना चाहते हैं या किसी वेबसाइट में सहयोग करना चाहते हैं, तो आप जरा उनके लिए बताएं क्या सलाह आप देंगे, उन्हें क्या क्या फीचर्स अपना

0: आने चाहिए और कैसे तैयारी करें?
1: इफ एनीवन वांट्स टू बिल्ड एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, छोटी सी छोटी वेबसाइट हो सकती है या कुछ बड़ा भी प्रोजेक्ट हो सकता है, माय ओनली रिक्वेस्ट टू देम इज आप उसके अंदर जाइए, बिल्ड करना चालू कीजिए, क्योंकि जैसे जैसे आप बिल्ड करोगे वो आपके अंदर अच्छा एहसास होगा, यू विल फील बेटर एंड देन यू विल नॉट ओनली बिकम अ बेटर बिल्डर बट यू विल ऑल्सो बिकम अ बेटर ह्यूमन। ये जरूर बोलूंगा कि ये जो प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात इनिशिएटिव है, इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग एंड अ मोटिवेटिंग इनिशिएटिव। लाइक फॉर एग्जांपल, मतलब कोई जरूरत नहीं थी ये वेबसाइट के बारे में जाके मुझसे बात करने की, बट उन्होंने इसमें इंटरेस्ट लिया, मेरे से बात की, वो वेबसाइट में, इससे बड़ा मोटिवेशन एक फॉरगेट टेक पर्सन किसी को भी नहीं हो सकता। और ये मन की बात जब हो गई तो इसमें मुझे एक रिन्यूड कॉन्फिडेंस आया, एक रिन्यूड एनर्जी आई है, जिसमें से मैं इस भारत राज्य को और भी ज्यादा बेहतर बनाऊं, और भी ज्यादा पीछे टाइम में जाऊं, जितना भारत का इतिहास उसे कवर कर सकूं और इसे एक ऐसा वेबसाइट बनाऊं जो आगे इतिहास के लिए सबसे ज्यादा यूज्ड वेबसाइट हो। तो ये मोटिवेशन मन की बात के साथ आया है और सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेहनत की है तो आपको उसका रिकॉग्निशन मिलेगा। ये मुझे मन की बात के ये प्रोग्राम के थ्रू, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट लेसंस आई हैव लर्न्ड।
0: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी। यहाँ इसी मोड़ पर मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
1: तो ये गाना मेरे जो बॉस हैं सुरेश कुमार सर, आनंद सर और राजेश सर को डेडिकेट करना चाहता हूँ। ये उनका एक वन ऑफ देयर फेवरेट सॉन्ग्स, दिस इज फ्रॉम आई थिंक मूवी हम दोनों, द सॉन्ग इज मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया।
0: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।
2: Even now when I see myself on the screen, I rarely gag about myself. I'm a very great critic of myself. I may not say so to the world, but because I'm a very healthy sign. Because you're in constant process of improving and progress. And that's a very, very great sign for any worker in any field, which is creative.

0: है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है। एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। हम इसी के बारे में आज जान रहे हैं शेषाद्री जी से। यहाँ आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी कृष्णा जी, आपकी वेबसाइट में बहुत सारे ऐतिहासिक पात्र हैं जो हमें प्रेरित करते हैं, लेकिन ये बताइए कि आपके फेवरेट पात्र कौन से हैं, आप किन पात्रों से ज्यादा प्रभावित हुए हैं?
1: अब तो वेबसाइट पूरा बना है तो सारे पात्र से प्रभावित हुए ही, बट माई फेवरेट इज, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, माई फेवरेट इज द ट्रम्प कार्ड सेक्शन। क्योंकि अगर हमने अलग अलग टाइम के, अलग अलग टाइम पीरियड्स के, अलग अलग एम्पायर्स के कार्ड प्रिंट करके हमने हमारे बच्चों या हमारे स्कूलों में डिस्ट्रीब्यूट किया, तो उनके थ्रू वो हिस्ट्री पढ़ाना मजेदार बना सकते हैं और उनके बच्चों के बीच में वो एक खुद ही में एक इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है, जो वो समर में या कभी भी जब उनको टाइम मिले तो खेल के ना ही वो रिलैक्स कर सकते हैं बट इतिहास के बारे में भी जान सकते हैं। तो हमारे वेबसाइट के थ्रू जो है आपको आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट की पूरी हिस्ट्री मिल जाएगी। अगर आप रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हो तो आप रायगढ़ पे क्लिक करोगे तो 300 CE से आज तक रायगढ़ में किस किस लोगों ने राज किया, कितनी बार वो जिला हाथ बदला, कितने राजा आए, कितने राजा गए, ये सब का आपको एक ही जगह पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। वो ही नहीं, आपको और भी आपके डिस्ट्रिक्ट के बारे में और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे उसका पॉपुलेशन क्या है, उसका एरिया क्या है, उसका एवरेज टेम्परेचर क्या है, उसमें कौन से क्रॉप उगते हैं, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, कौन से मंदिर हैं, कौन से आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, सबकी लिस्ट आपको एक ही जगह पे मिल जाएगी। वो भी आप खुद डाउनलोड भी कर सकते हो। कैन टेल यू अ फनी इंसिडेंट रिगार्डिंग दिस। किसी कलीग को दिखा रहा था तो मैंने उसको पूछा कि तुम्हारा जिला कौन सा है, जहां से तुम हो तो उस जिला का नाम बताओ, तो उसने रायगढ़ बताया। तो हमने रायगढ़ पे क्लिक किया तो रायगढ़ में अराउंड 1100-1200 के टाइम पे एक शिलाहारास करके एक जो डायनेस्टी थी वो रूल करती थी। तो वो उसने देखा और उसने बोला कि मेरा जो सरनेम है वो शिलाहारा है। तो वो उसी को नहीं पता था कि वो एक जमाने के राज परंपरा से था। तो वो एक अच्छा सा कोरिलेशन हो गया था हमको और उसको भी एक अच्छी जानकारी मिली जो उसको तभी तक नहीं पता थी।
0: कृष्णा जी, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके और बहुत कुछ हमें आपकी वेबसाइट के बारे में जानने को मिल रहा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आने वाले समय के लिए क्या आप वर्चुअल रियलिटी या AI जैसे फीचर्स भी इसमें जोड़ने की योजना बना रहे हैं?
1: जैसे मैंने आपको बोला था कि 3D मॉडल्स ऑफ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया, जैसे कैलाश टेम्पल हो, या जैसे मैंने बोला था बृहदीश्वर टेम्पल हो, या एलोरा केव्स हो, या अजंता केव्स हो, तो हम वर्चुअल रियलिटी के थ्रू लोगों को उन मॉन्यूमेंट्स को घर बैठे बैठे एक्सपीरियंस दे सकते हैं। मुझे VR के वर्ल्ड के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी है नहीं, तो इसके लिए मैं इसके बारे में आपको विस्तारित से जवाब नहीं दे सकता, लेकिन आई एम श्योर दैट इन द कमिंग टाइम टेक्नोलॉजी विल बी सोफिस्टिकेटेड इनफ वेयर आप घर बैठे बैठे कैलाश टेम्पल को एक्सप्लोर कर सकते। तो ऐसे बहुत सारे फीचर डाल सकते हैं जहां पे लोग घर बैठे बैठे या वो मॉन्यूमेंट में ही वो मॉन्यूमेंट के बारे में जाने और उसको एंजॉय करें। अभी तो फिलहाल 3D मॉडलिंग तो हमने नहीं की, हमने तो एक सिंपल ओवर 2D मैप ओवर लेआउट में हमने एक टाइमलाइन किया है। जैसे हम सोच रहे हैं कि जैसे आगे बढ़े हम ऐसा भी कुछ करें कि भारत के कुछ इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं उसको हम एक 3D मॉडल बना के वेबसाइट में होस्ट करें ताकि लोग वहां पे 3D के थ्रू उस मॉन्यूमेंट्स को एक्सपीरियंस कर सके। ये एक फीचर है जो हमने पाइपलाइन में रखी है, जल्दी में वो हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। कोलैबोरेशन से हमारा जो एक्यूरेसी है, ये जो एनरिचमेंट ऑफ डेटा है, ये कोलैबोरेशन से आगे बढ़ेगा। बट हाउ आई विजुअलाइज दिस वेबसाइट एटलीस्ट इन द नियर फ्यूचर इज एन एजुकेशनल एड।
0: आपसे रोचक बातचीत जारी रहेगी। यहाँ इसी मोड पर मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना पूछना चाहूंगी जो हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे।
1: दंगल टाइटल सॉन्ग है वो।
0: ठीक है, तो लीजिए आपकी पसंद का ये गीत हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। मन की बात का विस्तार लिए ये कार्यक्रम आज आप तक लाया है एक वेबसाइट के बारे में रोचक जानकारी। हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में कृष्णा शेषाद्री जी, जो कि www.bharatrajya.com वेबसाइट के संस्थापक हैं और अपने इस सपने को साकार कर चुके हैं वेबसाइट के माध्यम से। मैं ये उम्मीद करती हूँ कृष्णा जी, जब आपसे इतनी रोचक बातचीत आज हमारी हुई है, हमें bharatrajya.com के बारे में पता चला है और प्रधानमंत्री जी ने भी हमें प्रेरित किया है कि हम अपने प्रेरणा देने वाले ऐतिहासिक पात्रों के बारे में जाने आपकी वेबसाइट के माध्यम से, तो जो श्रोता आज हमें सुन रहे हैं ऐसे में बहुत सारे छात्र भी हो सकते हैं, विद्यार्थी हैं या शोधकर्ता हो सकते हैं, इतिहासकार हो सकते हैं।

0: उन्हें आपके इस प्रयास से जरूर मदद मिलेगी और हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे युवा साथी भी अपने बीते हुए कल को गर्व के साथ याद करें और उसमें आपकी वेबसाइट भी उनकी मदद करती रहे। बहुत सारी शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार की ओर से आपको और आपकी पूरी टीम को। हमें समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा शेषाद्री जी।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
0: तो चलते चलते अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं एक बहुत ही प्यारा सा गाना।

0: इस गाने के साथ ही पोस्ट बॉक्स नंबर 111 की पूरी टीम को आप अनुमति दीजिए। कार्यक्रम संयोजक प्रमोद कुमार वत्स, कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान के साथ मैं नीलम मलकाने अब आपसे लेती हूं अनुमति। आप वेबसाइट देखिए, कुछ सीखिए और जो सीखा है हमें भी आप बता सकते हैं अपने ईमेल्स के माध्यम से, अपनी चिट्ठियों के माध्यम से। और हम विशेष आभार प्रकट करते हैं विविध भारती मुंबई की पूरी टीम का, उनकी मदद से ही हम ये कार्यक्रम तैयार कर पाए। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111।
2: जन जन की

12 बज चुके हैं, आइए एक नजर डालते हैं आकाशवाणी मुंबई द्वारा प्रस्तुत अब तक के प्रमुख समाचारों पर। भारत और जापान

वायुसेना का संयुक्त अभ्यास एक्सरसाइज वीर गाजियन 2026 आज जोधपुर के वायुसेना केंद्र पर प्रारंभ हुआ। दोनों दलों के प्रमुख इसमें शामिल हुए। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने सितंबर में अब तक भारतीय शेयरों से 20,974 करोड़ रुपए निकाले हैं। सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड के आंकड़ों के अनुसार सितंबर में हुई बिकवाली से पहले विदेशी निवेशकों ने जुलाई और अगस्त में भारतीय शेयरों में क्रमशः 20,200 करोड़ रुपए और 29,630 करोड़ रुपए का निवेश किया था। बात खेल जगत की। जापान के आइची नागोया में एशियाई खेलों में महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा में भारत ने रजत पदक अपने नाम किया। एलावेनिल वलारिविन, सोनम मस्कर और विदर्सा विनोद ने मिलकर पहला पदक जीता। भारतीय खिलाड़ी 1,898 अंक प्राप्त कर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर हैं। सीनियर पत्रकार पायल मेहता का आज सुबह मुंबई में निधन हो गया। वह 46 साल की थी। पत्रकारिता में 15 साल से ज्यादा का अनुभव रखने वाली मेहता ने टेलीविजन न्यूज और वायर सर्विस में काम किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने पायल मेहता के निधन पर शोक व्यक्त किया। ये थे अब तक के प्रमुख समाचार।

0: 12:01 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स विथ मी आरजे भावना। और आज की तारीख 20 सितंबर 2026 यानी आज है संडे। अब ये दिन ऐसा है जहां पर हमें खुशी होती है कि वीक डे खत्म हो गया, वीक एंड हो गया, इसलिए वीकेंड कहते हैं। पर यह भी होता है कि एंड है ये वीक का, बस नजरिए का फेरबदल है। किसी के लिए वीक एंड हो जाता है और किसी के लिए वीक एंड होकर वीक शुरू होने वाला है। फेरबदल तो चलता रहेगा, लेकिन इस फेरबदल में आज के संडे को हम जाया नहीं करेंगे। यानी आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं लेट संडे मॉर्निंग, क्योंकि अब क्या है, लोगों की सुबह तो 12 बजे ही होगी, संडे है, आराम से उठेंगे। और आज होंगे फ्रेश मॉर्निंग्स विद फ्रेश सॉन्ग्स। जी हाँ, 2026 के जितने भी बेहतरीन गाने हैं आपको सुनाने वाली हूँ मैं। और अगर हम कहते हैं ना, जब बात करते हैं कोई चीज़ की तो आवागमन होता है, और गणेश चतुर्थी चल ही रही है, और अंताक्षरी की भी शुरुआत, गानों की भी शुरुआत बिना इसके तो होती नहीं है। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे अंताक्षरी लेकर प्रभु का नाम। अब प्रभु की बात कर रहे हैं, गणपति बापा का त्यौहार है, और गणपति बापा के बापा यानी हमारे शिव जी, और उन्हीं की छवि हनुमान जी। इसी बात पर याद आया, हनुमान अंश मूवी जो है इसका बेहतरीन गाना आपने तो सुना ही होगा। तो चलिए आपको 3 गाने बैक टू बैक सुनाने वाली हूँ हनुमान अंश से। सबसे पहला गाना साधु तिवारी के आवाज में आवागमन।
1: हर हर महादेव।

0: गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमाकर्ता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

12:14 on the clock. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 Musically Yours with me RJ भावना and हमारे साथ हनुमान जी का नाम लेते हुए बाकी लोग भी जुड़ चुके हैं and we have प्रवीण बहाड़कर, प्रकाश शिंदे, राजेंद्र परमार, फिर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं. इनफैक्ट बुलडाणा इस्लामपुर महाराष्ट्र से सदैव दामोदर, शशिकला, सुमेद कुमार, साधना, पवन, अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, श्लोक दीपाली एंड वी ऑल्सो हैव 61424 दिग्दर्शन और कविता मेरठ से, प्रमोद चिंचोलकर, प्रणव शिंदे, संजय दर्शन जी, अमित भागत, दीपा पालकर, विजेंद्र घाटो लकोला से, पंकज महोड एंड विद दैट चलिए अब हनुमान अंश की बात अगर हो ही गई है तो इसी के साथ और फ्रेश लेटेस्ट हिट्स की बात करते हैं. हनुमान अंश

नाम तो आपको पता ही है कि अंश जो है डिसेंडेंट ऑफ हनुमान की बात होती है, और अगर इनके कास्ट की बात की जाए तो सबसे पहली कास्ट जो है शोभिना सत्या, जो कि लक्ष्मी नारायण शर्मा का रोल करता है, चंदन आनंद, निखिल दुबे, अनिल रस्तोगी, सुगंधा मल्होत्रा, नेहा परांजपे, पूर्णिमा तिवारी, उदय सिंह राजपूत, ये सारे कलाकार इस फिल्म के साथ जुड़े रहे और फिल्म काफी अच्छा प्रदर्शन कर भी रही है। एंड द नेक्स्ट सॉन्ग जो आपको मैं सुनाने वाली हूँ, दैट इज अगेन 2026 फिल्म, 2026 की मूवी, लेकिन ये है सीक्वल। अब ये सीक्वल है बॉर्डर 2 की, मतलब बॉर्डर की सीक्वल बॉर्डर 2, जिसमें हमारी कास्ट आपको पता है, मेधा राणा, अहान शेट्टी, सनी देओल, वरुण धवन, अन्या सिंह, दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा, मोना सिंह एंड ऑफ कोर्स सनी देओल, कैसे भूल सकते हैं। विद दैट, चलिए इसी फिल्म से आपको सुनाने वाली हूँ बेहतरीन दो गाने बैक टू बैक।

0: अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है, शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।
2: Attention, national recognition for your hard work, for those making outstanding contributions to the animal husbandry and dairy sector and embracing innovative practices. The Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India, invites nominations for the prestigious National Gopal Ratna Awards 2026. The awards recognize excellence in three categories: Best Dairy Farmer, Best Dairy Cooperative Society, Best Artificial Insemination Technician. And there is more. Special provisions have been made for the Northeastern region and Himalayan states. Nomination period 10th August to September 30th, 2026. So, what are you waiting for? Apply today at www.awards.gov.in or visit your nearest CSC center to submit your nomination. National Gopal Ratna Awards 2026. Issued in public interest by the Department of Animal Husbandry and Dairy, Government of India.
3: Akashvani FM Rainbow.
4: बारह बजकर 26 मिनट हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 MHz, म्यूजिकली योर्स विद मी आरजे भावना, जहां प्रोग्राम चल रहा है म्यूजिक कैफे। और इस कैफे में हम लेट आफ्टरनून में फ्रेश गाने सुन रहे हैं, ताज़ा ताज़ा गर्मा गर्म कप जो है चाय की कॉफ़ी की साथ में रख लीजिए, नाश्ता रख लीजिए साथ में, गाने बरकरार रहने वाले हैं। और नेक्स्ट गाना, जो अगला गाना आप सुनने वाले हैं, वो आप सुनेंगे आवाज आदित्य रिखारी की। लेकिन उससे पहले बता दूं, ठीक 12:30 पर आप सुनेंगे एशियन गेम्स के अपडेट। जी हाँ, 20th एडिशन एशियन गेम्स 2026 के अपडेट ठीक 12:30 और 12:35 पर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, यानी शुरुआत करेंगे अगले आवाज के साथ, मधुर शर्मा स्वरित सुखी अशोक मस्किन की आवाज में। दो गाने बैक टू बैक, इनफैक्ट तीन गाने विद द अपडेट। सो बने रहिए एंड कीप लिसनिंग एंड ग्रूविंग।

12:44 on the clock. आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM Rainbow 107.1 MHz Musically Yours with me RJ भावना. कैसे लग रहा है प्रोग्राम? रेखा भारद्वाज, उत्पल उदित की आवाज में आपने सुना ये गाना, बेहतरीन नगमे. और अगला गाना भी ऐसे ही बहुत ही प्यारा, मधुर और बहुत ही सुकून देने वाला होगा. IP सिंह श्रेया घोषाल की आवाज में सुबेदार मूवी से सुनाऊंगी आपको गाना. लेकिन उससे पहले कुछ आगे की बातें बताते हैं आपको. ठीक 1 बजे आप सुनेंगे दोपहर सी बात में, यानी समाचार मराठी में. लेकिन उसके उस पार होगा हमारा प्रोग्राम जो है हिट एंड हॉट. अब ये प्रोग्राम हिट भी है, हॉट भी है, लेकिन यहां पर होगी हॉट लाइन, यानी कि हमारे व्हाट्सएप मैसेजेस बंद होने वाले हैं. अब मुझे पता है यहां पर ये कहते ही आप लोगों का नहीं ये सब शुरू होगा, पर आज तो यही है क्योंकि मैं चाहती हूँ आपसे बातें करना. मैं चाहती हूँ वो रेडियो वापस लेकर आना जहाँ हम उस डब्बे के सामने बैठकर इंतजार करते रहते थे कि अब बस अब आएगा हमारा नाम, अब बजेगा हमारा गाना. नाम भले ही ना ले पर गाना जरूर बजेगा. वो बेसब्री, वो इंतजार, वो तड़प, और जब आपका नाम आ जाए तो वो खुशी, हाय हाय हाय, बस यही चाहती हूँ. तो आज के हिट एंड हॉट में हम करेंगे लकी ड्रॉ प्रोग्राम, यानी कि आपको कॉल लगाते रहना होगा. लक और ऑफ कोर्स मेहनत. स्टूडियो के नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ. 022 सबसे पहले कोड है और नंबर है 4515-4132. जी हाँ, ये सिर्फ एक नंबर, क्योंकि इंसान मैं एक ही हूँ. तो आप लोगों से बात करने की उम्मीद के साथ ये अगला गाना आपको सुनाती हूँ on FM Rainbow.

0: खास गणेश उत्सव के अवसर पर जय गणेश नई डिपॉजिट स्कीम।
1: ब्याज दर सामान्य जमा करता 7.25%, वरिष्ठ नागरिक 7.40%, जमा अवधि 444 दिन, मासिक और त्रैमासिक ब्याज विकल्पों के साथ।
0: ये योजना केवल 25 सितंबर 2026 तक ही उपलब्ध है। शर्तें लागू। कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक, जीवन बनाए समृद्ध।

12:50 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम रेनबो 107.1 मेगाहर्ट्ज़, म्यूजिकली योर्स, म्यूजिक कैफे प्रोग्राम चल रहा है। मैं हूं आरजे भावना आपके साथ और इंतजार है आपके फोन कॉल्स का, लेकिन 1 बजे के बाद, उसके पहले नो फोन कॉल्स और 1 बजे के बाद नो व्हाट्सएप मैसेजेस। तो आपकी जितनी भी शिकायतें होंगी, कंप्लेन्स होंगी, रूठना, मनाना, गुस्सा, वो सब आज के लिए साइड में।

0: रखते हैं, क्योंकि आज हम सिर्फ गाने एंजॉय करने वाले हैं अच्छे मूड के साथ। हंसते खेलते हम उन लोगों को सुनेंगे, उनकी रिक्वेस्ट सुनेंगे जो शिद्दत से बैक टू बैक कॉल करते हैं। और हाँ, बुरा मत मानिए अगर आपका नंबर नहीं आया, क्योंकि हमारे और भी प्रोग्राम्स हैं, रिक्वेस्ट आ रहे हैं। वेल, ये बातें तो और होती रहेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको सुनाने वाली हूँ और बेहतरीन नगमे। गाने जो हैं अब थोड़े चटपटे होने वाले हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम भी ऐसे ही चटपटा होगा आगे चलकर। सो ये आपने जो सखी वाला गाना सुना है श्रेया घोषाल की आवाज में, आईपी सिंह की आवाज में, फ्रॉम सुबेदार, उसी फिल्म से एक और गाना जीडी कौर की आवाज में, जो आपको आई एम श्योर बहुत मजा आने वाला है, और ये कहीं आपने सुना भी होगा। और उसके बाद नेक्स्ट इज संजू राठौड़ की आवाज में, जी हाँ, ये धमाल 4 का गाना है। सो कीप ट्यून्ड इन, बैक टू बैक मजेदार गाने आने वाले हैं ओनली ऑन एफएम रेनबो।
1: उठा उठा

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: 1:05 हो रहे हैं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स, और हमारा प्रोग्राम हिट एंड हॉट शुरू हो चुका है और आप सभी के रिक्वेस्ट जो है व्हाट्सएप पे शुरू हो चुके होंगे, लेकिन हम उसे आज नजरअंदाज करने वाले हैं। जी हाँ, हमारी

आंखें बिल्कुल गांधारी जैसी बंद है, सिर्फ हम अपने कान का इस्तेमाल करने वाले हैं। कानों से हम आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। आपने अब तक हमें सुना है, हम आरजे इसको, लेकिन आज ये आरजे चाहती है कि हम अपने ऑडियंस को सुने, हमारे लिसनर्स को सुने। तो आप मुझे कॉल कीजिए, 022 ये कोड है, उसके बाद 4515 4132। अगर मिस कर दिया, चलिए फिर से कहते हैं, 4515 4132 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है, आपको इस पर कॉल करना है। जी हाँ, आपके गाने होंगे प्ले ओनली तब जब आपका कॉल लगेगा हमारे पास। जी हाँ, हम रिवाइंड करने वाले हैं बिल्कुल इस रेडियो को, बिल्कुल उस दौर में जहां आप घंटों फोन के पास पड़े रहते थे इस उम्मीद में कि अब हमारा नंबर आएगा। ये इसलिए नहीं है कि मैं आपके पेशेंस की टेस्ट करना चाहती हूँ, ये इसलिए है कि जब आपका नाम रेडियो पर आता था कड़ी मेहनत के बाद, लंबे इंतजार के बाद, तो जो इंतजार का मजा होता है ना, वो खुशी, बस वो मैं चाहती हूँ कि आप महसूस कीजिए। हम इतना आगे बढ़ चुके हैं, इतने डेवलप हो चुके हैं कि एहसास जो है, महसूस करना, खुशी को महसूस करना, वो भूल चुके हैं। तो चलिए, लेट्स ब्रिंग द एक्साइटमेंट बैक ऑफ रेडियो बाय कॉलिंग इन। तो आज सिर्फ कॉल्स होंगे। इसी के साथ आपको सबसे पहले सुनाने वाली हूँ एक बेहतरीन गाना। अब ये गाने की रिक्वेस्ट हमसे की है संजय दर्शन जी ने। ये कहते हैं कि हमें कसम मूवी से, कसम के नाम से कोई भी गाना सुना दीजिए। अब मैंने पूछा, कसम आखिर ये नाम से आपको क्या गाना सुनना है? तो वो कहते हैं कि मैं अक्सर ना एक शब्द के साथ गाने सुन लेता हूँ। तो मैंने कहा, यार ये तो सही है, मतलब आप फिर तो अंताक्षरी में आपसे कोई नहीं जीत सकता, क्यों? वेल, इनकी रिक्वेस्ट पर आई एम गोइंग टू प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग कसम से। अब ये गाना कौन सा होगा, ये आप लोगों के लिए और उनके लिए, दोनों के लिए सरप्राइज होने वाला है। विद दैट, मोहम्मद रफी की आवाज में अगला गाना।

देखो कसम से, देखो कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ, देखो कसम से, कसम से, कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे।

देखो कसम से कह रही हूँ, आप लोगों के जो कॉल्स बैक टू बैक आ रहे हैं, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मैं सच कह रही हूँ मैं व्हाट्सएप आज नहीं देखने वाली, क्योंकि मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है लिसनर्स से। लेकिन यकीन मानिए, मैं जो एक्सपीरियंस करवाना चाहती हूँ आपको, ये आपको जब कॉल लग जाएगी ना तब आपको पता चलेगा। इंतज़ार में जो मज़ा है वो शायद चीज़ें पाने में नहीं। बरसों से आपने जिस चीज़ की ख्वाहिश की हो, उसके पीछे भाग दौड़ मेहनत की हो, वो चीज़ बस यूं ही अगर मिल जाए तो उस वक्त आपको ना वो शायद खुशी इतनी पता ना चले। लेकिन अगर वो बहुत लंबे वक्त तक आपने बहुत मेहनत की हो, तब आपको उसकी कीमत ज़्यादा होती है। तब कोई अगर हाथ भी लगा दे उस चीज़ पर तो आपको ऐसे मिचमिची से लगने लग जाती है। लेकिन वही दुकान पर जाकर तुरंत आपने जो चीज़ चाहिए वो खरीद ली, तो शायद आपको लगेगा कोई बात नहीं, अगले बार दूसरी बार दूसरी चीज़ खरीद लेंगे, कोई बात नहीं। तो इंतज़ार जनाब मीठा है। वेल, इसी के साथ मैं आपको बता दूं, हमारे पास वैसे मैसेजेस तो मैं देख नहीं रही हूं, लेकिन एक बहुत ही प्यारी सी डीपी मेरे आंखों के सामने आई, तो मैंने सोचा चलिए मेंशन करती हूँ। गुरमीत सिंह, मीता सिंह, साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से, इनके प्रोफाइल पिक्चर में आई गेस ये इनकी माता जी के साथ हैं। बड़े ही खूबसूरत प्रोफाइल पिक्चर है आपकी, लेट मी टेल यू। विद दैट हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़े हैं, आप सभी के नाम मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन जाने से पहले तब तक हमारी कॉल्स जो है वो आती रहनी चाहिए, क्योंकि आपकी बारी कभी भी आ सकती है, यकीन मानिए। लेकिन उसके लिए आपको शिद्दत से, मेहनत से, लगातार कोशिश करनी होगी और ईमानदारी से, बिना रूठे, बिना गुस्सा किए। वेल, हमारे जो दूसरे लकी लिसनर हैं वो हैं दीपा पालकर जी माहिम से, और उनकी रिक्वेस्ट है श्रेय घोषाल की आवाज़ में जिस्म फिल्म से गाना, क्योंकि महेश भट्ट जी का हैप्पी बर्थडे है और उन्हीं के याद में, उन्हीं को सेलिब्रेट करते हुए ये गाना सुनना चाहती है वो। और इसके बाद अगला गाना किसका होगा, वेल वो तो कॉल उठाने के बाद ही पता चलेगा। सो बने रहिए और लगे रहिए, कॉल लगाते रहिए।

117 ऑन द क्लॉक, 1:17 हो रहे हैं. आप सभी के बैक टू बैक कॉल्स ऑफ कोर्स आ रहे होंगे, मुझे पता है आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, पर हम क्रोनोलॉजिकली जा रहे हैं, यानी कि हम कतार में रहकर जाएंगे. अक्सर ऐसा होता है कि मैंने कई बार देखा है क्यू अप लिखा होता है कि आप कतार में खड़े रहिए, पर हम फिर भी कतार के उस पार खड़े रहते हैं. तो याद रखिएगा, कतार में रहने से चीजें आपको भी सही मिलेंगी, सामने वाले को भी सही मिलेंगी. इसी के साथ हमारे कतार में तीसरे नंबर पर है राजेंद्र शर्मा पनवेल से. अब ये जो नाम है मैंने बहुत पहली बार ऐसे सुना, तो मैंने कहा जनाब आप हमें मैसेज करते हैं, क्योंकि आपका नाम तो पहली बार सुन रही हूँ. मतलब माना मेरी याददाश्त थोड़ी ऐसे भुलक्कड़ है, पर नाम मुझे लिसनर्स के पता होते हैं. तो ये कहते हैं हमें ये 2008 से सुन रहे हैं पर कभी मैसेज नहीं किया. बोला चलो अच्छी बात है, इस कॉल के बहाने मुझे आपकी आवाज़ सुनने मिलती है, आपका नाम पता चलता है, आप कहाँ से हमें बात करते हैं, हमसे कहाँ से सुनते हैं. और वैसे राजेंद्र शर्मा जी हमें पनवेल से सुन रहे हैं, और इनकी रिक्वेस्ट जो है अगला गाना अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में सड़क फिल्म से. और इसी के साथ आपकी अगली रिक्वेस्ट किसकी होगी वो तो अब कॉल उठाने पर ही पता चलेगा. सो हाँ, कॉल लगाते रहिए और ये गाने सुनते रहिए. बाय द वे मैं आपको बता दूं, जब तक आप कोशिश कर रहे हैं इस इंतजार में, घंटी बज रही है जब तक, तब तक आप गाने भी सुनिए, वरना आप ना गाने सुन रहे हैं ना कॉल लग रहा है कि नहीं. इस इंतजार का भी मजा लीजिए.

काफ़ी शिकायतों के बाद, काफ़ी समझाने के बाद और आपके कॉल्स लगने के बाद, अब आपको बताते हैं कि अगला गाना कौन सा होने वाला है। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं, उससे पहले ठीक 1:30 पर आप फिर सुनने वाले हैं अपडेट्स 20th एडिशन एशियन गेम्स की 2026 की। तो खेल जगत से आपको डायरेक्टली वहां से आपको न्यूज़ मिलने वाली है। बस ज़्यादा नहीं, 5 मिनट की न्यूज़ होगी और उसके बाद फिर से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। उससे पहले आपको अगले गाने की रिक्वेस्ट बताते हैं। पंकज माहौर जी की रिक्वेस्ट अमरावती से उन्होंने की है, फ्रॉम द मूवी जुनून। और जुनून तो आप लोगों का भी मुझे देखना है, मानती हूँ बहुत मेहनत लगती है और आई अप्रिशिएट इट, यकीन मानिए। लेकिन आप जितना तड़प रहे हैं मुझसे बात करने के लिए या फिर शायद अपना गाना प्ले करवाने के लिए, उतनी ही बेसब्री से मैं भी आप लोग के कॉल उठाने के लिए बेताब हूँ। तो पर इसमें एक ये बात होती है कि अगर मैं सबसे बात करने लग गई तो सबके गाने प्ले नहीं होंगे। तो हर एक गाने के बाद मैं एक कॉलर सिलेक्ट करती हूँ, यानी मैं फ़ोन रिसीव करती हूँ। सो अब जब ये गाना होगा प्ले, तब मैं जाऊँगी अपने श्रीमती फ़ोन के तरफ। अब श्रीमती जी किनका नंबर हमें देती हैं वो तो गाने के बाद पता चलेगा। वेल, अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में अगला गीत, पंकज माहौर की रिक्वेस्ट, और उसके बाद आखिर किसकी होगी अगली फरमाइश, सुनेंगे आफ्टर दिस सॉन्ग।

0: contest, Ella Vanil, Valari Van once again clinched another silver medal. So these two medals are confirmed, plus another one in MMA is confirmed. Another one is coming in cricket. So it has been indeed a day of dominance.
1: जहाँ dominance की बात हो रही है वहाँ पर हम बात करेंगे यहाँ पर hockey की, जहाँ शुरुआत हुई है धमाके के साथ. जी हाँ, भारतीय महिला खिलाड़ियों ने उज्बेकिस्तान को एक तरफा मुकाबले में 19-0 से करारी शिकस्त दे दी. दूसरी तरफ पुरुषों ने भी इंडोनेशिया को पूरी तरह बैकफुट पर रखते हुए मैच 13-1 से अपने नाम करके जीत के साथ एक शानदार आगाज किया. मैच में अच्छी बात ये रही कि पूरी ही टीम का योगदान देखने को मिला, जहां 8 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल दागे. दिलप्रीत सिंह ने सबसे ज्यादा 4 गोल किए.
0: So they have kicked off their campaign on the winning note, as was expected. Remember, India wants a gold medal in the Asian Games in hockey, not only because that gold medal holds a lot of pride, but also because it can be a ticket to the LA Olympics. If you win a gold medal here, you qualify directly for the 2028 Olympics. Back to cricket then. India versus Bangladesh, the semi-final match has just come to an end and India were dominant. They batted first, scored 195 for 4, in which the superstar was Shaif Ali Varma. The swashbuckling opener scored 100 not out of 49 balls, her first T20 international century, and along with that she broke a few records. She scored more than 100 sixes now in T20 international cricket, and the same record was also broken by Smriti Mandhana at the other end, who scored 37 of 19 balls. And with that, Smriti Mandhana is now the all-time leading run getter in women's T20Is. So India scored 195 and they bundled out Bangladesh for 81. A silver medal is all but confirmed. However, India will be playing for gold in the final against Sri Lanka.
1: जी हाँ, बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि दिन जो है वो महिलाओं की शानदार परफॉर्मेंस के साथ जारी है. जी हाँ, बैडमिंटन कोर्ट पर भी दबदबा लगातार महिलाओं की टीम का यहाँ पर देखने को मिल रहा है. विमेन्स टीम के पहले मुकाबले में भारत ने 3-0 से जीत हासिल करके अपने आप को टीम इवेंट में यहाँ पर जीत के साथ एक स्टार्ट दे दिया है. मैं आपको बता दूं कि इस टीम इवेंट में 5 मैच खेले जाते हैं, जिनमें से 3 में जीत अर्जित करनी होती है. मुकाबला जीतने के लिए भारत को पीवी सिंधु ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलवाई. मैच में दबदबा दिखाते हुए यहां पर दोनों ही उनके युवा शटलर उन्नति हुड्डा और तन्वी शर्मा ने भी अपना अपना मुकाबला जीत ही लिया. इसी के साथ ये टीम यहां पर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, अब जहां टीम के सामने होगा Japan.
0: Right, into the quarterfinals. The same rules are followed in table tennis as well in the team event, where in every tie or every fixture, 5 matches are played. And the Indian women's team started off on a winning note earlier this morning by defeating Indonesia 3-0. The men's team repeated that and they also defeated Indonesia by 3-0. However, now the women's team is playing its second tie, where Singapore is giving them a little bit of a run for their money. And despite that, Team India is still in the lead. Yashaswini Ghorpade has won her first match, and currently Srija Akula is in a tussle with Ming Loy of Singapore. Currently, the match is tied at 2-2. We are going into the next set. So it will be a fascinating watch in table tennis.
1: कहानी खत्म नहीं होती है. अब से थोड़ी देर बाद तैराकी में हमारे पुरुषों की बैकस्ट्रोक स्पर्धा में भारतीय तैराक ऋषभ दास फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे. सो लेट्स होप फॉर इंडिया.
0: Right, so we will hope that another medal is confirmed in swimming. We will be back with another update at 2:30 PM and hopefully we will have the news of another medal.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

1:35 ऑन द क्लॉक, 1:35 और हमारा प्रोग्राम हिट एंड हॉट शुरू हो चला है वापस। तो आ गए हम लेकिन जाने के लिए, क्योंकि ठीक 2 बजे मेरे जाने का वक्त हो जाएगा और आपके कॉल्स जो हैं वो थम जाएंगे, लेकिन उम्मीद बरकरार रखिएगा। ऑल्सो लेट मी टेल यू, मैं अब से जब कभी आऊंगी तब कॉल्स तो होंगी जरूर, व्हाट्सएप होगा बंद हर रिक्वेस्ट आर में। सो अगर आप अभी अभी जुड़े हमारे साथ तो मैं आपको बता दूं, हमारा

ये है हिट एंड हॉट रिक्वेस्ट आर, जहां पर आप लोगों की फरमाइशें प्ले की जाती हैं, लेकिन ये फरमाइशें आप व्हाट्सएप पे नहीं बल्कि हमें कॉल करके अपनी आवाज में सुनाएंगे यानी बताएंगे। तो आप कैसे बताएंगे? नंबर्स मैं बताती हूँ, ये आप अपने फ़ोन की डायरी में सेव कर लीजिए कि जब कभी आरजे भावना आएगी तो ये कॉल तो लगाना ही है। हाय हेलो थोड़ा कह दो। नंबर है हमारा 4515 4132, कितना सिंपल है ना, 4515 4132। इसके पहले 022 हमारा कोड है। और चलिए इस सफ़र को शुरू करते हैं। कुछ लोग शायद सफ़र कर रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों के सफ़र को अंजाम ज़रूर पहुंचाएंगे हम श्रीमती फ़ोन के साथ। ये अगला गाना आपको सबसे पहले सुनाने वाली किशोर कुमार की आवाज़ में, जो हमसे रिक्वेस्ट की है अजय साखरे जी ने इंदौर से, और ये हमारे हैं पांचवे लिसनर। तो ऑफकोर्स आपके सिक्स्थ लिसनर अब कौन होने वाले हैं ये तो कॉल उठाने के बाद पता चलेगा। टिल देन ये अगला गाना किशोर कुमार की आवाज़ में।

खुश हो जाओ, क्योंकि जो आता है वो जाता है। ठीक 2 बजे मेरे भी जाने का वक्त हो जाएगा, और मैंने जैसे कि कहा मैं आपके व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं पढ़ने वाली, जी बिल्कुल भी नहीं। पर एक कुछ ऐसे मैसेजेस नोटिफिकेशंस आते हैं ना कि आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, वो भी एक चीज़ है। अब जैसे प्रणव शिंदे जी लिखते हैं कि मैंने आपको बहुत बार कॉल किया, मैं अब आपको खत लिख रहा हूँ, तो

हेर फेर, वो लेटर है, लेटर है। तो बस इसी बात पर जो मुस्कान आई है ना, कमाल करते हैं शिंदे साहब। वेल विद दैट, एक और तरीका ये भी है कि मैं, द रीज़न मैं आपके व्हाट्सएप मैसेजेस नहीं पढ़ रही हूँ कि आपको पता है ना कि आप लोग कितने कितने क्यूट लिसनर्स हैं मेरे, और इतने ही भोले भी हैं, तो आपको नाराज़ करना मुझे पसंद नहीं। लेकिन ये थोड़ा नया हम ट्राई कर रहे हैं रेसिपी, इसमें आपका साथ तो चाहिए मुझे, तो कोशिश कीजिए, हम दोबारा मिलेंगे ज़रूर कॉल के ज़रिए। वेल, इसके अलावा आपको और एक अच्छी खबर देती हूँ मैं, आपके साथ आपके और एक पार्टनर जुड़ चुके हैं जो आपको शायद पता नहीं होगा, आपके म्यूजिक लवर फैमिली में हरीश सिंह जी बॉम्बे सांताक्रूज से हमें कॉल कर रहे थे। अब ये भी बिल्कुल राजेंद्र शर्मा जी की तरह हमें सुनते हैं पर मैसेज नहीं करते, तो चलिए इस कॉल के बहाने मुझे पता चल गया कि हमारे एक और लिसनर है जो हमें सांताक्रूज से सुनते हैं, और ये कभी कभी, यानी कि सिर्फ आज उनका कॉल आया है, पर ये कभी कभी सुनना चाहते हैं गाना फ्रॉम द फिल्म कभी कभी, मुकेश की आवाज़ में।

148 ऑन द क्लॉक. मैं हूँ आरजे भावना. मैं अक्सर भूल जाती हूँ बताने के लिए कि मेरा नाम है आरजे भावना और आप मुझे सुन रहे हैं ओनली ऑन एफएम रेनबो 107.1 पर, जो आपने ट्यून इन किया है इस वक्त. और हमारा प्रोग्राम चल रहा है हिट एंड हॉट, जहाँ पर होती है आप लोगों की रिक्वेस्ट. पर ये रिक्वेस्ट थोड़ी हटके है. यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर नहीं बल्कि कॉल करना है मुझे, बिल्कुल पुराने दौर, पुराने दिनों की तरह, जहाँ पर हम बेसब्री से इंतज़ार करते थे कि अब हमारा नाम रेडियो पर आएगा. वेल, आप लोगों की रिक्वेस्ट बहुत सारी आई है, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया है. एंड थैंक यू सो मच, आप लोगों ने अपना वक्त, इतना कीमती वक्त मुझे दिया. और हमने टोटल 7 लोगों की रिक्वेस्ट पूरी की है. यकीन मानिए, मैं आपके नाम, नंबर, हर एक चीज़, नंबर एज इन सीरियल नंबर, कि 1, 2, 3, 4, 7 लोगों ने हमसे बात की है. और अब हमें सिलेक्ट करना है, यानी हमारी श्रीमती फोन जी हमसे बताएंगी कि आखिर हमारे लास्ट रिक्वेस्ट के लिसनर्स कौन हैं, क्योंकि हमें नंबर तो दिखाई नहीं देंगे. सो ऑफकोर्स ये तो हो नहीं सकता कि मैं आप लोगों को पर्सनली बहुत ही फेवरेटिज्म करके आपको चुन रही हूँ. तो अब ये लक फैक्टर जो है ना, कि आखिरी लिसनर कौन होगा, किसकी होगी लास्ट रिक्वेस्ट, ये होने वाली है मजेदार बात. वेल विद दैट, चलिए आपको अगला गाना सुना रही हूँ कुमार सानू की आवाज में. ये रिक्वेस्ट आई है गोपाल सपकल जी की, नंदूरा से हमें सुन रहे हैं. और आपको पता है सबसे बेस्ट बात यह है कि कॉल के जरिए जो लोग शायद व्हाट्सअप नहीं करना चाहते या कर पाते, और जो हमें नए नए लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, मुझे ये नए लिसनर्स से मिलकर ना बड़ा मजा आ रहा है. क्योंकि शायद हम व्हाट्सएप पे आपको ना जानते हो, लेकिन इस कॉल के जरिए मुझे कई ऐसे नाम मिल रहे हैं जो अब मेरे मेमोरी में फिट बैठ चुके हैं. तो चलिए इनके रिक्वेस्ट सुनते हैं और उसके बाद चुनते हैं हमारा लकी लास्ट लिसनर, जिसकी रिक्वेस्ट होगी पूरी ऑन हिट एंड हॉट 150 ऑन द क्लॉक. और अगला गाना कुमार सानू की आवाज में फ्रॉम द फिल्म आरजू.

0: विद दैट हमको लेना पड़ेगा थोड़ा सा छोटा सा ब्रेक, क्योंकि 8 मिनट का गाना अगर मैं प्ले करने वाली हूँ तो आप लोगों के साथ जो हम बात कर रहे हैं वो होगी खत्म, क्योंकि ठीक 2 बजे मेरे जाने का वक्त। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हमारे साथ सिर्फ फोन कॉल्स पर नहीं बल्कि हमारे साथ व्हाट्सएप पर भी जुड़े हैं उनका फाइनली हम शुक्रिया अदा करना जरूर पसंद करेंगे। और फोन लाइंस बंद हो चुकी हैं तो आप कोशिश मत कीजिएगा, लेकिन हाँ उम्मीद भी मत छोड़िएगा, बिकॉज अगली बार जब मैं आऊंगी तब फिर से ये फोन जो है श्रीमती जी शुरू हो जाएंगी और हमारी बातें भी। विद दैट हमारे साथ ठीक 11 बजे से काफी लोग जुड़े हुए हैं, श्रेया राउत, मिलेश गजानन राउत, श्रेया मिलेश, आर्या मिलेश टिघरेपाड़ा से, राम प्रजापति वसई से, राजेंद्र परमार जी हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर, अमित भागत हमारे साथ, और भी जुड़े हैं लोग विच इज शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, मोहाली चंडीगढ़ से हमें सुन रहे हैं, टी डी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, दिग्दर्शन और कविता हमारे बहुत ही पुराने लिसनर्स, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, मेरठ कैंट से हमें सुनते हैं और कभी कोई शिकायत नहीं, बड़े ही सुप्रेम भाव से हमें सुनते हैं, बड़े ही प्यारे लोग हैं। और हमें सुन रहे हैं वडिंग खेड़ा पंजाब से, मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा, गुरमीत सिंह, मीता सिंह साउथ एक्सटेंशन नई दिल्ली से, चेतन कुमार बिहार से हमें सुन रहे हैं, गाया बिहार से, दी क्रेस्टो जॉन हमें सुन रहे हैं जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिक्रेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, विलिस डिकेस्ट्रो हमें, और भी लोग जुड़े हैं हमारे साथ, हमारे लिसनर्स हैं रेगुलर लिसनर्स, फिरोज सिगनपोरिया जी, शुभलक्ष्मी मस्तकर जी, प्रमोद चिंचोलकर जी, एंड वी ऑल्सो हैव नथाना गांव पंजाब से, हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, क्या नाम है वाह, संजय दर्शन जी, अजय साखरे इंदौर से, दीपा पालकर, गोपाल सबका लंदूरा से, मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बालवीर सिंह, मुरादाबाद, दुल्हापुर से, उत्तर प्रदेश। इनका नाम पढ़ने में मजा आता है, जैसे लगता है मैं ना राइम और पोयम पढ़ रही हूँ। एंड हमारे साथ जुड़े हैं पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा, भूमिका अरोड़ा, विजेंद्र घाटोल अकोला से, जिनकी रिक्वेस्ट अभी फाइनली हुई है पूरी, काफी लंबे मैसेजेस मेरे पास आ चुके हैं और फाइनली विजेंद्र जी, कहा था ना आपसे इंतजार के बाद जब कॉल लगता है तो खुशी होती है या नहीं, वेल इनकी खुशी रंग लाई क्योंकि हमारे जो लास्ट लकी लिसनर है वो है विजेंद्र घाटोल जी, जी हाँ, और उनका गाना होगा अगला प्ले। विद दैट वी हैव आवर लिसनर्स अभिजीत गवहानकर, श्रीमती सरिता गवहानकर, प्रणीता सिद्धांत गवहानकर, प्रिंस एकांश गवहानकर, लाडला टुकटुक गवहानकर, पंकज माहौर, यशवंत आठमुड़े जी, श्रद्धा मंत्री, लालगिरी गोस्वामी हमें सुन रहे हैं, गोपे झारखंड से हमें सुन रहे हैं, एंड प्रणव शिंदे, एंड वी ऑल्सो हैव लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित, खुशी गोस्वामी, राघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, मुकेश वालिया देहरादून से भी हैं, जी हाँ आपके मैसेज आ गए हैं, क्या सही टाइम पर मैसेज किया है, मैं बस साइन ऑफ करने ही वाली थी। वेल विद दैट अगला गाना आप सुनेंगे कुमार सानू की आवाज में नहीं, अजय देवगन, पूर्णिमा जी, एंड दिस इज फ्रॉम द फिल्म दिल जले। सो विद दैट मैं आरजे भावना लेती हूँ इजाजत, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, ऐसे ही आपकी फरमाइशें होंगी पूरी ऑन कॉल्स, एंड मिलते रहेंगे ओनली ऑन एफएम रेनबो, म्यूजिकली योर्स।
1: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
2: नाम मेरा शबनम है पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
3: दिल जले, दिल जले, और लाले यहां तो सभी दिल जले हैं।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

0: International 100 and becomes the first batter to score a century in the Asian Games. India will next face Sri Lanka in the gold medal clash on Tuesday. In mixed martial arts, India's Suchika Tarial today created history as she became the country's first athlete to secure an Asian Games bronze medal after reaching the women's traditional 60kg semi-finals at the Games. Suchika delivered a composed performance against Mongolia's Elten Chimeg Baigalma. With this win, Suchika advanced to the semi-final and confirmed India's first medal in martial arts. In hockey, the Indian women's team began the Asian Games campaign with a dominant 19-0 win over Uzbekistan in the Pool B opener at the Gifu Prefectural Green Stadium today. Deepika Sherawat was the star of the match as she scored 8 goals. Ishika Chaudhary scored 3 while Lalthan Luangi and Neha each bagged 2. India will next take on Indonesia tomorrow. In swimming, Indian swimmer Rishabh Das has qualified for the final of the men's 100-meter breaststroke after finishing 5th overall in the heats with a time of 54.85 seconds at the Asian Games. China's Shi Jiao topped the heats while Japan's Hidekalu Takehira finished 2nd. Union Sports Minister Mansukh Mandavia today joined members of the Indian diaspora in Japan for a special Sundays on Cycle event organized to cheer for the Indian contingent. In a statement, Mr. Mandavia praised the Indian diaspora in Japan for supporting the country's athletes. The Indian Meteorological Department has forecast heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Mahe, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal and Telangana during the day. Madhya Maharashtra, Odisha, East Rajasthan, Gangetic West Bengal, Jharkhand, Konkan, Goa, Madhya Pradesh, Marathwada, Telangana, Vidarbha are expected to experience thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address valedictory session of the International Conference on the Future of Environment and Climate Dynamics in New Delhi this evening. Rashtriya Sankalp Samaroh will organize at various locations across the country to eradicate drug abuse among youth. Tensions escalate in West Asia's Houthis launch missile and drone attacks in Saudi Arabia. Indian shooters shine at Asian Games with 2 silver medals in Nagoya, Japan. India storms into the finals of Asian Games women's cricket after defeating Bangladesh in Nissin, Japan. Shefali Verma becomes first batter to score century. Smriti Mandhana becomes highest run scorer in the Women's T20 International. An IMD forecasts heavy rainfall over Andaman and Nicobar Islands, coastal Andhra Pradesh, Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Puducherry and Telangana today. And with that, we end the midday news.
1: दोनों वायु सेनाओं के बीच
2: नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौसी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। भारत महिला क्रिकेट के फाइनल में शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया है। एक रिपोर्ट।
3: पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़े भविष्य के विषय पर आयोजित सम्मेलन ने अलग अलग देशों और क्षेत्रों में न्यायपालिका के काम करने के तरीकों, वैज्ञानिक जानकारी, पर्यावरण से जुड़े प्रशासनिक अनुभवों और संस्थागत कार्य प्रणाली को साझा करने का मंच प्रदान किया। इस सम्मेलन में पर्यावरण विशेषज्ञों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, जिला न्यायालयों के न्यायाधीशों, विभिन्न मंत्रालयों के सचिवों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और अन्य संबंधित लोगों ने भाग लिया। 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी सम्मेलन में शामिल हुए। सम्मेलन में पर्यावरण जलवायु से जुड़ी महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की गई। इनमें नीतियां बनाने, उन्हें लागू करने

0: उनका पालन सुनिश्चित करने में आने वाली कमियों पर भी विचार किया गया। साथ ही पर्यावरण संरक्षण को बेहतर बनाने और विभिन्न संस्थानों के बीच सहयोग मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की गई। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। जल शक्ति मंत्रालय ने बताया कि इस अंतर्राष्ट्रीय आयोजन में नीदरलैंड्स और जर्मनी साझेदार देश के रूप में शामिल होंगे। 14 राज्य इसमें भाग लेंगे, जबकि 6 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भी आमंत्रित किया गया है। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। इसमें टिकाऊ और जलवायु अनुकूलन जल प्रबंधन से जुड़ी नवीन तकनीकों, उत्पादों और समाधानों को प्रदर्शित किया जाएगा। इस दौरान 22 से 24 सितंबर तक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन भी होगा। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देशभर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन किया जा रहा है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अनुसार 1067 स्थानों पर ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। विकसित भारत के लिए 100 सप्ताह के नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत देश भर के युवा शामिल हो रहे हैं। समारोह में नशा मुक्ति शपथ, हस्ताक्षर अभियान, नुक्कड़ नाटक, नारा लेखन और चर्चाओं के जरिए अभियान का संदेश सीधे युवाओं तक पहुंचाया जा रहा है। नशा मुक्त पंजाब यात्रा के तीसरे चरण का शुभारंभ आज विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने फजिलका के सादिकी सीमावर्ती क्षेत्र से किया। उन्होंने राज्य भाजपा अध्यक्ष केवल सिंह ढिल्लों और अन्य पार्टी नेताओं के साथ आसफ वाला युद्ध स्मारक पर 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस यात्रा को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए।
2: ये पंजाब की भावी पीढ़ी को बचाने का कार्यक्रम है। जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कई कार्यक्रम हाथ में लिए, एक पेड़ माँ के नाम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये समाज सुधार से जुड़े हुए कार्यक्रम है। पंजाब को हम विकसित पंजाब बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो बड़ा उद्देश्य है भारत को विकसित भारत बनाना, उसमें सभी राज्यों में विकास तेजी से हो, ये भी हमारा एक उद्देश्य है।
1: श्री मेघवाल ने नशा प्रभावित परिवारों के सदस्यों से भी मुलाकात की और उनके दुख में भागीदार हुए। इससे पहले शुक्रवार को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पठानकोट के सीमावर्ती जिले से यात्रा का शुभारंभ किया था। यह यात्रा पंजाब की 3 प्रमुख चुनौतियों, बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या, बिगड़ती कानून व्यवस्था और शासन के हर स्तर पर भ्रष्टाचार पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य राज्य के सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों को शामिल करना है, ताकि नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई को एक जन आंदोलन में बदला जा सके। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत तेलंगाना में कई विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन इस अभियान में भाग ले रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस पहल के अंतर्गत आज हैदराबाद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया।
3: देशव्यापी अभियान के तहत आज हैदराबाद के नेकलेस रोड पर नशा मुक्त भारत साइकिल रैली आयोजित की गई। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर के लक्ष्मण ने इस रैली में हिस्सा लिया और नेकलेस रोड पर युवाओं और साइकिल चालकों के साथ साइकिल चलाई। युवाओं पर नशीले पदार्थों के गंभीर असर का उल्लेख करते हुए उन्होंने प्रतिभागियों को नशा न करने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सांसद के लक्ष्मण ने कहा कि स्वस्थ युवा ही एक मजबूत और विकसित भारत के निर्माण का आधार है। उन्होंने सभी से इस अभियान में शामिल होने की अपील की। हैदराबाद से गोपागोनी सप्तगिरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जन सेवा से देश सेवा के मंत्र और निरंतर प्रतिबद्धता से परिभाषित सार्वजनिक सेवा के 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण से प्रेरित होकर सरकार 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में निरंतर काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के माध्यम से ये समर्पण लोगों के जीवन को बदल रहा है। इस अवसर पर हम सेवा संकल्प अभियान की विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहे हैं। आज प्रस्तुत है बिहार के किसानों के लिए नीम कोटेड यूरिया के लाभ पर हमारी विशेष श्रृंखला।
4: बिहार में इम्पोर्टेड नीम कोटेड यूरिया की शुरुआत दिसंबर 2015 से की गई। कृषि विभाग के आंकड़ों के अनुसार इसके इस्तेमाल से राज्य में अरहर और सोयाबीन सहित दलहन फसलों की वृद्धि में 15% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जबकि अन्य फसलों में करीब 10% की वृद्धि हुई है। किसानों में जागरूकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार विभिन्न प्रदर्शन और विस्तार कार्यक्रमों के माध्यम से नीम कोटेड यूरिया को बढ़ावा दे रही है। पैक्स और अन्य खुदरा विक्रेताओं के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। कृषि कर्मी अधिकारी और कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक भी किसानों को इसके उपयोग और लाभों की जानकारी दे रहे हैं।
5: हम लोग राज्य सरकार के स्तर पर प्रत्येक

0: डेमोन्स्ट्रेशन में जो भी हमारे किसानों के मध्य यदि हम फील्ड में किसी उपज के प्रदर्शन करते हैं या केविके के माध्यम से कोई काम कर रहे होते हैं तो आम किसानों के बीच इसकी पहुंच अधिकाधिक सुलभ हो उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हम लोगों ने यह तय किया है कि जितने भी हमारे डेमोन्स्ट्रेशन चाहे वो खाद्य बीज की योजना राज्य सरकार के स्तर पर किसानों के बीच जाएगी उसमें हम नीम कोटेड यूरिया को प्रधानता देते हैं। हमारे राज्य सरकार के जितने भी किसान हैं उन तक इसकी सुलभता हो सके तो पैक्स एवं अन्य रिटेलर के माध्यम से एक निर्धारित मात्रा इसकी उपलब्ध रहती है।
1: कृषि विभाग के अनुसार किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग के तहत नीम कोटेड यूरिया के साथ अन्य उर्वरकों और जैविक खादों के इस्तेमाल के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उत्पादकता और किसानों की आय में वृद्धि हो सके। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निधि श्री।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सब्सिडी वाले रसोई गैस की बुकिंग के लिए 1 अक्टूबर से आधार से संबद्ध बायोमेट्रिक प्रमाणन जरूरी होगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि इसका उद्देश्य पात्र परिवारों को ही सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर प्रदान करना है। एक रिपोर्ट।
4: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया का उद्देश्य किसी भी पात्र परिवार को एलपीजी से वंचित करना नहीं है। जो ग्राहक पहले ही प्रमाणीकरण पूरा कर चुके हैं उन्हें दोबारा यह कराने की जरूरत नहीं है। मंत्रालय ने कहा कि प्रत्येक कनेक्शन को आधार से सत्यापित उपभोक्ता से जोड़ने से सब्सिडी वाले घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक और औद्योगिक इस्तेमाल के लिए होने वाले दुरुपयोग को रोकने में मदद मिलेगी। सुपर्णा सैकिया के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: भारतीय वायुसेना जोधपुर वायुसेना केंद्र पर जापान वायु आत्मरक्षा बल के साथ द्विपक्षीय वायु अभ्यास वीर रक्षक 2026 का संचालन कर रही है। एक रिपोर्ट।
1: 14 दिवसीय अभ्यास मंगलवार को समाप्त होगा। ये अभ्यास उन्नत परिचालन मिशनों और दोनों वायु सेनाओं के बीच व्यापक पेशेवर समन्वय पर केंद्रित है। भारतीय वायु सेना स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ASU-30 MKI और रफाल सहित विभिन्न प्रकार के अग्रिम पंक्ति के लड़ाकू विमानों के साथ भाग ले रही है। जापान AF-2A लड़ाकू विमान के साथ अभ्यास में हिस्सा ले रहा है। अभ्यास वीर रक्षक 2026 सामरिक दक्षता और एरोस्पेस परिचालन तालमेल को बढ़ाकर दोनों देशों के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को दर्शाता है। समाचार कक्ष से मैं पूजा।
2: ईरान ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य तब तक बंद रहेगा जब तक उसकी शर्तें पूरी नहीं हो जाती और अमेरिका अपनी प्रतिबद्धताओं को लागू नहीं करता। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गलिबाफ ने कहा कि ईरान अपने दुश्मनों के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल करता रहेगा।
5: ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को तभी खोला जाएगा जब अमेरिका उनकी शर्तें पूरी करेगा। इनमें लड़ाई खत्म करना और ईरानी शिपिंग पर लगे प्रतिबंधों में बदलाव शामिल है। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही अभी भी काफी सीमित है। हालांकि अमेरिका का कहना है कि पिछले 2 महीनों में उसने 2000 से ज्यादा कमर्शियल जहाजों को वहां से गुजरने में मदद। वहीं हूदी हमलों के बीच अमेरिका ने वेस्ट एशिया के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी किया है और कहा है कि हालात तेजी से बिगड़ सकते हैं। दुबई से आकाशवाणी समाचार के लिए शिवा।
2: बांग्लादेश के ढाका में आज कई बम धमाके हुए। कल भी स्थानीय पुलिस थाने के बाहर भी इसी तरह के विस्फोट हुए थे। इस घटना में एक रिक्शा चालक घायल हो गया। ढाका में कल शाम अलग अलग घटनाओं में 3 बसों में आग लगा दी गई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
6: आपको हर खबर से रखे अपडेट expert@AIRNewsHindi और पब्लिक पर @AIRNewsAlerts को फॉलो करें।
2: ये आकाशवाणी है। जापान के नागोया में एशियाई खेलों में आज भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेल स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। इन खेलों के बारे में और अधिक जानकारी दे रही हैं जागृति शर्मा।
7: जापान एशियाई खेलों में भारत की एला वेनेल वलारिवन ने 10 मीटर एयर राइफल व्यक्तिगत स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। उन्होंने टीम के रजत पदक के बाद अपना व्यक्तिगत रजत पदक जीता है। 2025 विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक विजेता वलारिवन ने फाइनल में 252.4 अंक हासिल किए। जापान की हिनाता ताइची ने रिकॉर्ड 253 अंकों के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत की एला वेनेल सोनम

0: भास्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम स्पर्धा का पहला रजत पदक दिलाया। चीन ने विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। जापान को कांस्य पदक मिला। इस बीच सुचिका तारियाल ने इतिहास रच दिया है। वे एशियाई खेलों में महिलाओं के पारंपरिक 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में कांस्य पदक जीतने वाली देश की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। इस जीत के साथ सुचिका सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं और मार्शल आर्ट्स में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया है। भारत एशियाई खेलों के महिला T20 क्रिकेट मैच के फाइनल में पहुंचा। आज दूसरे सेमीफाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 114 रन से हराया। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 195 रन बनाए। भारत के 196 रन के जवाब में बांग्लादेश की पूरी टीम 16वें ओवर में 81 रन पर ही सिमट गई। शेफाली वर्मा ने सफेद गेंद का अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाकर इतिहास रचा। शेफाली एशियाई खेलों में शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज भी बन गई हैं। वहीं सलामी बल्लेबाज स्मृति मानधना महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की दिग्गज खिलाड़ी सूजी बेट्स के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। फाइनल मैच मंगलवार को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। भारतीय महिला हॉकी टीम ने पूल बी के पहले मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 से रौंदकर शानदार शुरुआत की। दीपिका सहरावत ने 8, इशिका चौधरी ने 3, जबकि लाल थंत लुआंगी और नेहा ने 2-2 गोल दागे। भारत का अगला मुकाबला कल इंडोनेशिया से होगा।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल टीम को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिम बंगाल के गंगे क्षेत्र, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना और विदर्भ में भी बारिश होने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगी। युवाओं में मादक पदार्थों का दुरुपयोग समाप्त करने के लिए देश भर में आज राष्ट्रीय संकल्प समारोह का आयोजन। हौजी विद्रोहियों के सऊदी अरब पर मिसाइल और ड्रोन हमले के बाद पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान के नगोया में एशियाई खेलों में भारतीय निशानेबाजों ने 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट के फाइनल में भारत पहुंचा। शेफाली वर्मा शतक बनाने वाली पहली बल्लेबाज और स्मृति मानधना महिला T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बनी। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरलम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और तेलंगाना में आज तेज वर्षा का अनुमान। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: बढ़ते दिन के साथ धीरे धीरे बढ़ रही है खिलाड़ियों की उम्मीदें और हौसले मेडल जीतने के लिए। नमस्कार, 20वें एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं कविता
4: एंड आई एम दर्पंती किया।
3: अब तक भारत के शेड्यूल पर नजर डालें, खेलों पर नजर डालें, तो अब भारत 2 मेडल जीत चुका है। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल वुमेन्स टीम में आया है भारत का पहला मेडल, जो जीता है एला वनिल वलारीवन, सोनम मस्कर, विदर्शा विनोद ने। वहीं इसी की इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में एला वनिल ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है।
4: Right, so 2 medals for Ella Vanil Valarivan, who hails from Tamil Nadu, and she calls Gagan Narang her mentor. And the interesting bit is that in the 2010 Asian Games in Guangzhou, Gagan Narang also achieved the same feat. He had won 2 silver medals, one in the individual event, one in the team event, and that's exactly what Ella Vanil has done today. And obviously, as Kavita told you, alongside Sonam Maskar and Vidarsha Vinod, she also won a medal in the team event. So India now are at 9th spot in the medals table, still early days with those 2 medals, but there are 2 more medals which have been confirmed but are not currently reflecting on that medals table. One in MMA, we have been telling you again and again that Suchika Tarial has confirmed at least a bronze by entering the semi-finals in the women's 60 kilogram category. However, another medal has now been secured in cricket as well. The Indian women's team have won their semi-final contest in a one-sided manner. They steamrolled Bangladesh, riding on Shefali Verma's record-breaking century, and are now assured of at least a silver. However, we will hope that in the final, when they lock horns with Sri Lanka, whom they defeated a few days back in the Women's Asia Cup final, they will again retain their gold medal, retain their crown of the Asian Games as well.
3: क्रिकेट के साथ ही जीत का सिलसिला बढ़ाया है आगे हॉकी के खिलाड़ियों ने. जी हाँ, हॉकी में भी दोनों ही टीमों के रिजल्ट हम सबके सामने आ चुके हैं. पहले मुकाबला खेला गया महिलाओं का, जहां पर भारतीय टीम ने उज़्बेकिस्तान को शानदार तरीके से 19-0 से हरा दिया. इसी के पीछे पीछे भारतीय पुरुषों की भी मुकाबला खेला गया, जहां पर भारतीय टीम ने इंडोनेशिया को 13-1 से हरा दिया. और बात करें अगर इसी के साथ स्विमिंग की, जिसका मुकाबला अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है, यानी 2:40 पर ये मुकाबला होगा. तैराकी में पुरुषों की 100 मीटर बैकस्ट्रोक स्पर्धा पर भारतीय तैराक एक बार फिर से मेडल के लिए दावेदारी पेश करते नजर आएंगे. ऋषभ दास यहां पर होंगे हमारे सामने. और आपको ये भी बता दें कि जो सारी प्रतिस्पर्धाएं हैं नागोया शहर और आईची प्रीफेक्चर में हो रही है, लेकिन स्विमिंग की प्रतिस्पर्धाएं जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हो रही हैं.
4: राइट, सो वी होप दैट ऋषभ दास, हु विल बी फीचरिंग इन दैट फाइनल, विल बी एबल टू गेट अ मेडल एज वेल. हाउएवर, फ्रॉम द स्विमिंग सेंटर इन टोक्यो, वी मूव आवर attention to the Sky Hall in Nagoya, where the table tennis event is happening. As we told you in our last update, that Indian women's team had won their opening contest against Indonesia, and the men's team also started off on a winning note by defeating Indonesia. However, in their second tie, Singapore is giving the Indian women's team a run for their money. In each tie, there are 5 matches played, and you have to win 3 of them in order to win the tie and take the points out of it. In the first match in this particular tie against Singapore, Yashaswini Ghorpade got India off to a good start. However, after that, Srija Akula has lost her match, and Dia Chitale has also lost her match. So now in the remaining 2 matches, India need to make it or break it, otherwise they will lose this fixture. On the other hand, in the badminton court, there was not much of competition. India secured a comfortable victory against Kazakhstan, riding on good performances from Unnati Hooda, Tanvi Sharma and PV Sindhu. And based on that, now they are into the quarterfinals, where they will be facing Japan.
3: बात करते हैं वुशू की, जिसमें अब से कुछ देर बाद भारत के 2 खिलाड़ी अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे. 52 किलोग्राम में अपर्णा सांडा इवेंट में ईरान की सौगंध सिंह काई चेतन से भिड़ेंगी. वहीं पुरुष 75 किलो में विक्रांत बालियान का मुकाबला ईरान के सोहेल मौसवी से होगा. ये भी सांडा इवेंट का ही मैच है. सांडा इवेंट सांशो की कहा जाता है वुशू मार्शल आर्ट का फुल कॉन्टेक्ट कॉम्पिटिशन है, जिसे फाइटिंग इवेंट माना जाता है. वुशू की उत्पत्ति चीन से हुई है. ये चीनी मार्शल आर्ट है, जिसे दुनिया भर में कुंग फू के नाम से भी जाना जाता है.
4: सो वील कीप आर आईज ऑन दैट एंड वी विल गिव यू द अपडेट एज सून एज पॉसिबल एज एंड व्हेन इंडिया विन द मेडल्स. फॉर नाउ दिस इज दर्पण एंड कविता साइनिंग ऑफ विद द मैसेज दैट वी विल मीट अगेन एट 3:30 PM विद द लाइव अपडेट्स फ्रॉम द 20th एशियन गेम्स.
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जापान के आईची नगोया में खेले जा रहे 20वें एशियन खेल की लेटेस्ट जानकारी के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ मैं कविता
2: एंड आई एम दर्पण किया।
1: अब तक हमने आपको बताया आज के दिन में जापान में हो रहे एशियन गेम्स में शूटिंग, क्रिकेट, हॉकी और बैडमिंटन में भारत का दबदबा रहा, लेकिन टेबल टेनिस के टेबल पर भी इस वक्त चल रहा है एक कांटे का मुकाबला।
2: राइट, इट इज द वुमेन्स टीम इवेंट वेयर इंडिया वन देयर अर्लियर फिक्स्चर अगेंस्ट इंडोनेशिया। हाउएवर, सिंगापुर इज कॉन्स्टेंटली गिविंग द इंडियन टीम अ रन फॉर देयर मनी। एंड लेट मी टेल यू दैट इन दिस पर्टिकुलर इवेंट, इन अ पर्टिकुलर फिक्स्चर और अ पर्टिकुलर टाई, 5 मैचेस हैपन बैक टू बैक। एंड देयर India started off on a winning note, however, then Singapore came roaring back to win the next two. India won the fourth one, and hence we went into the final match, which was supposed to be the deciding match. And that deciding match between Singapore's Ming Loy and India's Yashaswini Ghorpade has also gone into the final set. And just as we speak, Yashaswini Ghorpade has scored the winning point. It looks like India have won this particular match. So good news coming your way. Both opening matches have been won by the Indian team. The Indian women's team are off to a winning start. And just as we say that, 25-year-old Manush Shah is gearing up to face an opponent from Iran in the men's team event. This is the second fixture for the men's team as well. They featured against Indonesia earlier today and they won it 3-0. Will they be able to defeat Iran as well? We will find out soon.
1: जी हाँ, लेकिन जहाँ कुछ उम्मीदें अभी बरकरार हैं, ऐसे में आज एक मेडल का मुकाबला होना था जिस पर फिर चुका है पानी। मैं बात कर रही हूँ पुरुषों के 100 मीटर बैकस्ट्रोक में ऋषभ दास का जो नंबर था वो छठे पायदान पर रहे 54.77 के अंकों के साथ, और छठे पायदान पर रहकर पदक की दौड़ से बाहर होकर इन्होंने अपना सपना अधूरा ही छोड़ दिया। इसी के साथ अब बात करते हैं वुशू की, जिसमें अब से कुछ ही देर में खिलाड़ी अपने अपने मुकाबले में चुनौती पेश करेंगे। 52 किलोग्राम में अपर्णा सांडा इवेंट में ईरान की सौगंध सिकाई चेतन से भिड़ेंगी। वहीं पुरुषों में 75 किलोग्राम वर्ग में विक्रांत बालियान का मुकाबला ईरान के सोहेल मौसवी से होगा।
2: Yes, and we will keep you updated about these events as and when they happen. But in case you missed out on the earlier updates, let's give you a quick rundown of what has transpired in Japan today, starting with shooting.
1: शूटिंग की बात करते हैं। सबसे पहले शूटिंग में आए हैं दो मेडल जो कि हमें मिले हैं 10 मीटर एयर राइफल विमेन्स टीम में। ये जीते हैं हमारी टिकड़ी ने एला वनिल वला रिवन, सोनम मस्कर विदर्शा विनोद ने। वहीं इसी के इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में एला वनिल ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया।
2: Right, and in the hockey stadium also, India were the dominant force. The men's team started off their campaign with a 13-1 win over Indonesia. Meanwhile, the women were a step ahead. They defeated Uzbekistan by 19-0.
1: क्रिकेट की बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है, तो क्रिकेट में भारतीय महिला टीम ने अपना कदम रख लिया है। फाइनल में भारतीय महिला टीम ने बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया है और अब वो गोल्ड मेडल के लिए श्रीलंका से भिड़ेगी।
2: यस, शेफाली वर्मा स्कोर्ड अ सेंचुरी टुडे, 100 नॉट आउट ऑफ 49 बॉल्स। शी वाज द स्टार, कंप्लीटेड 100 सिक्सेस इन T20I क्रिकेट। सो डिड स्मृति मानधना, हु हैज नाउ आल्सो बिकम द ऑल टाइम लीडिंग रन getter in women's T20I. So two medals coming in shooting, one in the individual event in the women's 10 meter air rifle, one in the team event, and by the virtue of qualifying for the finals, the women's cricket team is also assured of a silver. Another athlete of ours is assured of at least a bronze, and that is Suchika Tarial in MMA in the 60 kilogram category. She defeated her Mongolian opponent in the quarterfinal and got herself into the semi-final. Meanwhile, in the badminton court, led by PV Sindhu, the Indian women's team in the team event also went off to a winning start. PV Sindhu won her match in straight sets, and so did Tanvi Sharma and Unnati Hooda. 3-0 against Kazakhstan, India into the quarterfinals in this event as well.
1: चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं मेडल टैली पर, जहां भारतीय टीम अभी 10वें पायदान पर ही काबिज है 2 सिल्वर मेडल के साथ, और पहले पायदान पर है चाइना की टीम।
2: Right, so those two silver medals for India. However, remember, two more are confirmed. They are not yet reflecting on the medals table. However, we hope that they get converted into gold. Still early days, still a lot of medals to be won, and we will keep you updated. You were listening to the live updates of the 20th Asian Games live on Akashvani.
3: अभी आप एशियन गेम्स 2026 की अपडेट सुन रहे थे।
4: नमस्कार मंडळी, पुन्हा एकदा स्वागत आपल्या सप्तरंगी साथ मध्ये। मंडळी, आपल्या शालेय जीवनात आपण अनेक धडे शिकतो, पण काही धडे असे असतात जे परीक्षा संपली तरी आयुष्यभर आपल्या सोबत राहतात। तसंच अरविंद जगताप यांनी लिहिलेलं इयत्ता 10वीच्या मराठी अक्षर भारती या पुस्तकात समाविष्ट असलेलं आपणचे पत्र हा एक धडा आहे। या धड्याची पार्श्वभूमी अतिशय सुंदर आहे। शाळेतले एक आप्पा म्हणजेच एक साधा शिपाई काका 10वीच्या विद्यार्थ्यांना उद्देशून पत्र लिहितोय। आजच्या स्पर्धात्मक युगात जिथे मुलांवर फक्त 90-95% मिळण्याचं ओझं असतं, तिथे हा शिपाई काका मुलांना सांगतो की कोणतंही काम श्रेष्ठ किंवा कनिष्ठ नसतं। तुम्ही जे काही काम कराल ते इतकं उत्तम करा की लोकांनी तुमचं नाव घेतलं पाहिजे। अरविंदजींनी या पत्रातून विद्यार्थ्यांना खूप मोलाचा संदेश दिलाय। ते लिहितात की गुण महत्वाचे आहेतच, पण त्यापेक्षाही तुम्ही एक चांगली व्यक्ती बनणं जास्त महत्वाचं आहे। खेळणं, निसर्गाचा आनंद घेणं आणि एकमेकांना मदत करणं हा देखील शिक्षणाचाच भाग आहे। या पत्राचं वैशिष्ट्य म्हणजे यात कोणतीही शिक्षकी भाषा नाही किंवा धाक नाही। एक शिपाई काका ज्याने वर्षानुवर्षे मुलांना जवळून पाहिलंय, तो अत्यंत प्रेमाने मुलांशी संवाद साधतोय। आज महाराष्ट्रातले लाखो विद्यार्थी हा धडा वाचून मोठे झाले आहेत आणि जीवन जगण्याचा एक नवा दृष्टिकोन शिकत आहेत। एका लेखकासाठी यापेक्षा मोठा सन्मान काय असू शकतो? पण मंडळी, अरविंदजी फक्त कागदावर लिहत नाहीत, तर ते जमिनीवरही काम करतात। एका मोठ्या सामाजिक आणि पर्यावरण कार्यात त्यांचा खूप मोठा वाटा आहे। त्याबद्दल जाणून घेऊयात या गाण्यानंतर।

0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
1: जापान के आईची नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों की ताजा अपडेट के साथ एक बार फिर से हाजिर हूं मैं कविता।
2: एंड आई एम दर्पण टिकिया।
1: 45 देशों के करीब 17,000 एथलीट 43 खेलों में 469 मेडल्स के लिए मशक्कत कर रहे हैं। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि भारत के अब तक 2 सिल्वर मेडल आ चुके हैं और इसके अलावा अभी 2 पदक सुनिश्चित हो गए हैं। पहला है एमएमए और दूसरा है महिला क्रिकेट में।
2: Right, but currently we will take you to what is the Sky Hall in Nagoya, where the table tennis competition is happening. And after getting off to a winning start and winning their respective first fixtures, both the Indian men's team and the Indian women's team have been given a run for their money in their second fixture. In their second fixture, after winning against Indonesia earlier in the morning, the women's team ran into Singapore, a team that really pushed them to the edge in a seesaw battle that went down to the wire. Eventually, India came out on top. However, the men's team is currently huffing and puffing against Iran. Against Iran, we started off with a battle between Manush Shah and Naushad Alamian, who defeated the Indian paddler. After that, a 16-year-old Faraji of Iran defeated India's Manav Thakkar. And currently, Harmeet Desai is in the third match, is playing against Naushad Alamian and has come to the brink of losing the first set. The score is currently 11-10, and just as I say that, he loses another point and eventually loses the set as well. So India have already lost 2 matches and they have lost this set as well, which means in this particular fixture they are struggling and they need to win almost everything from here on in order to win in this fixture.
1: बात करते हैं वुशु की, जहां पर अभी से कुछ ही देर पहले मुकाबला हुआ महिलाओं का एशियन गेम्स 2026 में। भारत की डेब्यूटेंट वुशु खिलाड़ी अपर्णा को महिला सांडा 52 किलोग्राम के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में ईरान की सोगन सिकाई ए चेतान के खिलाफ 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ अपर्णा का एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। हालांकि एशियाई स्तर के इतने बड़े मंच पर उनका पदार्पण अपने आप में उनके करियर का एक महत्वपूर्ण अनुभव है। आज नतीजा भले ही अपर्णा के पक्ष में नहीं रहा, लेकिन ये सफर अभी शुरू हुआ है और आने वाले मुकाबलों में यही अनुभव उनके काम आएगा। वही बात करते हैं अगले मुकाबले की, जो अभी होना है। बात करते हैं विक्रांत बालियान की, जिनका मुकाबला अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है। और अगर हम इनके बारे में थोड़ा सा आपको बताएं, तो ये सेना में कार्यरत हैं, अपनी ड्यूटी के साथ साथ देश के लिए रिंग में भी कड़ा मुकाबला लड़ते हैं। सीनियर्स को देखकर इन्होंने अपना सफर शुरू किया था और अब उसी की प्रेरणा लेकर इन्होंने इस खेल को चुना और आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। वहीं अगर सोहेल की बात करें तो सोहेल भी इनसे कम नहीं है, इनके ओपोनेंट जूनियर वर्ल्ड चैंपियन है, तो ये मुकाबला कड़ा हो सकता है।
2: Right, Sohail comes from Iran, and Iran is giving India a run for their money on the table tennis table. What would be the outcome in Wushu? We will find out together. However, in case you missed out on the earlier updates, let's give you a quick highlight of what has transpired for India today. First of all, starting with shooting, where India won 2 silver medals. The first one came in the team event of the 10-meter women's air rifle, the trio of Vidarsa Vinod, Sonam Maskar and Ella Vanil won the silver medal, and then Ella Vanil went on to win the silver medal in the individual event as well.
1: इसके बाद बात करते हैं MMA की, जिसमें सुचिका तारियाल ने सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है और अपने लिए कम से कम एक मेडल सुनिश्चित कर चुकी हैं।
2: Similarly, the cricket team, the women's cricket team has also secured a medal riding on Shefali Verma's swashbuckling 100. India defeated Bangladesh in the semi-final by 114 runs, which means now they will compete with Sri Lanka in the finale for the gold medal.
1: Hockey में भी भारतीय महिला और पुरुष टीमों ने अपने-अपने मुकाबले जीते। इंडिया में महिलाओं में जो मुकाबला हुआ वो भारतीय टीम ने 19-0 से जीत लिया उज़्बेकिस्तान के साथ, वहीं पुरुषों ने 13-1 से इंडोनेशिया से अपना मुकाबला जीता।
2: Meanwhile, in badminton, PV Sindhu, Tanvi Sharma, Unnati Hooda gave good performances in the women's team event, and India won their opening fixture 3-0 and entered the quarterfinals.
1: चलते चलते एक नजर डाल लेते हैं मेडल टैली पर. भारतीय पोजीशन इस वक्त काबिज है. हम 10वें पायदान पर 2 सिल्वर मेडल के साथ. पहले नंबर पे है चाइना जिन्होंने जीत लिए हैं 11 गोल्ड 6 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल. इसी के साथ जापान है दूसरे पायदान पर जिन्होंने जीते हैं 6 गोल्ड मेडल 6 सिल्वर मेडल और 7 ब्रॉन्ज मेडल.
2: स्टिल अर्ली डेज. वी होप दैट द पिक्चर वुड चेंज एंड इट वुड बी रोजियर फॉर इंडिया इन द कमिंग डेज. हाउएवर वी विल कीप यू अपडेटेड. वी विल मीट यू अगेन एट 6:30 PM फॉर आवर नेक्स्ट अपडेट. फॉर नाउ कीप लिसनिंग टू आकाशवाणी.
0: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया.
1: पुन्हा एकदा नमस्कार. मी अश्विनी आणि आपण सांजेच्या पारीमध्ये नॅशनल नेबरहूड डे सेलिब्रेट करत आहोत. मंडळी आता आपण अशा एका विषयाकडे वळत आहोत जो आपल्या शेजार धर्माचा सर्वात महत्वाचा आणि भावनिक पाया आहे. आपल्याकडे जुने लोक नेहमी सांगायचे की आपला सक्का भाऊ जरी लांब राहत असला तरी दारात राहणारा शेजारी हाच आपला पहिला भाऊ असतो. थोडक्यात म्हणजे विचार करा, रात्री अपरात्री अचानक घरात कोणाची तब्येत बिघडली किंवा घरात एखादं मोठं संकट आलं अशा वेळी आपण लांब राहणाऱ्या नातेवाईकांना नक्कीच फोन करतो, पण ते नातेवाईक गाडी पकडून आपल्यापर्यंत पोहोचेपर्यंत खूप वेळ लागतो. अशा ऐन आणीबाणीच्या वेळी आपण ज्यांचा दरवाजा ठोठावतो ते आपले शेजारीच असतात. ते स्वतःची झोप मोडून स्वतःच्या कामाचा विचार न करता एका पायावर आपल्या मदतीसाठी धावून येतात. गाडी काढणं असो, हॉस्पिटलमध्ये सोबत येणं असो किंवा घरातल्या लहान मुलांना सांभाळणं असो, शेजारी जी मदत करतात त्याला जगात तोडणे. म्हणूनच शेजाऱ्याला पहिला सगा म्हणजेच सर्वात जवळचा नातेवाईक म्हटलं जातं. आज नॅशनल नेबरहूड डे निमित्त आपण अशा सर्व देवमाणूस शेजाऱ्यांचं आभार मानलं पाहिजे ज्यांच्या असण्याने आपल्याला आपल्याच घरात सुरक्षित वाटतं. कारण संकट सांगून घेत नाही पण त्या संकटाचा सामना करायला शेजारी नेहमी तयार असतात. हाच माणसाचा माणसावर असलेला खरा विश्वास आहे, नाही का? बरं मंडळी, तुमच्या आयुष्यात कधी अशी वेळ आली आहे का जेव्हा रक्ताच्या नात्याआधी तुमचे शेजारी तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले? आणि आता आपण बोलत असताना पटकन तुमच्या नजरेत तो प्रसंग आला किंवा काही आठवण आली, नक्की शेअर करा.

0: ಆಕಾಶವಾಣಿ ಎಫ್ಎಂ ರೈನ್ಬೋ 107.1 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕಲಿ ಯೋರ್ಸ್.
1: ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೋತಾ, मैं हूं आपकी रेनबो सखी आकांक्षा और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल. शाम के ठीक 5:03 और 4 सेकंड हो रहे हैं और 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आपने आकाशवाणी मुंबई का ये जो एफएम रेनबो चैनल ट्यून किया है उस पर शाम के इस वक्त होता है लव यू जिंदगी ये प्रोग्राम. और एफएम रेनबो के जो प्रोग्राम हैं ये आप न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी सुनते हैं. तो संडे की इस सतरंगी शाम को सुरीली और प्यार भरी बनाते हैं लव यू जिंदगी प्रोग्राम में. कुछ बातें होंगी दिल से दिल तक.

जी हाँ, आज हम इसी जादू की बात करेंगे। जादू जो हमारे साथ होता रहता है, जो हमारे जीवन में अनायास हो जाती है, या यूं भी कह सकते हैं कि इस जादू के हकदार कभी कभी हम ही होते हैं। बस हमें ही पता नहीं होता कि ये सब कैसे, क्यों, कब और किस वजह से हो रहा है। नहीं समझे ना आप, समझाती हूं। क्योंकि इस जादू की खासियत ही यही है कि ये जो जादू की छड़ी हम घुमाते हैं ना, इसका हमें ही पता नहीं होता। इस अनोखी जादू का नाम है, बताती हूँ जादू का नाम, बताती हूँ जादू कैसे होता है वो भी बताऊंगी, और सारी बातें जो होंगी आज के इस लव यू जिंदगी प्रोग्राम में, ये जिंदगी में हमारी जो जादू चलता रहता है ना, उसके बारे में ही होंगी, लेकिन जादू भरे गानों के साथ।

नहीं नहीं, ये मौसम का जादू नहीं, मतलब हो भी सकता है, मौसम का जादू भी चल जाता है जीवन में हमारे, तो ऐसी कोई ख़ास उसकी डेफिनेशन नहीं है कि ये मौसम का जादू है या और किसी के आने का जादू हो सकता है। देखिए, ये गीत सुनकर तो मैं भी कंफ्यूज हो गई लेकिन जी नहीं, ये किसी के मौसम का जादू नहीं है या फिर किसी के नज़र का जादू नहीं है, ये जादू असर का है आपका खुद पर जो विश्वास होता है ना, उसी के असर का जादू होता है ये। लेकिन इसे हम ही समझ नहीं पाते हैं, अपनी ही काबिलियत को जान नहीं पाते हैं, अपनी ही सूझबूझ पर कभी कभी हमें संदेह होता है ना। इसी संदेह से परे अपने आप के हुनर को जगाता है ये जादू, जिसे हम कहते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला जादू है ना, ये हमारे जीवन में भी कई बार अचानक से जादू कर देता है, जिससे जीवन में कुछ खुशनुमा खुशी के पल आ जाते हैं। और जिंदगी में कभी कभी ये खुशनुमा पल छोटी सी बहार लेकर आते हैं।

जिंदगी में कभी कभी ऐसे लोग भी आते हैं जिनके आने से ही जादू हो जाती है। मुझे मेरे कॉलेज के दिनों का एक किस्सा याद है। कॉलेज के शुरुआती दिनों में मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं थे, तो फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम के बाद मैं जब रिज़ल्ट देखने नोटिस बोर्ड के पास पहुंची थी, पीछे से आवाज़ आई, एक्सक्यूज़ मी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो एक हंसमुख सी सांवली सी लड़की खड़ी थी। उसकी मासूम मुस्कान देखकर मैं भी बरबस हंस पड़ी। उसने कहा, मेरा नाम आशा है, कॉलेज में मेरी कोई सहेली नहीं है, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? कॉलेज में मेरी भी कोई सहेली नहीं थी, नए नए थे कॉलेज में, तो मेरी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, एक दोस्त मिल गई। बस उस दिन से आशा और आकांक्षा की जोड़ी बन गई। तो कभी कभी ये जो कुछ कहने का, अजनबी से कुछ कहने का जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो भी जादू कर देता है, एक नया जादुई रिश्ता बन जाता है, बहुत प्यारा सा। क्या ख्याल है आपका?

आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल प्रोग्राम है लव यू जिंदगी। और इस प्रोग्राम में हम बातें कर रहे हैं एक जादू की छड़ी की, या फिर ये कह लीजिए कि हमारे पास ही हमारे कॉन्फिडेंस का जो रिमोट कंट्रोल होता है उसकी। कहने का मतलब ये है कि ऐसे छोटे छोटे किस्से ना हमारे जीवन को एक अचानक नई खुशी से या फिर नए रिश्तों से भर देते हैं, लेकिन इस अचानक आई खुशी के पीछे होता है कॉन्फिडेंस, किसी बात को बिल्कुल कंफर्म करने का कॉन्फिडेंस, ठोस तरीके से बताने का कॉन्फिडेंस, किसी प्यारे से दोस्त के मन का हाल जानने का कॉन्फिडेंस, किसी अनचाहे रिश्ते को ना कहने का कॉन्फिडेंस, किसी नए क्षेत्र को चुनने का कॉन्फिडेंस, किसी अपने को मदद करने का कॉन्फिडेंस। तो ये जो बहुत सारे कॉन्फिडेंस होते हैं ना, ये हमारे ही अंदर से आते हैं। और जब हम उस कॉन्फिडेंस के साथ हमारी ज़िंदगी के तमाम छोटे बड़े फैसले और उन फैसलों के पीछे जो ये कॉन्फिडेंस होता है, तो वो जो फैसले हम लेते हैं हमारी ज़िंदगी के, छोटे हों बड़े हों, तो इससे हमारी ही ज़िंदगी को एक नया आयाम मिलता है हर फैसले से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। ज़िंदगी में कोई नया रिश्ता आए या ज़िंदगी से हमारे कोई एक रिश्ता कम हो, तो ये कॉन्फिडेंस ही होता है जो हमें हमारी जीवन को हम कैसे बदलते हैं, कैसे मोड़ते हैं, और फिर हम हमारी ही ज़िंदगी को किस राह पर ले जाते हैं, कौन सी मंजिल की तरफ ले जाते हैं।

सब ये जो है कॉन्फिडेंस ही हमारा तय करता है। तो ये जो जादू की छड़ी है आपके पास, ये घुमाइए और अपने कॉन्फिडेंस पे भरोसा रखिए, या फिर यू कहिए कि कॉन्फिडेंस पर कॉन्फिडेंस रखिए, फिर देखिए कि जिंदगी में कई खुशियां आएंगी, कई बहारें आएंगी। आप सुन रहे हैं लव यू जिंदगी प्रोग्राम आकांक्षा के साथ।

0: आकाशवाणी FM रेनबो 107.1 MHz म्यूजिकली योर्स।
1: आपने ट्यून किया है आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल 107.1 MHz पर, जिसे आप न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुनते हैं। कुछ नायाब शेर और चुनिंदा गजलों के प्रोग्राम अंदाज़े बयां में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा, लेकर कुछ प्यारी सी गजलें अंदाज़े बयां इस प्रोग्राम में।

मजरूह कहते हैं, दिल की तमन्ना थी मस्ती में मंजिल से भी दूर निकलते। दिल की तमन्ना थी मस्ती में मंजिल से भी दूर निकलते। अपना भी कोई साथी होता, हम भी बहकते चलते चलते।

0: जापान के नागोया में चल रहे 20वें एशियाई खेलों के लेटेस्ट अपडेट के साथ एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता
1: एंड आई एम दर्पण टिकिया।
0: हमारी पिछली अपडेट में आपने सुना था टेबल टेनिस के मुकाबले खेले जा रहे थे और अब हमारे पास है उस मैच का रिजल्ट।
1: राइट, सो ईरान प्रूव्ड टू बी अ टफ ओपोनेंट फॉर टीम इंडिया एंड इंडिया एंडेड अप द मेंस टीम वी आर टॉकिंग अबाउट। इट इज द मेंस टीम इवेंट वी आर टॉकिंग अबाउट वेयर द इंडियन मेंस टीम हैड स्टार्टेड ऑफ ऑन द परफेक्ट नोट अर्ली इन द मॉर्निंग बाय डिफीटिंग इंडोनेशिया बाय 3-0। हाउएवर अगेंस्ट ईरान दे लॉस्ट 3-0, व्हिच मींस दे लॉस्ट ऑल थ्री मैचेस, द फर्स्ट थ्री मैचेस

एक बार फिर आप सभी का स्वागत है अंदाजे में। आप प्रोग्राम में आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल।

अंदाजे बयां प्रोग्राम आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठी हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। मजरू साहब ने बहुत ही कमाल का ख्याल रखा है। वक्त के साथ साथ कई रिश्ते भी बदल जाते हैं, प्यार गुनाह में भी बदल सकता है, लेकिन अगर दिल में सच्चा प्यार हो तो कोई लाख तोहमतें लगाएं, वो प्यार प्यार ही रहता है।

0: Swanee FM Rainbow 107.1 MHz, musically yours.
1: ये है आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल जिसे आप सुनते हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज पर और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी। शाम के ठीक 7:11:15 हो रहे हैं। हम तुम इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेनबो सखी आकांक्षा और हम तुम प्रोग्राम होता है आपकी फरमाइशों पर आधारित। तो चलिए शुरुआत करते हैं आप ही की इस फरमाइश

हम तुम प्रोग्राम में इस गीत की फरमाइश की थी ब्लाइंड होम खंडाला से जगन्नाथ केदारी जी ने। इसके अलावा हमें जिन श्रोताओं के मैसेजेस मिले हैं, फरमाइशें मिली हैं, उनके नाम भी बता दूं। डॉक्टर अंजू जी का अंधेरी से मैसेज आया था। इसके अलावा प्रणव शिंदे, रघुनाथ खन्नुकर जी का कोल्हापुर से, फिरोज सिगनपुरिया, कल्पना राजू उल्लासनगर से, संजय दर्शन, यश और शालवी पेण महाराष्ट्र से, दत्ता केदार का पंढरपुर से, धीरज चव्हाण, अजय साखरे जी का इंदौर से, विजेंद्र घाटोल जी का अकोला से, मुस्तफा अरविंद कुलकर्णी जी का इचलकरण जी से, राजेंद्र परमार, प्रदीप अनंत कृष्णन जी का भी हमें मैसेज मिला है। इसके अलावा रश्मि और राजेंद्र यादव जी का कुरला से, कविता और दिग्दर्शन गौड़ का मेरठ से, शिवा और प्रेम गोप जी का झारखंड से, रूपाली और नीलेश पाटकर डोंबिवली से, पंकज मोहोड़ जी का अमरावती से, पारसमणि और हीरामणि वर्मा जी का छत्तीसगढ़ से, संजय पाटिल जी का मलकापुर से, निर्मला और पीएस नावकर जी का नरवेल महाराष्ट्र से, सुनील और रेणु यादव जी का उदयपुर से, बलकरण वर्मा जी का छत्तीसगढ़ से और दीपा पालकर जी का मुंबई से। इन सारी जो श्रोताओं ने हमें फरमाइश भेजी हैं और मैसेज किए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी गीत आपको सुनवाते हैं, साथ ही इस फिल्म से अनुराधा पौडवाल की आवाज़ है।

इस गीत के साथ ही हम तुम प्रोग्राम आज यही समाप्त करने की आकांक्षा को दीजिए इजाजत, लेकिन 7:30 पर आप प्रायोजित कार्यक्रम सुनेंगे और ठीक 8 बजे रॉक विथ जॉक प्रोग्राम के साथ आपको मिलने आएंगे हमारे मित्र आरजे विद्यासागर जी। तो रहिए एफएम रेनबो के साथ, सुनते रहिए 107.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी मुंबई का एफएम रेनबो चैनल। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किस्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान

0: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा।
1: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
2: श्रोते हो, आत्ताच आपण कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी ऐकलात। या कार्यक्रमाचे सादरकर्ते होते रोशन जाधव।

अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम फार्म टू सिटी। आप सुन रहे हैं 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी मुंबई का FM रेनबो चैनल। 8 बजने में बस कुछ ही समय शेष है और मेरे प्रिय मित्र विद्यासागर जी स्टूडियो में बहुत प्यारी सी मुस्कान के साथ आ गए हैं और मैं अभी आपसे इजाज़त लेती हूं और वो आपके साथ होंगे रॉक विथ जॉक इस प्रोग्राम के साथ। सुनते रहिए FM रेनबो चैनल 107.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: Bruce Springsteen, the boss, turns 77 this week. Well, when he was starting out, he was so short of money that he reportedly lived in a small cottage in New Jersey with no telephone. Years later, he'd become one of the biggest touring artists on earth, be called the boss. And it's no turning back. He was just a fan, casual fan, turning up at Memphis after Elvis Presley, before Elvis Presley. Just wanted to see Elvis Presley. And now, for all these years, we can say that if anyone's turned up stadiums, turned up people, just a guitar to start with, and now girls in the summer clothes, sometimes without that too, are big fans, crazy fans of Bruce Springsteen. We wish him a very happy birthday, 23rd of September 1949, which means 3 days from now, the boss turns 77. Girls in their summer clothes is what we played. Folks, remember 8:45, the news from New Delhi comes along, and then the news from New Delhi again. First in Hindi, then in English. We come back at 9:15. You have song requests, you know where to direct them. 865-766-1071. 865-766-1071. Go ahead and express. If you have the song, we shall play it.
1: Namaskar. Akashvani se samachar sandhya ke saath main Jaya Bharati. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया. उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया. भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी. वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण उपलब्धि. वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया. यूक्रेन ने रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया. मॉस्को सहित रूस के विभिन्न इलाकों में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को भी निशाना बनाया. और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते. महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची. वहीं पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की. अब समाचार विस्तार से. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं. नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है. विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है. इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है.
1: राष्ट्रपति ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता में कमी, जल संकट और भूमि क्षरण जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं.
2: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है. बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं. वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड्स स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं. ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं. इनसे

0: पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिला है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, सर्वोच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताकेहिरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है। ये पहला अवसर है जब किसी द्विपक्षीय अभ्यास के तहत जापानी लड़ाकू विमान भारत की धरती से उड़ान भर रहे हैं। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इसे भारत जापान रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा।
1: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और उस समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उधर जापानी वायुसेना प्रमुख जनरल मोरिता ने भारतीय मेहमान नवाजी की प्रशंसा की और तेजस को भारत के मेक इन इंडिया अभियान तथा तकनीकी नवाचार का एक बेहतरीन प्रतीक बताया। 9 सितम्बर से शुरू हुआ वीर गार्जियन अभ्यास 22 सितंबर तक चलेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता ATS ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति TPC के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कुल 30 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था।
3: ब्रिजेश गंजू करीब 2 दशक से फरार था। उसके खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण, रंगदारी, आगजनी, आपराधिक साजिश और सरकारी कर्मचारियों पर हमले समेत 50 से अधिक मामले दर्ज थे। इनमें नागरिकों और पुलिसकर्मियों की कथित हत्या के मामले भी शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुठभेड़ में शामिल ATS टीम के लिए 2 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की है। ब्रिजेश गंजू पर घोषित 30 लाख रुपए के इनाम में झारखंड पुलिस ने 25 लाख और NIA ने 5 लाख रुपए की राशि रखी थी। महवीश रहमान की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे हो रहे हैं। जनसेवा से देश सेवा के मंत्र के साथ उनकी ये यात्रा लगातार जारी है।

0: सेवा और सुशासन के इसी संकल्प के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और समाज के सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है, जिससे लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी विशेष श्रृंखला में हम बात करेंगे भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे अत्याधुनिक सम्मेलन और प्रदर्शनी केंद्रों की। इन केंद्रों में देश विदेश के बड़े सम्मेलन, प्रदर्शनियां और अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये आधुनिक परिसर भारत के मजबूत होते बुनियादी ढांचे और वैश्विक स्तर पर बढ़ती उसकी क्षमता को दर्शाते हैं।
1: भारत मंडपम और यशोभूमि भारत के विश्व स्तरीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन परिसर हैं। इन्हें भारत को माइस यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव्स, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अग्रणी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2023 में नई दिल्ली के द्वारका में यशोभूमि का उद्घाटन किया था। इसके कन्वेंशन सेंटर में मुख्य सभागार, ग्रैंड बॉल रूम और 13 बैठक कक्ष समेत कुल 15 कन्वेंशन कमरे हैं। इनमें एक साथ करीब 11,000 प्रतिनिधियों के बैठने की क्षमता है। भारत मंडपम को प्रधानमंत्री ने जुलाई 2023 में राष्ट्र को समर्पित किया था। यहाँ G20 शिखर सम्मेलन और हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जैसे महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। भारत मंडपम के बहुउद्देशीय हॉल और प्लेनरी हॉल में कुल 7,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। यह क्षमता ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध सिडनी ओपेरा हाउस की बैठने की क्षमता से भी अधिक है। भारत मंडपम के उद्घाटन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि यह प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा था कि इससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शकों को भी सुविधा मिलेगी।
2: भारत मंडपम देश विदेश के बड़े बड़े एग्जीबिटर्स को मदद करेगा। भारत मंडपम देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म का बहुत बड़ा जरिया बनेगा। भारत मंडपम हमारे स्टार्टअप की शक्ति को शोकेस करने का माध्यम बनेगा। भारत मंडपम हमारे सिनेमा जगत, हमारे आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस का साक्षी बने। भारत मंडपम हमारे हस्तशिल्पियों, कारीगरों, बुनकरों के परिश्रम को प्लेटफॉर्म देने का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनने वाला है।
1: आज भारत मंडपम और यशोभूमि दोनों ही देश में कॉन्फ्रेंस टूरिज्म के सबसे बड़े केंद्रों के रूप में उभर चुके हैं। सुपर्णा सैकिया के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने मेरठ में आयोजित 2 दिवसीय एयर शो में शानदार हवाई प्रदर्शन किया। टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरते हुए रोमांचक प्रदर्शन किया। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने एयर शो देखा और सूर्य किरण टीम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य युवाओं को सशस्त्र सेनाओं में शामिल होने के लिए प्रेरित करना है।
3: सूर्यकिरण एरोबेटिक जो टीम है उसका अद्भुत साहस और भारतीय वायुसेना का पराक्रम तो दुनिया लोहा मानती है और दुनिया के 800 जगह इन्होंने शो किए हैं। हम सब प्रेरणा लेते हैं हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। वही मोटिवेशन भारत की सेना को हमारे रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी का, जिनका हमेशा रहता है कि कैसे भारतीय पूरे डिफेंस सेक्टर को इंडिजिनस करना, उनको मजबूत करना।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन में बीती रात रूस पर 1,000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया। एक रिपोर्ट।
4: मेयर सोबियानिन के अनुसार मॉस्को क्षेत्र में हुए हमलों में 2 लोगों की मौत हुई जबकि 20 अन्य घायल हो गए। उधर रूस के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उनकी सेनाओं ने देश भर में 1100 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन ने रूस के तेल और लॉजिस्टिक्स ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कई तरह की मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई में यूक्रेन में ही बनी फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। पिछले सप्ताह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए दावा किया था कि दोनों पक्ष बुनियादी ऊर्जा ढांचों पर हमला न करने के लिए सहमत हो गए हैं। इसके बावजूद रूस और यूक्रेन दोनों की तरफ से एक दूसरे के ऊर्जा संयंत्रों पर हमले अब भी लगातार जारी हैं। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा।
0: रूस में ये नया हमला ऐसे समय में हुआ है जब वहां 3 दिवसीय संसदीय चुनाव का आखिरी चरण जारी था। इस बीच यूरोप के वरिष्ठ अधिकारियों की चिंताएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलावेलिन वला

0: देवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इससे पहले भारत ने इसी प्रतियोगिता में महिला टीम स्पर्धा का रजत पदक जीता। एलावेलिन वलारिवन, सोनम मस्कर और विदर्शा विनोद की टीम ने देश को यह पदक दिलाया। उधर भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सेमीफाइनल में बांग्लादेश को 114 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही पीवी सिंधु, उन्नति हुडा और तन्वी शर्मा की भारतीय महिला टीम ने बैडमिंटन में प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में सुचिका तारियाल ने पारंपरिक श्रेणी के 60 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक पक्का किया और हॉकी में भी भारत की महिला और पुरुष दोनों टीम ने आज अपने अपने मैच जीते। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। उन्होंने नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर सम्मेलन को संबोधित किया। भारत और जापान की वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों से उड़ान भरी। वाराणसी में उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के साथ मुठभेड़ में 30 लाख रुपए का इनामी नक्सल कमांडर मारा गया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. President Draupadi Murmu calls for stronger climate action and global cooperation to tackle rising natural disasters, addresses conference on future of environment and climate dynamics in New Delhi. India and Japan air chiefs take Tejas sorties during joint air exercise in Jodhpur. IAF chief AP Singh says first ever operation of Japanese fighter jet on Indian soil marks major milestone in defense ties. Naxal commander carrying 30 lakh rupee bounty killed in encounter with Uttar Pradesh anti-terrorism squad in Varanasi. Ukraine fires over 1,000 drones at Russia in largest ever attack, including hundreds at Moscow oil refinery hit. And at Asian Games, India bagged 2 silver medals in shooting. Women's cricket team reaches final and badminton team enters quarterfinal. Men's and women's hockey teams begin campaigns with wins in Japan. And now the news in detail. President Draupadi Murmu has said the increasing frequency of natural disasters in recent time underlines the urgent need for strong climate action and global cooperation to mitigate the impacts of climate change. The president was addressing the valedictory session of the 2-day conference on the future of environment and climate dynamics organized by the National Green Tribunal in New Delhi this evening.
2: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
1: President Murmu said climate change is creating imbalances in various aspects of human life, including biodiversity, water availability and land resources.
2: क्लाइमेट चेंज मानव अस्तित्व के अनेक स्तरों पर असंतुलन पैदा करता है। बायोडायवर्सिटी लॉस, वाटर स्ट्रेस और लैंड डिग्रेडेशन इससे गहराई से जुड़े हैं। वाटर स्ट्रेस वाले क्षेत्रों में फार्म पॉन्ड स्थानीय समुदाय के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ये न केवल वर्षा जल को खेतों में रखने के लिए अपितु सिंचाई के लिए समय पर जल उपलब्ध कराते हैं। इनसे भूजल भी रिचार्ज होता है।
1: The president said a well-structured framework of policies and actions is essential to effectively address such a complex challenge and must ensure the active participation of not only governments and legal experts, but also the communities most affected by climate change. Indian Air Force Chief Air Chief Marshal AP Singh and Japan Air Self Defense Force Chief of Staff General Takehiro Morita flew together in India's indigenous light combat aircraft Tejas during a formation sortie in Jodhpur today. The flight by the air chiefs of both nations comes as the Indian Air Force and Japan Air Self Defense Force are conducting the joint air exercise.

0: करती करोड़ों भारतीयों के दिलों की धड़कन है। आईची नागोया एशियन गेम्स 2026 का औपचारिक उद्घाटन और दो दिन पहले शुरुआती मुकाबलों के रोमांच के बाद आज से महामुकाबले और पदकों की दौड़ में एक दूसरे को पछाड़कर आगे निकलने की होड़ शुरू हो चुकी है।
1: एशिया के 45 देशों के सर्वश्रेष्ठ एथलीट यहां जुटे हैं। 43 खेलों के कुल 469 मेडल इवेंट में हर खिलाड़ी अपना सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार है।
0: तो अब आज की सुर्खियां। भारत ने शूटिंग में 2 सिल्वर मेडल पर साधा निशाना। एलेवेनिल वलारिवन विमेन्स 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 0.6 अंक से गोल्ड से चूकी। एलेवेनिल, सोनम मस्कर और विदार्सा विनोद को टीम इवेंट में भी सिल्वर। मिक्स्ड मार्शल आर्ट में सुचिका दरियाल ने इतिहास रचा। सेमीफाइनल में पहुंचकर पदक किया पक्का। भारतीय महिला क्रिकेट टीम फाइनल में पहुंची, खिताब के लिए श्रीलंका से होगा मुकाबला। हॉकी में भारतीय महिला और पुरुष टीमों का धमाकेदार आगाज, अपने अपने वर्गों में हासिल की बड़ी जीत। और बैडमिंटन में महिला टीम ने अपना पहला मैच आसानी से जीता, अब जापान से अगला मुकाबला।
1: वक्त बदल रहा है और खेल भी। इस साल एशियन गेम्स में 6 नए खेलों को पहली बार मेडल स्पोर्ट्स के रूप में शामिल किया गया है। ये खेल है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, पैडल, सर्फिंग, टेक बॉल, वर्चुअल टाइकोंडो और बीएमएक्स फ्रीस्टाइल। भले ही खेल नए हो, लेकिन भारतीयों का जज्बा पुराना और आक्रामक है। जापान की धरती पर इतिहास रचते हुए भारत के लिए पहला पदक सुचिका तरियाल ने पक्का कर लिया है। सुचिका ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की ट्रेडिशनल कैटेगरी के सेमीफाइनल में प्रवेश कर दुनिया को बता दिया है कि नए दौर के नए खेलों में भी भारत किसी से पीछे नहीं है। एमएमए में सुचिका की सफलता के बारे में बता रही हैं कविता शर्मा।
2: आईची नागोया एशियन गेम्स में मिक्स मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में भारत के लिए आज का दिन मिलाजुला रहा। महिलाओं के ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में भारत के 36 वर्षीय सुचिका तारियाल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मंगोलिया की अल्तानची मेग बैगलमा को क्वार्टर फाइनल में 2-0 से हराया और सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इस जीत के साथ सुचिका ने एशियन गेम्स के इतिहास में एमएमए में भारत का पहला पदक सुनिश्चित कर दिया। सेमीफाइनल में पहुंचने वाले दोनों हारने वाले खिलाड़ियों को कांस्य पदक मिलता है, इसीलिए सुचिका का कम से कम कांस्य पदक तय हो चुका है। वहीं पुरुषों के 77 किलोग्राम वर्ग में भारत के वरुण सान्याल का अभियान मुकाबला शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वजन वर्ग में आने के लिए वजन घटाने की प्रक्रिया के दौरान उन्हें चक्कर आए और वो बेहोश हो गए। मेडिकल जांच के बाद उन्हें प्रतियोगिता के लिए अनफिट घोषित कर दिया गया। रिपोर्ट के अनुसार उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई और बाद में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इस तरह सुचिका ने इतिहास रचा तो दूसरी तरफ वरुण के लिए दिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण रहा। भारत की नज़र अब सुचिका के सेमीफाइनल मुकाबले पर है।
0: सुचिका ने इन खेलों में भारत का पहला मेडल भले पक्का किया, लेकिन पहला मेडल शूटिंग में मिला। कमाल के मेंटल स्ट्रेंथ और सटीक निशाने साधने के इस खेल में पहले दिन भारत की सफलता की जानकारी दे रहे हैं दर्पण तिकिया।
3: एशियन गेम्स 2026 में सफलता का पहला समाचार शूटिंग रेंज से आया है। 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धाओं में महिला निशानेबाजों ने टीम इंडिया को दिलाए हैं 2 सिल्वर मेडल। पहला टीम इवेंट में एलावनिल वलारिवन, सोनम मास्कर और विदर्सा विनोद की तिगड़ी के नाम रहा।

0: भारतीय टीम ने पिछले एशियन गेम्स रिकॉर्ड को पछाड़ते हुए कुल 1898 अंक हासिल किए। हालांकि चीन से आने वाली तिगड़ी ने 1904.2 अंक हासिल कर एक नया विश्व रिकॉर्ड स्थापित किया और गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। सोनम मास्कर ने क्वालिफाइंग एशियन गेम्स रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए 634.1 अंक हासिल किए। वहीं दिग्गज खिलाड़ी एलावलीन ने 633.5 तो विदर्शा ने 630.4 अंक हासिल किए। इस प्रदर्शन के चलते एलावलीन और सोनम 10 मीटर एयर राइफल के वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई की। एकल प्रतियोगिता के फाइनल में जहां सोनम के हाथ छठा पायदान लगा, तो वहीं एलावनील लगातार गोल्ड मेडल पोजीशन पर बरकरार रही। हालांकि उनके अंतिम कुछ शॉट निशाने से अंश मात्र ही भटके और वो मेजबान जापान की हिनाटा ताइची से 0.6 अंकों से पिछड़ गई। कुल 253 अंक हासिल कर ताइची ने नया गेम्स रिकॉर्ड स्थापित किया और स्वर्ण पदक अपने नाम किया। तो वहीं भारत की एलावनील वलारिवन के हाथ सिल्वर मेडल लगा। जापान जाने से पहले उन्होंने यही बताया था, दैट शी इज ट्राइंग टू स्टे इन द प्रेजेंट।
1: मुझे लगता है कि अगर मैं अपना बेस्ट दूंगी तो वो मेरे उस दिन के लिए काफी रहेगा एंड मैं बस उसी पे फोकस कर रही हूँ। एट द एंड ऑफ द डे हम यही चाहते हैं कि इंडिया का फ्लैग सबसे ऊपर रहे।
2: एशियन गेम्स के जरिए ओलंपिक क्वालिफिकेशन का लक्ष्य लेकर उतरी भारतीय महिला और पुरुष हॉकी टीम्स ने अपने अभियान की शुरुआत उम्मीदों के अनुरूप की। महिला टीम ने ग्रुप के अपने पहले मैच में उज्बेकिस्तान को तो पुरुष टीम ने इंडोनेशिया को टिकने का मौका ही नहीं दिया, बता रही हैं अमीषा।
3: भारतीय महिला हॉकी टीम ने जबरदस्त खेल दिखाते हुए पूल बी के ग्रुप स्टेज के मुकाबले में उज्बेकिस्तान को 19-0 के बेहद विशाल अंतर से मात दी, जिसमें भारतीय फॉरवर्ड दीपिका सहरावत ने इंडिविजुअल 8 गोल दागे, जिसमें 6 गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए आए। ये किसी भी महिला हॉकी फील्ड मैच में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा किया गया विश्व रिकॉर्ड जैसा एक बेहतरीन व्यक्तिगत प्रदर्शन है। इसके अलावा इशिका चौधरी ने एक शानदार हैट्रिक लगाई। वहीं लाल रम सियामी, बलजीत कौर, नेहा गोयल, लाल थंथलुंगी और साक्षी राणा ने भी गोल करने में अपना योगदान दिया। भारतीय टीम ने मैच की शुरुआत से ही दबदबा बना लिया था और पहले हाफ में ही 8-0 की मजबूत बढ़त बना ली थी, जो दूसरे हाफ में 11 गोल्स के साथ 19-0 हो गई। ये एशियन गेम्स के इतिहास में भारत की तीसरी सबसे बड़ी जीत है। अब भारतीय महिला हॉकी टीम का अगला ग्रुप स्टेज मैच कल इंडोनेशिया के खिलाफ होगा। वहीं दूसरी तरफ मेंस हॉकी में भी भारत का अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां कप्तान हरमनप्रीत सिंह की अगुवाई वाली डिफेंडिंग चैंपियन भारतीय टीम ने अपने पूल ए के ग्रुप मैच में इंडोनेशिया को 13-1 से शिकस्त दी, जिसमें दिलप्रीत सिंह ने अपनी हैट्रिक पूरी करते हुए 4 शानदार गोल दागे। भारत ने शुरुआत में ही आक्रामक खेल दिखाते हुए हाफ टाइम तक 7-0 की बढ़त बना ली थी, जो सेकेंड हाफ के अंत तक 13-1 हो गई। इस मैच में 8 अलग अलग खिलाड़ियों ने गोल किए, जिसमें दिलप्रीत के अलावा अभिषेक, शिलानंद लाकड़ा, राजेंद्र सिंह, मनदीप सिंह और कप्तान हरमनप्रीत सिंह शामिल थे। इस जीत के बाद भारत का अगला ग्रुप स्टेज मैच 22 सितंबर को श्रीलंका के खिलाफ होगा।
2: टेबल टेनिस में भी भारत की दोनों ही वर्गों में धमाकेदार शुरुआत हुई। इस खेल में मजबूत शुरुआत महिला टीम ने की। भारतीय टीम ने ग्रुप एफ के अपने पहले मैच में इंडोनेशिया को 3-0 की करारी शिकस्त दी। पहले मैच में शिजा अकुला ने अपनी प्रतिद्वंदी एन महरानी को करारी शिकस्त दी। शिजा ने यह मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में दिया चिताले ने अपनी प्रतिद्वंदी अलमायरा नेबुच डनेजर को पांव जमाने का भी मौका नहीं दिया। दिया ने अपनी विरोधी को एकतरफा मुकाबले में 3-0 से मात दी। इसके बाद बारी थी अनुभवी यशस्विनी घोरपड़े की। उन्होंने भी निराश नहीं किया और इंडोनेशियाई खिलाड़ी चित्रा रश्मि का 3-0 से क्लीन स्वीप किया। ग्रुप बी के दूसरे मैच में विश्व रैंकिंग में 9वें स्थान पर मौजूद भारतीय टीम ने 14वीं रैंकिंग वाली टीम सिंगापुर को बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-2 से शिकस्त देकर दूसरी जीत दर्ज की। इस मुकाबले में यशस्विनी घोरपड़े ने पहला मैच 3-1 से जीता। दूसरे मैच में श्रीजा अकुला को लॉय मिंग ने 2-3 से हराया। टाई का तीसरा मैच सिंगापुर की तेंझाओ ने दिया चिताले को 3-1 से हराकर जीता। चौथे मुकाबले में शिजा अकुला ने भारत को वापसी कराई। उन्होंने जेंग जियान के खिलाफ ये मैच 3-1 से जीता। टाई 2-2 पर पहुंच गया। अब बारी थी 5वें यानी निर्णायक मुकाबले की। यशस्विनी घोरपड़े का सामना 15 साल की लॉय मिंग से था। हर खेल प्रेमी की धड़कन बढ़ी हुई थी। इसी बीच लॉय मिंग ने पहला गेम 11-5 से जीत कर बढ़त बना ली, लेकिन इसके बाद यशस्विनी ने 11-8, 12

0: 10 से जीत हासिल कर वापसी की। फिर मिंग ने चौथा गेम 4-11 से जीत लिया। मैच का फैसला 5वें गेम पर पहुंचा। इसे यशस्विनी ने 11-9 से जीत कर भारत को लगातार दूसरा मैच जिता दिया। भारतीय पुरुष टीम ने भी जीत से शुरुआत की। उसने ग्रुप एफ में इंडोनेशिया को 3-0 से हराया। पहला मैच जी साथियान और मोहम्मद नेगारा के बीच खेला गया, जिसे जी साथियान ने 3-0 से आसानी से जीता और भारत को 1-0 की बढ़त दिलाई। मानव ठक्कर और मोहम्मद जुनिंद्रा के बीच खेला गया दूसरा मैच बेहद नजदीकी रहा। इस रोमांचक मुकाबले में मानव ने 3-2 से जीत हासिल की। तीसरा मैच मानुष शाह और अफ़ान प्रातामा के बीच खेला गया, जिसे मानुष शाह ने 3-0 से जीत कर भारत की जीत पक्की कर दी। हालांकि दूसरे मुकाबले में 15वीं रैंकिंग वाले भारत को 20वीं रैंक वाली टीम ईरान ने एक तरफा अंदाज में 3-0 से हराया। उधर भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने उम्मीदों के अनुरूप अपने अभियान का आगाज किया है, बता रही हैं अमीषा।
1: 20वें एशियन गेम्स आईची नगोया में बैडमिंटन के विमेंस टीम इवेंट के राउंड ऑफ 16 के मुकाबले में इंडियन टीम ने कजाकिस्तान को 3-0 से हराकर अच्छा प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल्स में जगह बना ली है। इस पूरे टाइम में इंडियन शटलर्स ने शुरुआत से ही कोर्ट पर अपना फुल कंट्रोल बनाए रखा। मैच की शुरुआत की भारत की स्टार शटलर और 2 बार की ओलंपिक मेडलिस्ट पीवी सिंधु ने। सिंधु ने कजाकिस्तान की कामिला समागुलोवा को स्ट्रेट सेट्स में 21-7, 21-9 से हराकर भारत को 1-0 से शुरुआती बढ़त दिलाई। इसके बाद दूसरी सिंगल्स खिलाड़ी उन्नति हुड्डा ने भी अपना जलवा दिखाया। उन्नति ने अपनी रफ्तार और सटीक स्मैश के दम पर कजाकिस्तान की अलीसा कुलेशोवा को 21-7 और 21-10 से हराकर ये मैच अपने नाम कर लिया। इस समय मुकाबला पूरी तरह भारत की झोली में था और फिर आखिर में जीत की इस औपचारिकता को पूरा करने के लिए कोर्ट पर उतरी युवा शटलर तन्वी शर्मा। तन्वी ने कजाकिस्तान की विपक्षी खिलाड़ी डियाना नामेनोवा को 21-5 और 21-10 से एक तरफा मुकाबले में हराकर मैच अपने नाम कर लिया, जिसके चलते भारत 3-0 से अजय बढ़त बना पाया और क्वार्टर फाइनल्स का टिकट कंफर्म किया। अब इंडियन टीम इसी जीत के इरादे से 22 सितंबर को होस्ट कंट्री यानी जापान से भिड़ेगी।
0: शारीरिक चपलता और स्टेमिना के खेल टेक बॉल में हम ऐतिहासिक पदक के करीब पहुंचकर चूक गए, परिणाम के बारे में बता रही हैं कविता।
2: डेब्यू हुए टेक बॉल से पदक की उम्मीदें थी, लेकिन दिन की शुरुआत निराशा के साथ हुई। महिला सिंगल्स के कांस्य पदक मुकाबले में क्विंसी डिसूजा को जापान की विश्व नंबर 7 युइना साकामोटो के खिलाफ 2 सेटों में सीधे हार का सामना करना पड़ा। दोनों गेम बेहद करीबी रहे, लेकिन क्विंसी दोनों सेट 11-12 के अंतर से हार गयी। इसी के साथ टेक बॉल में अगला मुकाबला हुआ मिक्स का, जहां एक और कांस्य पदक दांव पर था, लेकिन ये मुकाबला भी भारतीय टीम वियतनाम की जोड़ी से हार गई। मिक्स डबल्स में क्विंसी और मोहम्मद अनस इमराद बेग की जोड़ी वियतनाम से 12-9, 12-6 से हार कर बाहर हो गई। ये अभियान यहां जरूर समाप्त हुआ, लेकिन क्विंसी ने अपने मुकाबले जीतने के लिए पूरी मशक्कत की। क्विंसी लगातार मुकाबलों के बीच दर्द में दिखी, जहां मुकाबला कुछ मिनटों के लिए रोकना पड़ा। खेल के दौरान क्विंसी का दर्द साफ नजर आ रहा था, जिसका नतीजा उनकी परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिला और इस तरह से एशियन गेम्स में टेक बॉल में भारत का अभियान बिना पदक के समाप्त हो गया। पर भले ही ये खिलाड़ी मुकाबला हार गई हो, लेकिन खेलों के एक नए रूप टेक बॉल की पहचान जरूर बन गई।
0: तैराकी में इस बार भारतीय दल बड़ी उम्मीदों के साथ उतरा है। इस दल को न सिर्फ अपने पिछले प्रदर्शन को बेहतर करना है, बल्कि पदक जीत कर भी लाना है। हालांकि पहले दिन तैराकी में भारत की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही। पुरुष 100 मीटर बैक स्ट्रोक में ऋषभ दास ने हीट में शुरुआत तो अच्छी की और कमाल का प्रदर्शन करते हुए 54.85 सेकंड का समय निकाला। वे अपनी हीट में तीसरे और ओवरऑल 5वें स्थान पर रहकर फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में सफल रहे। हालांकि पदक की दौड़ में वे चीनी और जापानी खिलाड़ियों की तगड़ी चुनौती के बीच पोडियम तक नहीं पहुंच सके। फाइनल में ऋषभ ने टाइमिंग के लिहाज से अपने प्रदर्शन को और निखारा, फिर भी वे 54.77 सेकंड का समय लेकर 9 खिलाड़ियों के मुकाबले में 6ठे स्थान पर रहे। इसी स्पर्धा के हीट में उत्कर्ष पाटिल ने 56.19 सेकंड का समय लिया और ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे। इस तरह वे फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। पुरुष 100 मीटर फ्री स्टाइल में रोहित बेनेडिक्टन अपनी हीट में 50.25 सेकंड के समय के साथ 5वें स्थान पर रहे। वह ओवरऑल 12वें स्थान पर रहे और फाइनल के लिए क्वालिफाई करने में असफल रहे। इसी इवेंट में आकाश मणि ने 50.85 सेकंड का समय निकाला और अपनी हीट में 8वें स्थान पर रहे। इस प्रदर्शन से वे भी फाइनल में जगह बनाने से चूक गए। अपने खिताब के बचाव के लिए उतरी

0: महिला क्रिकेट टीम ने बांग्लादेश की टीम के साथ दो दो हाथ किया और जीत के साथ स्वर्ण पदक के और करीब पहुंच गई है। अमीषा की रिपोर्ट।
1: आज जापान के कुरुगी स्पोर्ट्स पार्क में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी जब बांग्लादेश के खिलाफ एशियन गेम्स के सेमीफाइनल मुकाबले में नाबाद शतक लगाकर शिफाली वर्मा ने क्रिकेट के इतिहास में एशियन गेम्स में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनने का गौरव हासिल किया। शिफाली ने मात्र 49 गेंदों में 100 रनों की नाबाद तूफानी पारी खेली जिसमें 9 छक्के और 3 चौके शामिल थे। भारत ने पहली बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 195 रनों का एक बड़ा स्कोर खड़ा किया। बल्लेबाजों के बाद अब बारी गेंदबाजों की थी। 196 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेशी टीम भारतीय गेंदबाजी और बड़े लक्ष्य के प्रेशर के आगे टिक नहीं पाई और महज 81 रनों पर ऑल आउट हो गई। भारत की ओर से शानदार गेंदबाजी करते हुए दीप्ति शर्मा और नंदिनी शर्मा ने 3-3 विकेट चटकाए और भारत ने 114 रनों के विशाल अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस जीत के साथ अब भारत अपना सिल्वर मेडल तो पक्का कर चुका है पर अब उनका लक्ष्य अपना गोल्ड मेडल बचाने पर होगा।
0: वुशु में भारत के लिए शुरुआत अच्छी नहीं रही, बता रही है कविता।
2: भारतीय वुशु खिलाड़ियों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहा। भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम, अपर्णा धैया और विक्रांत बालियान अपने अपने मुकाबलों में पदक की दौड़ से बाहर हो गए। दिन की शुरुआत पुरुषों के चांगक्वान फाइनल से हुई जहां भारत के सूरज सिंह, मयांग लाम्बम ने 21 खिलाड़ियों के बीच 9.683 अंक के साथ 11वां स्थान हासिल किया। सूरज ने क्वालिटी ऑफ मूवमेंट में 5.000 और डिग्री ऑफ डिफिकल्टी में 2.000 अंक हासिल किए जबकि उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस स्कोर 2.683 रहा। इसके बाद महिलाओं की 52 किलोग्राम सांडा स्पर्धा में भारत की अपर्णा धैया का मुकाबला ईरान की सोगंद सिंकाई चेतान से हुआ। राउंड ऑफ 16 में अपर्णा को 0-2 से हार का सामना करना पड़ा। दोनों राउंड में उन्हें 5-0 के स्कोर से हार मिली और इसके साथ ही उनका एशियन गेम्स अभियान समाप्त हो गया। वहीं पुरुषों की 75 किलोग्राम सांडा में भारत के विक्रांत बालियान का सामना ईरान के सोहेल मौसवी से हुआ। विक्रांत को भी राउंड ऑफ 16 में 0-2 से हार मिली और वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। इस तरह 20 सितंबर को भारतीय वुशु के तीनों मुकाबलों में भारत को जीत नहीं मिल पाई।
0: और अब बात कल के मुकाबलों की। सेपक टेकरा में भारतीय पुरुष रेगु टीम की भिड़ंत ग्रुप बी में जापान से होगी। सॉफ्ट टेनिस में मिक्स डबल्स में जय मीणा और आद्या तिवारी का सामना ग्रुप बी में कंबोडिया से होगा। फिर यह भारतीय जोड़ी मंगोलिया के साथ खेलेगी, इन्हें दक्षिण कोरिया से भी मैच खेलना है। वुशु में न्यमान वाक्सू महिला चेंगक्वान में चुनौती रखेंगी। पुरुषों के 56 किलोग्राम वर्ग में आर्यन राउंड ऑफ 16 में अफगानिस्तान के प्रतिद्वंदी का सामना करेंगे। शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल मेंस कैटेगरी के व्यक्तिगत मुकाबले में हिमांशु ढिल्लन, पार्थ मान्य और रुद्रांश पाटिल निशाना साधेंगे। पुरुषों के स्कीट इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन टीम फाइनल के पहले दिन अनंतजीत सिंह नारूका, भवतेक सिंह गिल और मैराज अहमद खान की चुनौती होगी। इसी इवेंट के महिला वर्ग में महेश्वरी चौहान और परिनाज धालीवाल के साथ साथ रैजा ढिल्लन निशाने साधेंगी। महिला टेबल टेनिस में भारत का सामना ग्रुप एफ में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगा। तैराकी में पुरुषों के 50 मीटर बैक स्ट्रोक के हीट 2 में ऋषभ दास और श्रीहरि नटराज स्विमिंग पूल में होंगे। पुरुष फ्री स्टाइल के हीट 2 में आकाश मणि उतरेंगे। हीट 4 में गीतेश हीरशाह भारत की चुनौती रखेंगे। पुरुषों की ब्रेस्ट स्ट्रोक में हीट 1 में दानुष सुरेश उतरेंगे। पुरुषों की 4x200 मीटर फ्री स्टाइल रिले के हीट 2 में वेदांत माधवन, दक्षिण शशि कुमार, अनीश गौड़ा और साजन प्रकाश की चौकड़ी होगी। MMA के महिला ट्रेडिशनल 60 किलोग्राम वर्ग में सूचिका तरियाल ईरानी प्रतिद्वंदी से मुकाबला करेंगी। हॉकी में भारतीय महिला टीम का सामना इंडोनेशिया से होगा। कबड्डी में पुरुष टीम का ग्रुप ए में जापान से मुकाबला होगा। महिला टीम ग्रुप ए में बांग्लादेश के साथ दो दो हाथ करेगी। वुशु में रोशिबीना देवी महिलाओं के 60 किलो वर्ग के राउंड ऑफ 16 में बांग्लादेश की खिलाड़ी का सामना करेंगी। बॉक्सिंग में पुरुषों के 70 किलोग्राम वर्ग में पहले मैच में सुमित थाईलैंड के सिंसरी का सामना करेंगे। टेबल टेनिस में भारतीय पुरुष टीम की टक्कर पाकिस्तान से होगी।
1: तो अब बात करते हैं मेडल्स टैली की। चाइना 11 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ कुल 20 मेडल्स जीत कर टॉप पर बना हुआ है। दूसरे स्थान पर जापान है जिसके पास भी कुल 20 मेडल्स हैं, लेकिन 6 गोल्ड, 7 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ वे चाइना से पीछे है। तीसरे नंबर पर दक्षिण कोरिया है जिन्होंने 4 गोल्ड, 3 सिल्वर और 7 ब्रोंज के साथ कुल 14 मेडल्स अपने नाम किए।

0: है। वहीं अगर भारत के प्रदर्शन पर नजर डालें तो भारत फिलहाल 10वीं पोजीशन पर बना हुआ है, जहां भारत के खाते में अभी तक कुल 2 सिल्वर मेडल्स आए हैं और देश को अभी अपने पहले गोल्ड का इंतजार है।
1: तो भारतीय खिलाड़ियों की जीत की यह शुरुआत तो बस एक झांकी है, पूरी कहानी तो अभी बाकी है। हमारे पदक वीरों को आपकी दुआओं और चीयर्स की जरूरत है। अब जुड़े रहिए आकाशवाणी के साथ, कल सुबह 9:30 बजे हर घंटे हम आईची नागोया एशियन गेम्स की हर अपडेट के साथ हाजिर होंगे। फिर रात 10 बजे दिन भर की रिपोर्ट लेकर उपस्थित होंगे। अभी प्रोग्राम प्रोड्यूसर शाहनवाज खान, एडिटर वंदना भारद्वाज के साथ धर्मेंद्र मणि राजेश और अमिशा पटेल को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: It's 10:20 on the studio clock. We start with sweet memories. First up, Triple Treat, The Fabulous Four.

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हाल के दिनों में आई कई प्राकृतिक आपदाओं से स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए ठोस प्रयास जरूरी हैं। नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि वैश्विक वैज्ञानिक समुदाय जलवायु जोखिम को लेकर गंभीर चेतावनी दे रहा है।
1: हाल के समय में हुई अनेक प्राकृतिक आपदाओं ने यह स्पष्ट किया है कि क्लाइमेट इम्पैक्ट्स को कम करने के लिए सशक्त क्लाइमेट एक्शन करना आवश्यक है। विश्व का वैज्ञानिक समुदाय चेतावनी दे रहे हैं कि क्लाइमेट रिस्क बहुत गंभीर हो चुका है। इनकी यथासंभव रोकथाम और सामना करने के लिए स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सभी स्तर पर स्टेक होल्डर्स के बीच सक्रिय सहयोग की सुदृढ़ आवश्यकता है।
0: राष्ट्रपति ने पर्यावरण संबंधी कानूनी मामलों में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण ने बड़ी संख्या में मामलों का तेजी से निपटारा किया है और नदियों, वायु गुणवत्ता तथा कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों में प्रभावी अनुपालन व्यवस्था विकसित की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे मंगलवार को एकता नगर केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में विजेताओं को सम्मानित करेंगी। राष्ट्रपति बुधवार को वडोदरा में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के 75वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन मंगलवार को नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय जल सप्ताह का उद्घाटन करेंगे। 5 दिन के इस आयोजन का विषय है जलवायु अनुकूल जल प्रबंधन। 22 से 25 सितंबर तक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का भी आयोजित किया जाएगा। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और जापान के वायु आत्मरक्षा बल के प्रमुख जनरल ताके हीरो मोरिता ने आज जोधपुर में भारत के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में एक साथ उड़ान भरी। दोनों देशों के वायुसेना प्रमुखों की ये उड़ान जोधपुर में चल रहे संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गार्जियन 2026 के दौरान हुई है।
2: The Japanese fighters have operating from Indian soil for the first time.
3: जापानी लड़ाकू विमानों का पहली बार भारतीय धरती से संचालन हमारे दोनों देशों के संबंधों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुझे तरंग शक्ति 2024 का समय बहुत स्पष्ट रूप से याद है। उस समय आपकी टीम यहाँ आई थी, मैं वाइस चीफ के रूप में आया था और मैंने उन सभी से मुलाकात की थी, लेकिन दुर्भाग्यवश दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों में खराब मौसम की वजह से आपके विमान यहाँ नहीं आ सके थे और समय हम ये अवसर गंवा बैठे, लेकिन मुझे बहुत खुशी है कि इस बार हम उस अवसर की भरपाई कर पाए हैं। ये दोनों देशों के बीच विशेष रणनीतिक और व्यापक साझेदारी के बढ़ते हुए आयाम को दर्शाता है।
0: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता एटीएस ने आज वाराणसी में बड़ी कार्रवाई करते हुए झारखंड के प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन तृतीय प्रस्तुति समिति टीपीसी के प्रमुख ब्रिजेश गंजू उर्फ गोपाल सिंह भोक्ता को मुठभेड़ में मार गिराया। ब्रिजेश गंजू की गिरफ्तारी पर झारखंड पुलिस और राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कुल 30 लाख रूपये का इनाम घोषित किया था। यूक्रेन ने रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को में एक तेल शोधन संयंत्र और रिहायशी इमारत को नुकसान पहुंचाया है। यूक्रेन ने बीती रात रूस पर 1000 से अधिक ड्रोन दागे हैं, जिनमें से सैकड़ों का रुख सीधे राजधानी मॉस्को की तरफ था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने इसे राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला बताया है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स IICA ने आज मानेसर गुरुग्राम में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC संशोधन के जरिए विकसित होता कानून विषय पर एक जानकारीपूर्ण सत्र आयोजित किया। कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि इस सत्र में इंसॉल्वेंसी कानून की बदलती प्रकृति और कानून, अधीनस्थ कानून और बाजार के घटनाक्रमों के बीच संबंधों पर महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। जापान एशियाई खेलों में भारत की एलाविनेल वेलारिवन ने महिलाओं की व्यक्तिगत 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा का रजत पदक अपने नाम किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

102.6 पर आप सुन रहे हैं रंग महफिल नाज के संग। ये शहर ये गलियां जब जब मेरे सामने आए, किसी नए इश्क की तरह तुम बड़ी शिद्दत से याद आए, बड़ी शिद्दत से याद आए।

जी हाँ, रात के 11:15 और मैं आपके साथ इस वक्त नाज, प्रोग्राम जारी है रंगी महफिल। आज की रात ना कुछ खास है, थोड़ी थाना थोड़ी महकी हुई, बिल्कुल उस एहसास की तरह जब दिल के पास सिर्फ यादें होती हैं और एक हल्का सा दर्द भी। कभी कभी ना जिंदगी के सफर में हम भीड़ में होते हुए भी बेहद अकेले होते हैं, और कभी एक शख्स की याद ही पूरी दुनिया बन जाती है हमारी। होता है क्या आपके साथ भी ऐसा? शायद हो सकता है। और वो कहते हैं ना कि चांद की आज उदासी नजर आती है, चांद भी आज जाने क्यों उदास सा लगता है, जैसे उसको भी किसी का इंतजार है। और मैं भी खिड़की पर बैठी सोचती हूँ, क्या उन्हें भी हमारा ख्याल आता है? ये तन्हाई ना हमेशा हमारी दुश्मन नहीं होती, कभी कभी वही हमें खुद से मिलवाती है, रूबरू करवाती है। तो हो सकता है कि कोई शाम ऐसी गुजरे आपके साथ कि आंखों में नमी हो और दिल में कुछ कमी हो। तो बस कुछ नहीं करना है, आंखें बंद करिए, रंगी महफिल सुनिए और डूब जाइए इस खूबसूरत गजल में।

ग्यारह बजकर 21 मिनट हो गए हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक और आप सुन रहे हैं रंगे महफिल नाज के संग। मोहब्बत में कोई खत मुख्तसर अच्छा नहीं लगता, लिफाफे में फकत तितली का पर अच्छा नहीं लगता। तुम अपने दिल के कैमरे में मुझे क्यों कैद करते हो, मुसाफिर हूं, मुसाफिर को तो घर अच्छा नहीं लगता। मगर हाँ एक बात भी है, अजीब चाहत होती है इस दिल की, सोचता है मोहब्बत भी करे और आजाद भी रहे। बहरहाल आप तक पहुंचा रही हूं ये अगली गजल हरिहरन साहब की आवाज में, बेहद उम्दा।

इस खूबसूरत महफिल को गजलों से सजाकर और खुशनुमा बनाकर हम आप तक लाते हैं। गजल ना सिर्फ लफ्जों का खेल नहीं होता, ये दिल की आवाज होती है, जज्बात का आईना होता है। बहरहाल स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक 11:28 हो गए हैं। अगली गजल आशा जी की आवाज में आप तक पहुंचा रही हूँ। सुनते रहिए रंगे महफिल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात, आकाशवाणी दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं।

0: इसके लिए आप अपने सुझाव 25 सितंबर तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माय गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 27 सितंबर सुबह 11 बजे मन की बात।
1: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल, आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।

आँख से आँख मिलाता है कोई, दिल के बंद दरवाजों को खटखटाता है कोई, बिना कुछ कहे बिना कुछ सुने खामोश निगाहों से बहुत कुछ बता जाता है कोई। कभी कभी कुछ रिश्ते लफ्जों से नहीं नजरों से बनते हैं। एक नज़र में अपनापन, एक नज़र में मुस्कान जब चेहरे पर तैरती है तो सैकड़ों बातें और एक ही मुलाकात में पूरी कहानी छुपी होती है। महफिल में हम बात कर रहे हैं एहसास की, जो आंखों से शुरू होकर दिल तक कब पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। और किसी का चेहरा जब आप देखते हैं तो बस लगता है देखते ही रहें।

0: ये आंखें ना बड़े उस्ताद होती हैं, कमबख्त गुस्ताख होती हैं, खामोशी से वार करती हैं, इशारों से कमाल करती हैं, जुबां की जरूरत नहीं दूर से ही हलाल करती हैं। आंखों पर इतनी बातें हो गई, दिल की बातें, जज्बात की बातें, एहसास की बातें। बहरहाल एक छोटा सा वक्फा हम यहाँ पर ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होते हैं दोबारा। बने रहिए रंगे महफिल में।
1: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

0: चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
3: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
2: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती।
4: भाई आहिस्ता आहिस्ता हम इतनी जल्दी प्रोग्राम के खात्मे पर आ गए, पता ही नहीं चला। देखिए ना, 11:48 स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक, और इस वक्त मैं आपकी दोस्त नाज़ आपके साथ। कभी कभी ना जिंदगी में ऐसा दौर आता है जब चारों ओर भीड़ होती है मगर दिल किसी एक शख्स की कमी महसूस करता है। तब लगता है कि दुनिया की ये सारी रौनकें फीकी हैं, क्योंकि सुकून तो बस उसी एक शख्स के साथ है। पर अब मेरा एक बहुत ही पसंदीदा उम्दा गजल आप तक पहुंचा रही हूँ जगजीत साहब की ही आवाज में। आइए मिलकर सुनते हैं।

जी हाँ, रंगे महफिल आप सुन रहे थे नाज के साथ। ये गजलें जो इश्क यादों और चांदनी की नर्म रोशनी में भीगी हुई थी, कुछ एहसास लेकर जैसे हर दिल ने कभी न कभी महसूस किया होगा। तो खैर, कुछ ऐसे ही खूबसूरत गजलों को लेकर दोबारा किसी मोड़ पर हम आपसे मुलाकात करेंगे। जा रहे हैं इस वादे के साथ कि आपसे दोबारा मिलेंगे। अपना खूबसूरत ख्याल रखिएगा। फिलहाल अल्लाह हाफिज़। शब खैर।

कई बार कहानी ख़त्म हो जाती है, किस्से बीत जाते हैं, मगर कुछ अल्फाज बाकी रह जाते हैं। जो हम नहीं कह सकते वो जज्बात बाकी रह जाते हैं। एक अधूरे इश्क की मुकम्मल सी यादें बाकी रह जाती हैं, जिनमें टूटे ख्वाबों के भी निशान शामिल हो।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी दिल्ली का एफएम रेनबो। 12 बजे हैं, आइए सुनते हैं हिंदी में मुख्य समाचार। समाचारों के साथ मैं हाजिर हूं दुर्गेश। आइए मुख्य समाचार सुनते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

को संबोधित करी। राष्ट्रपति ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितम्बर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरतकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगर पालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। यूक्रेन ने कल रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को शहर में 1000 से अधिक ड्रोन दागे, एक तेल शोधन संयंत्र को निशाना बनाया और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीम ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आप सुन रहे हैं एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर, आकाशवाणी दिल्ली का ये एफएम रेनबो है।

0: मन की परतें खोल, जरा बिंदास बोल। आपका हमारा संवाद हर महीने तीसरे शुक्रवार 1 से 2 बजे 102.6 रेनबो पर। बिंदास बोल।
1: तो पार्टी शुरू हुई है।
2: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
3: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती, धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
2: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
3: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
2: म्यूजिक मस्ती।
5: आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: There's something I want to tell you, girl. I don't know, I don't know.

आकाशवाणी रेनबो पर अभी आप सुन रहे थे जीरो आर शो। इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं इस गीत के साथ और आइए सुनते हैं मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा कि भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरतकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगर पालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। यूक्रेन ने कल रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को शहर में 1000 से अधिक ड्रोन दागे एक तेल शोधन संयंत्र को निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते और महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई। पुरुष और

महिला हॉकी टीमों ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। तो श्रोताओं, ये थे समाचार। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर सुहानी रात कार्यक्रम। सुहानी रात में हम आपको सुनवाएंगे 90s के बैक टू बैक सॉन्ग्स।

Jesse.

0: की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे FM रेनबो पर।

0: अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
1: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
2: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
3: आज की रात मजा,
2: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
1: म्यूजिक मस्ती।
4: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
5: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
1: म्यूजिक मस्ती। दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
5: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
1: अल्फा जेन,
5: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।
6: मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन,
7: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा, संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे DD नेशनल और वेव्स OTT पर।
8: खेतों से आपकी क्यारी तक, बागों से घर की फुलवारी तक, हम जानते हैं हर किसी में छिपा है एक किसान, इसीलिए निकल पड़े हैं हम आपके भीतर छिपे किसान को ढूंढने, फिर चाहे वो फार्म हो या सिटी। सुनिए हर रविवार शाम 5:30 बजे प्रोग्राम फार्म टू सिटी FM रेनबो पर। जी हाँ, प्रोग्राम फार्म टू सिटी हर रविवार FM रेनबो पर शाम 5:30 बजे। प्रायोजक भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

0: दोस्तों की मस्ती हो या चाय की चुस्की हो, साथ ही हो कॉलेज की गपशप और मिल जाए कुछ करंट इन्फॉर्मेशन,
1: तो सुनिए जानकारियों से लवरेज युवाओं का सबसे पसंदीदा शो
0: अल्फा जेन,
1: रोजाना शाम 4 बजे से 5 बजे तक।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली पर FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़। और अब समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्रवाई और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर अमरीका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र के उच्च स्तरीय सप्ताह में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। डॉ जयशंकर 26 सितंबर को महासभा के उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करेंगे। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरतकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। सत्र के दौरान सरकार द्वारा GST, नगर पालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। यूक्रेन ने कल रूस पर बड़ा ड्रोन हमला करते हुए मॉस्को शहर में 1000 से अधिक ड्रोन दागे एक तेल शोधन संयंत्र को निशाना बनाया। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीमों ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की।

0: आकाशवाणी
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली एफएम रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आकाशवाणी रेनबो पर आइए सुनते हैं कार्यक्रम फुलाए ना बनी।

0: मशहूर हो जाए।
1: रोज सुबह सवेरे 7 से 9 की मुलाकात, थोड़ी गपशप, थोड़ी काम की बात, रेनबो की सौगात, हर रोज जुड़िए हमारे साथ। गुड मॉर्निंग दिल्ली एनसीआर, ऑलवेज वेयर एवर यू आर, 102.6 आपके लिए।
2: अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
3: स्कूल कॉलेज की रीयूनियन पार्टी हो या बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेशन,
4: शादी के फंक्शंस हो या किटी पार्टी की मस्ती,
5: आज की रात मजा,
4: धूम धड़ाका सॉन्ग्स हो या A1 पार्टी नंबर्स, जिनको सुनते ही आपके अंदर बस एक ही वर्ड गूंजेगा,
3: म्यूजिक मस्ती।
6: ओ सारे डांस फ्लोर पे आओ, मौका खास है।
7: सुनिए रोजाना शाम 8 बजे से 9 बजे तक आकाशवाणी FM रेनबो पर
3: म्यूजिक मस्ती।

0: श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री राम चरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री राम चरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।
1: सागर की गहराइयों से पर्वतों के शिखर तक, सरहद की हद से दुश्मनों के खात्मे तक, ये हैं भारत के सोल्जर्स। इन सोल्जर्स के अदम्य साहस को आकाशवाणी करता है सलाम। इन्हीं की विजय गाथा को लेकर आए हैं कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में हर गुरुवार शाम 4 से 5 रेनबो पर।
2: सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम भुलाए ना बने। रात्रि के ठीक 3 बजे हैं। अब मुख्य समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्यवाही और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों के साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। भारत और जापान के वायुसेना प्रमुख ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। नागालैंड में निर्वाचित आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत 8.838% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। SIR ने पहले से 13,57,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतदाता गणना फॉर्म जमा किए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व नेताओं से शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। श्री गुटेरेस ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संवाद, सहयोग और सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी है। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष महिला हॉकी टीम ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की।

0: हिमालय की गोद से लेकर
1: अंडमान के खूबसूरत व्हाइट सैंड और ब्लू वाटर बीच तक,
0: साउथ इंडिया के खूबसूरत और भव्य मंदिरों से लेकर
1: राजस्थान के दिल छू लेने वाले सैंड ड्यून्स तक,
0: नॉर्थ ईस्ट की वन संपदा से लेकर कश्मीर की खूबसूरत घाटियों तक,
1: खूबसूरत परिधान, दिलकश पकवान और इंडिया के अनएक्सप्लोर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में जानना है
0: तो सुनना ना भूलें
1: रेनबो डेस्टिनेशंस
0: हर शुक्रवार दोपहर 2 बजे रेनबो पर।
2: तराने गाने नए पुराने

0: नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक रोजाना सुबह 9 से 10 बजे तक रेनबो 102.6 पर।
1: कोयल सी तेरी बोली, तेरी तेरी सी नजर में है जादू।
2: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
1: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तो मैं सुना रही हूँ, जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
2: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
3: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।

0: मोबाइल पर आती है एक कॉल।
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ। इसका सर देखो जो HR कटा था इनके नाम से, उसका जो खर्चा आ रहा है वो आपको डिपॉजिट करना होगा। जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।

प्रातः के 4 बजे हैं और अब मुख्य समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने बढ़ती प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए मजबूत जलवायु कार्यवाही और वैश्विक सहयोग का आह्वान किया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सेमीकंडक्टर उद्योग को उन देशों ने साइबर हमलों और ऐसी बाधाओं के लिए तैयार रहना चाहिए जो नहीं चाहते कि भारत इस क्षेत्र में आगे बढ़े। भारत और जापान ने वायुसेना प्रमुखों ने जोधपुर में संयुक्त हवाई अभ्यास के दौरान तेजस विमानों का परीक्षण किया। भारतीय वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने कहा, भारतीय धरती पर जापानी लड़ाकू विमान का पहला ऑपरेशन रक्षा संबंधों में महत्वपूर्ण साबित होगा। जम्मू कश्मीर विधानसभा का शरदकालीन सत्र आज श्रीनगर में शुरू होगा। सत्र के दौरान सरकार द्वारा जीएसटी, नगरपालिका प्रशासन और व्यापार सुगमता से संबंधित उपायों सहित कई विधायी प्रस्ताव पेश किए जाने की संभावना है। नागालैंड में निर्वाचित आयोग की वोटर लिस्ट की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया के तहत 88.38% मतदाता गणना फॉर्म जमा किए गए। SIR से पहले के 13,57,208 मतदाताओं में से कुल 11,99,456 मतदाताओं ने अपने मतगणना फॉर्म जमा किए। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने विश्व नेताओं से शांति, गरिमा, न्याय और मानवता के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। श्री गुटेरेस ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संवाद, सहयोग और सामूहिक प्रयास बेहद जरूरी है। और एशियाई खेलों में भारत ने निशानेबाजी में 2 रजत पदक जीते। महिला क्रिकेट टीम फाइनल में और बैडमिंटन टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची। पुरुष और महिला हॉकी टीम ने जापान में जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। समाचार समाप्त हुए।

0: कोयल सी तेरी बोली तेरी तेरी छी नजर में है जादू।
1: अरे बेसुरे गाने क्यों सुना रही हो मुझे?
0: अरे तुम्हारे फेवरेट गाने तुम्हें सुना रही हूँ जिसे गा गा कर तुमने मेरा दिल जीता था।
1: अरे ऐसी बात है तो फिर अपनी रिक्वेस्ट आकाशवाणी रेनबो पर भेज दो। अब रेडियो पर अपनी चॉइस के गाने सुनने की बात ही कुछ और है।
2: अब SMS कीजिए और सुनिए मेरा वाला सॉन्ग गुरुवार से रविवार दोपहर 1 बजे से 2 बजे तक सिर्फ आकाशवाणी रेनबो पर।
3: बाहर से कोई अंदर ना आ

0: आपके मोबाइल पर आती है एक कॉल,
1: नंबर अननोन यानी अपरिचित है,
0: फिर भी आप उठा लेते हैं कि क्या पता कॉल जरूरी ना हो।
2: आपके बेटे के नाम पर सिर्फ HR दर्ज है, आपके बेटे ने ये कार्ड किया नहीं है।
3: ठीक है,
2: आपका बेटा कैसे क्लियर होगा वो मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूँ सर। इसका सर देखो जो HR कटा ना इनके नाम से, उसका जो खर्चा हर है वो आपको डिपॉजिट करना होगा।
3: अच्छा।
2: जैसे डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद आपका बेटा क्लियर होकर आपके घर आ जाएगा।
1: आप घबरा जाते हैं और समझ नहीं पाते कि करना क्या है।
0: कई बार तरीका कुछ और भी हो सकता है।
4: प्रिय उपयोगकर्ता, आपका मोबाइल फोन नंबर उच्च जोखिम में है और आपके अकाउंट की रक्षा के लिए 5 मिनट के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ग्राहक सेवा कृपया पुष्टि करने के लिए 9 दबाएं।
0: साइबर अपराधी एक्सटॉर्शन यानी धन उगाही के लिए नए नए तरीके आजमा रहे हैं।
1: व्हाट्सएप कॉल, SMS, फ्रॉड लिंक, लॉटरी में जीत, वीडियो कॉल ब्लैकमेलिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दुरुपयोग करके भ्रमित करना, न जाने क्या क्या।
0: इन परिस्थितियों से खुद को सुरक्षित रखिए।
1: समय समय पर सरकार द्वारा जारी एडवाइजरीज पर ध्यान दीजिए।
0: अपरिचित नंबर से आने वाले ऑडियो या वीडियो कॉल को अटेंड मत कीजिए।
1: किसी भी ऐसे लिंक को क्लिक मत कीजिए जिसके बारे में आपको पता नहीं है।
0: ऐसी घटनाओं की सूचना तुरंत साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर या www.cybercrime.gov.in पर कीजिए।
1: याद रखिए, साइबर क्राइम की दुनिया में सतर्क रहकर ही आप सुरक्षित हैं।
5: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स ओटीटी पर।

मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में इस समय एक बहुत अहम अभियान चल रहा है जिसके बारे में हर भारतीय को जानकारी होनी जरूरी है। ये है जनगणना का अभियान। यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना है। साथियों, जो साथी पहले से इस तरह की प्रक्रिया से गुजरे हैं, इस बार जनगणना का उनका अनुभव अलग होने वाला है। जनगणना 2027 को डिजिटल बनाया गया है। सारी जानकारी सीधे डिजिटल माध्यम में दर्ज हो रही है। घर घर जाने वाले कर्मचारियों के पास मोबाइल ऐप है। वे आपसे बात करके उसी में जानकारी दर्ज करेंगे। साथियों, इस बार जनगणना में आपकी भागीदारी भी आसान बनाई गई है। आप खुद भी अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। कर्मचारी के आने से 15 दिन पहले आपके लिए सुविधा शुरू होगी। आप अपने समय के अनुसार जानकारी भर सकते हैं। जब आप प्रक्रिया पूरी करते हैं तो आपको एक विशेष आईडी मिलती है। यह आईडी आपके मोबाइल या ईमेल पर आती है। बाद में जब कर्मचारी आपके घर आता है तो आप यही आईडी दिखाकर जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं। इसे दोबारा जानकारी देने की जरूरत नहीं पड़ती। समय भी बचता है और प्रक्रिया आसान हो जाती है। साथियों, जिन राज्यों में स्वगणना का काम पूरा हो गया है, वहां गणना कर्मचारी द्वारा घरों के सूचीकरण का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। अब तक लगभग 1,20,00,000 परिवारों का मकान सूचीकरण का कार्य पूरा भी हो चुका है। साथियों, देश की जनगणना सिर्फ सरकारी काम नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। जनगणना 2027 को सफल बनाएं।

अब होगा शिक्षा, मनोरंजन और ज्ञान का विस्तार। सुनिए सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 बजे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग FM रेनबो दिल्ली पर।

जय जय रघुवीर समर्थ। श्रीमत दासबोध। दशक सहावा। देवशोधन नाम। समास तिसरा। मायोद्भव निरूपण नाम। श्रीराम समर्थ। श्रीराम समर्थ। निर्गुण आत्मा तो निश्चळ, जैसे आकाश अंतराळ, घन दाट निर्मळ निश्चळ सदोदित, जे खंडलेच नाही अखंड, जे उदंडाहुनी उदंड, जे गगनाहुनी वाढ अतिसूक्ष्म, जे दिसेना ना भासेना, जे उपजेना ना नासेना, जे येईना ना जाईना परब्रह्म ते, जे चळेना ना ढळेना, जे तुटेना ना फुटेना, जे रचेना ना खचेना परब्रह्म ते।